ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 15 अक्टूबर सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57:44 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निमू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा।

0: 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3 करोड़ 20 लाख हो जाएगी।
1: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति किसानों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल संघों, राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहे और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अभी भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी हैं। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथी T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन ही बना सका। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

पांचवा दिवस स्कंद माता अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक प्रपंच की अधिष्ठान भूता सच्चिदानंद स्वरूपा भगवती श्री दुर्गा ही संपूर्ण विश्व को सत्ता, स्फूर्ति और सरसता प्रदान करती हैं। यह सारा विश्व प्रपंच उन्हीं से उत्पन्न होता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। जैसे दर्पण में आकाश मंडल, भूधर, सागरादि प्रपंच प्रतीत तो होते हैं, पर छू कर देखा जाए तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। वैसे ही माँ का आधार न हो तो विश्व में कुछ रहेगा ही नहीं। विश्व जननी माँ जगदम्बा का पंचम स्वरूप स्कंद माता कहलाता है। मंदिरों में पांचवें दिन इसी रूप में माँ का श्रृंगार किया जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय और विघ्नहर्ता गणेश दोनों की ही माँ स्कंद माता हैं, परंतु बड़े पुत्र से ही प्रायः माता लोक में भी जानी जाती है, अतएव वे स्कंद माता कहलाती हैं।

द्वैमातुरत्वे द्विरदाननस्य षाण्मातुरत्वे च कुमारकस्य एकैव माता परमामताया सा स्कंदमाता मुद्धातु धातु। अर्थात चामुंडा और दुर्गा के पुत्र कहलाने वाले गणपति और तीन कृत्तिकाओं गंगा पृथ्वी और पार्वती के पुत्र महास्कंद दोनों की जो महामाता हैं वे स्कंद माता हम सब का कल्याण करें। माँ स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत सुंदर है, मुख पर वात्सल्य की आभा, दोनों हाथों में कमल पुष्प अर्थात फूलों सा कोमल और सुगंधि से परिपूर्ण व्यवहार, गोद में छह मुख वाले कार्तिकेय को एक हाथ से संभाले हुए और चौथे हाथ से सारे संसार को मानो अभय प्रदान करती हुई माँ सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन गता नित्यम पदमांचित करद्वया शुभदा अस्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। शिव के प्रसाद कार्तिकेय को जन्म देने वाली माँ जगदम्बिका ही तारकासुर के संहार का मूल हेतु बनी। स्कंद का जन्म सरल न था, इसके लिए तो बहुत वर्षों से देवताओं द्वारा योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जा रहा था। उमा के रूप में तपस्या रता माँ पार्वती की सप्तर्षियों ने और स्वयं भगवान शंकर ने जटाजूट युक्त ब्रह्मचारी बनकर परीक्षा ली और वे शिव के प्रति अपने अटूट विश्वास तथा अगाध श्रद्धा के कारण सफल हुईं। समग्र ऐश्वर्य के साथ देवगण और अपने भूत प्रेत पिशाजाति गणों के साथ दूल्हा भगवान शंकर हिमवान के द्वार पर आए और दुल्हन की माँ तो दूल्हे को देखकर मूर्छित हो गई, कहने लगी चाहे मेरी बेटी कुमारी रह जाए पर मैं कन्यादान न करूँगी। लो एक और विघ्न आ गया, तारकासुर के संहारक भावी देव सेनापति के जन्म में। खैर किसी तरह पार्वती जी की माँ मानी और विश्व का कल्याण करने वाले बाबा विश्वनाथ का विवाह हुआ। आज भी प्रत्येक हिंदू प्रतिवर्ष शिवरात्रि को उत्सव रूप में दिन भर व्रत रहकर इस अवसर का स्मरण अवश्य करता है। होके बैल पे सवार चले भोले बाबा ब्याह रचाने को, और तब शिव और शिवा का मिलन हुआ। माँ स्कंद माता ने पुत्र को जन्म दिया परंतु बालक की तृप्ति नहीं हो रही है। छह कृतिका माताओं ने उन्हें सरकंडों से भरे वन में पाला। प्रत्येक माता मुझे दूध पिलाकर संतुष्ट हो जाए यह सोचकर उन शिव कुमार ने अपने छह मुख कर लिए और इसीलिए शाण मातुर कहलाए। माताओं के दूध के ऋण को मैं सदा याद रखूं, इसी दृष्टि से उन्होंने अपना नाम कार्तिकेय रखा। कार्तिकेय सेनानी शरजन्मा षडानन। इन्हीं कार्तिकेय ने पराजित देवताओं के रक्षार्थ तारकासुर का वध किया और पुनः इंद्र को अमरावती का स्वामित्व प्रदान किया। अतएव या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अर्थात हे देवी आप ही हो जो सब प्राणियों में मातृभाव से स्थित हो। हे कल्याणकारिणी आपको नमस्कार है। हे माँ तू विधि वधु रमा तू उमा महामाया मूल प्रकृति विद्या तू तू जननी जाया। माँ अन्नपूर्णा है, तुम संसार शक्ति लय कीना पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला। जैसे प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बच्चा माँ को देखता है वैसे ही प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपासक माँ स्कंद माता को ही निहारता है क्योंकि वे ही सर्वशक्तिमती हैं। उन्हीं के वरद हस्तों की छाया में भक्तों का सर्वविध कल्याण समाहित है। भक्त तो आर्त भाव से पुकारता ही है देव प्रपन्नार्त्रि हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे शरणागत वत्सले हम पर

प्रसन्न हो। हे सारे विश्व की माता प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, ये विश्व, इसमें रहने वाले सारे प्राणी तुम्हारी ही संतान हैं, इनकी रक्षा करो। हे माँ स्कंद माता, जैसे तुमने भयाकुल देवताओं को बचाया था, वैसे ही हमें भी भय से बचाओ, हमारा मंगल करो। हे विश्व का पालन करने वाली माँ, अपने पुत्रों को, पुत्रियों को धन धान्य पुत्र निरोगी काया और सबसे बढ़कर यथार्थ ज्ञान दे सकने वाले नेत्र प्रदान करो। मैया रही है नंदन वन छाय फूलन की लोभिनिया,

तो ऐसी है पंचमी स्कंद माता, माँ का पांचवें दिन पूजित होने वाला स्वरूप। वे ही हैं जो क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर रूपी पांचों भूतों की नियामिका हैं। कहते हैं कि बलि वैश्वदेव स्वरूप प्रातः संध्या, दिवसारंभ, मध्यान्ह, सायं संध्या और मध्यरात्रि में की जाने वाली उपासना उन्हें अत्यंत प्रिय है। वे पंच प्रेत मंचाधिशायिनी हैं, पर हैं तो वे षणमुख पुत्र की माता। उन्हें पालना पोसना, सुधा श्रुति से उनका सिंचन माँ को विशेष प्रिय है। वे देव माता हैं। स्कंद माता का पूजन धन, पुत्र, सुख और यश प्रदान करने वाला है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण का कथन है। वरदायी पुत्रदायी धनदायी नमो नमः, सुखदायी मोक्षदायी स्कंद मात्रे नमो नमः। अस्तु, मातृनाम उच्चारण का फल ही संसार कष्ट से मुक्ति पाकर धन धान्य सुख समृद्धि प्राप्त करना है। जैसे माँ बालक को रोते हुए सारे कार्य छोड़कर उसे चुप कराती है, पयह पान कराती है, वैसे ही माँ स्कंद माता अपने भक्तों को भूषण, रत्न, फल, जल, गृह, धान्य, वस्त्र और सारे अभूष्ट प्रदान करती है, क्योंकि वे ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं की भी माता हैं। वे ही सृष्टि हैं, सर्जक हैं, पाता और संहर्ता हैं। पिता की अपेक्षा माँ की श्रेष्ठता 100 गुनी अधिक है, यह स्मृति वचन भी है। उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता, सहस्त्रम तु पितृन माता गौरवेणातिरिच्यते।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
0: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही, खेती का तरीका समझदार।
2: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
0: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
2: किसान वही, खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
0: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। विचार बिंदु के अंतर्गत लीजिए सुनिए पंडित वल्लभ पंत के विचार।
4: पंत जी को हिंदी से प्रेम था और उनका हिंदी से हार्दिक लगाव था। दो सितंबर 1959 को पंत जी ने राजभाषा संबंधी संसदीय प्रतिवेदन के बारे में बोलते हुए कहा, हम ये बताना नहीं भूल सकते हैं कि जहाँ तक सामान्य भाषा का संबंध है, जिसे जनतंत्रीय स्तर दिया गया है, वहाँ केवल अपनी ही भाषा उसकी पूर्ति कर सकती है। अंग्रेजी एक कठिन भाषा है। अंग्रेजी सीखने में मैंने कई वर्ष व्यतीत कर दिए हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कितनी भूलें करता हूँ। मातृभाषा की बात ही दूसरी है, तथा एक विदेशी भाषा जो इस प्रकार सीखी जाए बहुत कठिन होती है। इसके अतिरिक्त सामान्य नागरिक के लिए जो इसी प्रकार के अन्य विषयों को नहीं समझ पाते हैं, उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। हमें याद रखना चाहिए कि एक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार है, प्रशासकीय तथा न्यायपालिका के प्रयोग की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे अधिक से अधिक संख्या में लोग सीख सकें और अंगीकार कर सकें। तथापि प्रादेशिक भाषाओं पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हिंदी पर। हमारे यहाँ विविधता है, यही हमारी एकता की जीवन शक्ति है। विविधता जारी रहेगी, हमें प्रादेशिक भाषाओं को बढ़ाना है। विभिन्न प्रदेशों को अपनी प्रादेशिक भाषाओं में अधिक से अधिक काम करना चाहिए। पंत जी ने भाषा से प्रेम होते हुए भी उसकी समस्या को सदैव एक प्रशासक के रूप में देखा। यद्यपि उनका यह निश्चित मत था कि भारत की सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी ही हो सकती है, तथापि अपने स्वभावानुसार उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे अहिंदी भाषा भाषियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ता। पंत जी छुआछूत के कट्टर

विरोधी थे। इसका पता अस्पृश्यता निवारण विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए 27 अप्रैल 1955 को उनके द्वारा दिए गए भाषण से लगता है। पंत जी ने इस अवसर पर कहा था, अस्पृश्यता का ये रोग हमारे समाज की रगों के अंदर तक समा गया है। ये केवल हमारे धर्म पर ही कलंक नहीं है, अपितु इससे असहनशीलता, जातिवाद और विखंडनात्मक प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा मिलता है। हमारे समाज की अधिकांश बुराइयों का मूल इस निंदनीय कुरीति में है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं पशुओं के लिए आवश्यक खनिज तत्व विषय पर डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप की वार्ता।
1: किसान भैया बहनी हरन अपन पशुपालन करत हमें तो पशुपालन करत समय भी तरह तरह के उनके जो उन्हें खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आज अपने कार्यक्रम में भैया डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप भैया आए हैं जो वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से। भैया आप जो हैं अपने कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और हम आपसे ये जानना चाहे थे कि पशुअन के लिए जौन बा खनिज तत्व ये खनिज तत्व का बा एके बारे में बताएं।
2: सभी किसान भाइयों को राम राम। कभी कभी हम अपने पशुओं के लिए बहुत छोटी मात्रा में जो चीज़ जरूरी होती है उसको हम लोग समझ नहीं पाते या किसी कारणवश भूल जाते हैं
1: जी।
2: तो किसान भाइयों सामान्य भाषा में खनिज तत्व सरल अकार्बनिक पदार्थ हैं जो पशु के शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं और ये हर पशु के शरीर में लगभग 3-5% पाया जाता है
1: जी।
2: सामान्यतः पशुओं के शरीर सभी खनिज तत्व होते हैं। अभी तक पशु आहार में लगभग 22 प्रकार के खनिज तत्वों की जानकारी है और साथियों पशुओं में उनका स्वास्थ्य तथा उत्पादकता के लिए ये तत्व बहुत ही जरूरी समझ लीजिए हैं। जिस प्रकार से अगर हम अपने इंजन में ऑयल नहीं डालेंगे तो इंजन की कार्यक्षमता घट जाएगी, उसी प्रकार अगर हमारे पशुओं में खनिज तत्व हम नहीं देंगे तो उनकी शरीर की क्रियाओं जैसे विकास उत्पादन प्रजनन पाचन में हानि होगी।
1: यानी मतलब कि खनिज तत्व के कमी से पशुओं में तरह तरह की समस्या आ जाए
2: आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, तो डॉक्टर साहब आप ये बतावें कि कौन कौन से खनिज तत्व बा और खनिज तत्वों से कौन कौन तरह के लाभ मिलत है इस बारे में फरिया ही बताएं।
2: अच्छा अच्छा बिल्कुल। देखिए हमारे पशुओं में खनिज तत्व की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है
1: जी।
2: दुग्ध उत्पादन हो गया, शरीर के अतिरिक्त क्रियाकलापों को ठीक से काम करने के लिए
1: हाँ।
2: बहुत जरूरी है, साथ ही शरीर के विकास के लिए। और खनिज तत्व अगर जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस जो कि बहुत सामान्य है खनिज तत्व हमारे जो ये प्रमुख हैं ये हड्डी और दांत के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। खनिज तत्व पाचन क्रिया में जरूरी भूमिका निभाते हैं और ये खनिज तत्व जैसे आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, ये पशुओं के प्रजनन क्षमता के लिए भी जरूरी हैं।
1: अच्छा।
2: और इनकी कमी से पशुओं में प्रजनन संबंधी बहुत समस्याएँ हो जाती हैं
1: जी।
2: इसके बाद और हम देखते हैं कि खनिज तत्व जैसे कि कैल्शियम फॉस्फोरस पशुओं के लिए उत्पादन के लिए

0: हाँ
1: तथा हड्डी को मजबूत बनाने के लिए जरूरी होते हैं।
0: जी
1: कुछ खनिज तत्व जैसे आयोडीन थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। वहीं पर सेलेनियम और जिंक पशुओं की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगर
0: अच्छा।
1: इनकी कमी रहेगी तो बार बार पशु हमारा बीमार होगा।
0: जी, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहे थे कि जैसे कि इजोन आप खनिज तत्व के बारे में बता रहे हैं,
1: हाँ
0: तो ये
1: भैया,
0: खनिज तत्व तो अपन किसान भैया बहनी हरिन कहाँ कहाँ से प्राप्त कराएं, यह बारे में बताओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हमारे पशुपालक भाई या किसान भाई अपने पशु को हरा चारा दे रहे हैं, संतुलित आहार दे रहे हैं,
0: जी
1: तो खनिज तत्व की कमी कम होती है।
0: हाँ
1: फिर भी अगर किसी कारणवश हम हरा चारा या दाना नहीं दे पाते हैं, तो जो मुख्य स्रोत हैं जैसे कैल्शियम, ये हमारा फलीदार चारे से मिल सकता है, जैसे
0: हाँ
1: बरसीम है, लूसन है, रिचका है, लोबिया है। फास्फोरस चोकर और चावल की भूसी खली में पाया जाता है, वहाँ से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी
1: इसके साथ ही साथ अगर हम चाहें तो, अगर जैसे हमारा एक तत्व हमने बताया जिंक,
0: हाँ
1: ये भी बरसीम लूसन हरे चारे से मिल सकता है। चोकर है, खली है, दाल है, ग्वार की चूरी है, इनमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक और तत्व होता है तांबा, जिसको हम कहते हैं, या कॉपर जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है,
0: जी जी
1: ये भी चोकर खली हरे चारे से प्राप्त हो जाता है।
0: हाँ
1: एक और तत्व होता है लौह तत्व, जिसको हम कहते हैं लोहा, ये
0: हाँ
1: भी हरे चारे से और पेड़ की पत्तियां जैसे पाकड़ है, बबूल है, नीम की पत्ती हम अगर पशुओं को अपने खिलाते हैं तो उनसे भी प्राप्त हो सकता है।
0: जी
1: इसी प्रकार एक और तत्व होता है भैया मैग्नीज, जिसको हम कहते हैं,
0: हाँ
1: ये भी चावल की पालिश, चोकर, जौ, जई, मक्का आदि के दाने में तथा दलहनी हरे चारे में।
0: हाँ हाँ
1: देखिए, अभी किसान भाई हमारे चूँकि बरसात में हरा चारा हो जाता है,
0: जी
1: जब रबी का सीज़न या जायद में, तो हरा चारा का अभाव हो जाता है।
0: हाँ हाँ
1: तो ऐसे समय में अगर किसान भाई किसी उर्वरा वाले खेत में, जिस खेत की मिट्टी अच्छी हो, वहाँ पे हरा चारा लगाएंगे, तो
0: हाँ
1: स्वतः सारे पोषक तत्व पशुओं को प्राप्त होते रहेंगे।
0: जी, और साथ ही साथ हम आपसे यह जानना चाहे थे कि भैया जैसे कि खनिज जौन तत्व बा ये खिलाए से अपने पशुपन का लाभ कौन कौन तरीके से और बढ़िया हो सके, वह बारे में बताओ।
1: सुरेमन भैया, आपने बहुत सही बात पूछी है।
0: हाँ
1: जैसे हम लोग देखते हैं कि जो लोग पान खाते हैं वो चूना ज़रूर चाटते हैं,
0: हाँ हाँ
1: या कुछ लोग खाने के साथ चटनी ज़रूर खाते हैं।
0: हाँ
1: इसी प्रकार अगर हम अपने पशुओं को, विशेषकर दूध देने वाले पशुओं को,
0: जी
1: उच्च गुणवत्ता युक्त तथा सही मात्रा में खनिज तत्व खिलाते हैं या उसका मिश्रण खिलाते हैं,
0: हाँ
1: तो पशुओं को बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। उनमें से कुछ जैसे पशु का दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सकती है,
0: हाँ
1: दूध घटने नहीं पाएगा, नर
0: जी
1: तथा मादा पशुओं के प्रजनन क्षमता में सुधार होगा। हम लोग देखते हैं कुछ पशुएं ब्याने के बाद गर्मी में नहीं आती हैं,
0: हाँ हाँ
1: या बच्चा गर्भपात हो जाता है, तो अगर हम प्रचुर मात्रा में या उचित मात्रा में हम सूक्ष्म पोषक तत्व देते हैं और खनिज तत्व खिलाते हैं,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: हमारे पशुओं में इनसे भी समस्या से निजात मिलती है। और जो
0: अच्छा
1: हमारे वृद्धि वाले बच्चे हैं, बछड़ा है, बछड़ियाँ हैं, इनका शारीरिक विकास दर में सुधार होता है।
0: जी
1: एक सबसे बड़ा जो हमारे पशुपालक भाई समस्या ग्रसित होते हैं, वो होता है दो, एक पशु के दो ब्याद के बीच में अंतर।
0: हाँ
1: अगर हम पोषक तत्व या खनिज तत्व सही मात्रा में खिलाएं, तो दो ब्याद के बीच के अंतर में भी कमी हो सकती है।
0: जी, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब हमारे किसान भैया बहनी हरिन पशुपालन भी करत हैं, जैसे कि जो ने अपन तरह तरह के जो पशुपालन कर रहे हैं, इन
1: जी भैया,
0: पशुपालन के भी खान पान में खनिज तत्व का कैसे और बातन का ध्यान रखें।
1: बिल्कुल सही बात। देखिए, पशु चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो,
0: जी
1: काम करने वाले पशु की आवश्यकता अलग होती है, दूध देने वाले पशु की आवश्यकता अलग होती है,
0: हाँ
1: जो प्रजनन योग्य हैं उनकी आवश्यकता अलग होती है। तो हम
0: अच्छा
1: अपने इन सभी पशुओं को, अगर हमारा बड़ा पशु है दूध देने वाला, तो उसको 40-50 ग्राम खनिज तत्व प्रतिदिन, आजकल बहुत से प्रकार के तत्व बाज़ार में उपलब्ध हैं, कई नामों से आते हैं, आप वो ले सकते हैं। या दूध देने वाली बकरियाँ, तो उनको 15-20 ग्राम प्रतिदिन हम दे सकते हैं।
0: जी
1: और अगर कोई छोटा बच्चा है गाय भैंस का, तो उसको भी हम 15-20 ग्राम प्रतिदिन दे सकते हैं।
0: अच्छा
1: सबसे बढ़िया तरीका है जब हम उसको अपना दाना देते हैं, दाना बनाते हैं, तो उसी दाने में हम 100 किलो में अगर हम 2 किलो दाना खनिज तत्व तो मिला दें, तो पशु को आराम से वो मिलता रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम रोज़ देंगे तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि
0: जी
1: हम अपने पशु को रोज़ एक मुट्ठी या 40-50 ग्राम हम खनिज तत्व तो दे रहे हैं।
0: हाँ, और डॉक्टर साहब जैसे कि हमारे किसान भैया बहनी हैं कि
1: जी
0: जैसे
1: जी
0: कि बहुत से ऐसे पशु हैं
1: जी
0: कि
1: भैया,
0: अपन जो है वो

0: तरह की जैसे जीभ निकाल के भी जो उन्हें मड़ोरत रहते हैं, तो ऐसे दशा में अपने पशुअन का उका खनिज तत्व की कमी की वजह से
1: ये बहुत सामान्य बात। अब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा
0: जी।
1: जैसे कह रहे हैं जीभ निकालते हैं, आप अगर पशु के पास खड़े हो जाएं
0: हाँ।
1: तो आपकी खाल भी चाटते हैं वो, या मिट्टी चाटते हैं, दीवाल चाटते हैं, गंदा कपड़ा चाटते हैं
0: हाँ।
1: ये, या एक दूसरे पशु का मूत्र पीने का प्रयास करते हैं, ये सभी खनिज तत्व की कमी के लक्षण हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप कम से कम अपने पशुओं को खाने वाला नमक जरूर दें। अगर हम खाने वाला नमक देते हैं तो उसको कम से कम सोडियम और क्लोराइड दो तत्वों की पूर्ति हो जाती है। खाने वाला नमक अगर हम खली के साथ मिला सकते हैं तो उचित है, अगर हम खली में नहीं मिला पाते किसी कारणवश
0: हाँ।
1: तो वही जब हम दाना बनाते तो उसमें अगर हम 100 किलो में 1 किलो भी डाल देंगे, 1.5 किलो भी मिला देंगे तो पशु को सॉल्ट के रूप में या नमक के रूप में उसको सोडियम और क्लोरीन मिलता रहेगा।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे कि आप खूब फरियाए के जानकारी दीन और किसान भैया बहनी हरेन आपके जौन ही जानकारी से बढ़िया लाभ उठी हैं, और साथ ही साथ जैसे कि जौन आप बताएं कि खनिज तत्व तरह तरह के जौन खनिज तत्व बा, और जैसे कि जिंक है, आयरन है, मैंगनीज
1: है,
0: कापर है,
1: है,
0: जिंक है, भी इस तरह की जौन 22 तत्व के बारे में आप बताएं।
1: जी।
0: अगर हमारे किसान भैया बहनी हरेन अपन पशुओं का स्वस्थ रखी हैं और रखे के साथे साथ अपन पशुओं का लगातार निगरानी करी हैं,
1: इन तत्वों की पूर्ति
0: हाँ,
1: करें जी,
0: तो इसे हमारे जौन पशु हैं पशुओं का बढ़िया लाभ मिली, उनके स्वास्थ्य में कोनो तरह की कमी ना आई, स्वस्थ रही हैं, और दुग्ध दे वाली जौन दूध दे वाली अपन जौन पशु हैं उनके स्वास्थ्य में कोनो तरह की कमी
1: और
0: ना
1: उत्पादन
0: आए।
1: उनका बना रहेगा,
0: हाँ
1: उत्पादन बना रहेगा।
0: हाँ तो डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आएं और हमारे किसान भैया बहनिन का पशुओं के लिए आवश्यक खनिज तत्व के बारे में जौन आप फरियाए के जानकारी दीन, ये जानकारी दे खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पशुओं के लिए आवश्यक खनिज तत्व, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप की वार्ता। किसान भाइयों अब अनुमति दीजिए।
0: किसान भैया बहनी हरेन अपन पशुपालन करत हैं तो पशुपालन करत समय

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है ल्यूकोडर्मा के कारण और उपचार। इस विषय पर डॉक्टर सुधा यादव से बातचीत कर रही हैं नेहा गुप्ता।
1: आज हम बात करेंगे सफ़ेद दाग, जिसको कि विटिल्गो भी कहते हैं। समाज में इसको लेकर बड़े सारे मिथक हैं। लोगों को लगता है कि ये छुआछूत का रोग है और कुछ लोग इसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। लेकिन इसकी बजाय अगर हम विज्ञान के नज़रिए से देखें तो बात बिल्कुल अलग है। ये कोई बड़ी समस्या है ही नहीं और हम जिंदगी बड़े आराम से हर चीज़ों के साथ जी सकते हैं। जी हाँ, खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुधा यादव जी। आप त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर सुधा। सबसे पहले हमारे सुनने वालों को बताएं, जैसे कि किसी इसकी भाई स्किन गोरी होती है, सांवली होती है, गेहुआ होती है, कोई विटिल्गो जैसी स्किन होती है, सफेद दाग पूरे उनके चेहरे पर होते हैं या हाथ पाँव में होते, तो इसको कैसे समझा जा सकता है, हम लोग कैसे समझें इसे?
2: देखिये, विटिल्गो या जिसे हम आम भाषा में सफेद दाग कहते हैं, वो चीज एक तो ये है कि सफेद दाग सबने देखा हुआ है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी को आम चलते फिरते भी देखते हैं। अगर वैसे मैं कहूँ एक त्वचा रोग विशेषज्ञ उसमें, तो आज की तारीख में हर कोई गोरा होना चाहता है,
1: बिल्कुल,
2: पर वो गोरा और सफेद में अंतर आ जाता है
1: जी।
2: जो सफेद दाग होगा, आपने देखा होगा लोगों के नॉर्मल कलर का त्वचा है उसमें टुकड़े टुकड़े में पैचेस में सफेद दाग होता है
1: जी।
2: ये सफेद दाग, सबसे पहला तो ये चीज मैं बताना चाहूंगी कि ये छुआछूत का रोग एकदम नहीं।

0: होता है।
1: जी
0: सामान्यतः लोग इसी चीज से डरते हैं और किसी को सुन लिया कि उसे सफेद दाग है या देख
1: तो
0: लिया
1: उसके
0: तो
1: पास
0: उसके
1: जाने
0: पास
1: से भी
0: जाना नहीं चाहते हैं, उसका छुआ खाना नहीं चाहते हैं, ऐसा काफी होता है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि सफेद दाग इतनी बड़ी सामाजिक समस्या बन चुका है कि ये अगर हम कहें तो डॉक्टरी भाषा में हम लोग इसे बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं है, जैसे नॉर्मल और बीमारियां होती हैं। या सही ढंग से कहूँ तो सफ़ेद दाग एक वैज्ञानिक उसमें ये बीमारी है ही नहीं, सिर्फ ये एक सौंदर्य समस्या है और कुछ नहीं है।
1: ये यानी सौंदर्य समस्या है
0: ज़्यादा उसमें कहा जाए सिर्फ कलर का चेंज होता है, जिसको भी ऐसा है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि उसको अंदरूनी कोई समस्या है या हो सकती है। इसमें छुआछूत जैसा तो कोई मुद्दा ही नहीं है।
1: डॉक्टर सुधा, कुछ लोग बोलते हैं ये हेरिडिटरी होती है कि अगर मदर या फादर को है या फिर उनकी हिस्ट्री में किसी को है तो पैदा होने वाले बच्चे में भी होने की संभावना रहती है, इसीलिए वो लोग शायद इसको अच्छी दृष्टि से देखना
0: नहीं
1: पसंद
0: देखते
1: नहीं करते।
0: जी, तो वैज्ञानिक उसमें अगर कहूँ तो माता और पिता अगर दोनों में सफेद दाग है या उनकी फैमिली में भी रहा है तब होने वाले बच्चे में 30% चांस होता है।
1: जी
0: पर आज के उसमें अगर मैं कहूँ, मैं पिछले 20 साल से त्वचा मरीजों को देख रही हूँ, तो शायद ही 1-2% लोग ऐसे आए हैं जिनमें पारिवारिक ये रहा है इतिहास कि किसी को सफ़ेद दाग था। पर इसका डर मुझे लगता है 100% लोगों में इसका डर ज़रूर रहता है कि ये पारिवारिक समस्या है। खासकर अगर मैं कहूँ तो शादी ब्याह के मामले में लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं इस चीज़ पे कि
1: बिल्कुल
0: सफ़ेद दाग नहीं होना
1: नहीं
0: चाहिए।
1: हो लड़की को
0: बहुत सारी शादियां सफ़ेद दाग की वजह से टूट
1: नहीं।
0: जाती हैं।
1: जी जी
0: कितने बार ऐसा होता है कि लोग जैसे ना लड़की के पक्ष के लड़की के पक्ष के लोग आते हैं कि देखिए इसको सफ़ेद दाग है तो इस वजह से शादी नहीं हो रही। तो हम समझ सकते हैं लड़की वाले क्या होता है, वो बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं। मतलब अगर
1: बिल्कुल
0: मैं कहूँ तो अधिकतर बार वो रो रहे होते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है।
1: जी
0: तो अगर मैं कहूँ सफ़ेद दाग का इलाज तो है, हम लोग करते भी हैं, पर उससे ज़्यादा ज़रूरत होता है उनको समझाना इस चीज़ के लिए।
1: मतलब इसको दिमाग में ही ना रखें कि ये कोई समस्या
0: एकदम
1: भी है।
0: मेरे हिसाब से तो कहना, मैं अगर आपको बताऊँ मेरे दो मरीज
1: जी
0: और वो दोनों सफ़ेद दाग है दोनों को, पहले से अलग अलग दिखाते थे,
1: जी जी
0: एक बार बाद में साथ आने लगे। तो एक बार देखा मैंने, दो बार मुझे लगा जान पहचान होगी, फिर उन्होंने बताया हमने आपस में शादी कर ली है।
1: बढ़िया।
0: आज वो अपने बच्चे को लेके आते हैं, पहली बार इसी डर के साथ वो आए कि मैडम कहीं इसको तो नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे उनको देख के बड़ा, जो उन्होंने कहा कि हम दोनों लोग वही समस्या से झेल रहे थे तो हम आपस में मिले तो हमें लगा हम आपस में क्यों ना कर लें। तो वो देखिए अगर वो सोचते हैं कि नहीं अगर हमने आपस में किया तो कल को हमारे बच्चे को हो जाएगा, ऐसा कुछ
1: ये
0: भी
1: सब
0: नहीं है।
1: अच्छा, लोग पिगमेंटेशन की बात करते हैं कि वहां पे जैसे त्वचा के खास जगह पे पिगमेंटेशन नहीं हुआ इसीलिए उसका रंग बदल गया,
0: बस
1: क्या ऐसा है?
0: यही है, सफेद दाग सिर्फ यही है कि वहां जो रंग बनाने की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम लोग मेलानोसाइट्स कहते हैं, हमारी त्वचा का रंग अलग अलग होता है ना, कुछ लोग बहुत गोरे होते हैं कुछ बहुत सांवले होते हैं, तो वो जो रंग का अंतर होता है वो सिर्फ मेलानिन या मेलानोसाइट्स जिन्हें कहते हैं मेलानिन बनाने वाली कोशिकाएं उनकी वजह से होता है। अगर वैज्ञानिक उसमें देखें जो सांवले लोग हैं ज्यादा जिनमें मेलानोसाइट्स हैं वो सांवले होते हैं और उनमें त्वचा के कैंसर और बहुत सारी त्वचा की बीमारियां कम होती हैं। लेकिन आज या तो सोशल मीडिया का कहा जाए या सौंदर्य प्रसाधनों का कहा जाए, हर कोई गोरा बनना चाहता है कि हम ज्यादा से
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:51 और 15 सेकंड हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 4 बजे। इसे हम दिल्ली की ओर से रिले करेंगे। छह बजकर 50 मिनट पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित अनोखे लाल का तबला वादन सुनिएगा सुबह 7:30 बजे।

सवा बारह और रात साढ़े दस बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में मनीषा निरखी के भजन प्रसारित किए जाएंगे सुबह 9:50 में। श्रीकांत वैश्य के गाए भजन और गीत शाम 5:45 पर सुनिएगा। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 8:45 पर। प्रस्तुति होगी श्री अभयकांत तिवारी जी की।

रश्मि भारतीय, कुंवर सिंह और साथी और संगीता मिश्रा के गाए लोकगीत सुनिएगा सुबह 10:30 बजे। श्रोता अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे।

रश्मि भारतीय, कुंवर सिंह और साथी और संगीता मिश्रा के गाए लोकगीत सुनिएगा सुबह 10:30 बजे। श्रोता अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे। आपकी पसंद कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार।

1:15 पर पनघट कार्यक्रम होगा, जिसमें बहनें सुनेंगी परिचर्चा। विषय होगा खेती में ग्रामीण बहनों का सहयोग। परिचर्चा का हिस्सा होंगी मंजू देवी, मंजू यादव, निर्मला देवी। इनसे बातचीत की है नेहा गुप्ता जी ने।

0: एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए दिन में 2:30 बजे। शाम 5:15 बजे युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर कलाम पर आधारित रूपक। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे किसान चर्चा के अंतर्गत इंद्र बहादुर सिंह और राजेंद्र कुमार की बातचीत। शाम 7:31 पर सुनिएगा कहानी प्यार के रंग। गजलों पर आधारित कहकशा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 9:30 बजे। ये थी आज की रूपरेखा हमारे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन लद्दाख राज्ये प्रायः 50-300-3000 कोटि रूप्यकाणां 5 प्रमुख विकास परियोजनानां उद्घाटनं राष्ट्राय समर्पणं विधास्यति। एतासां परियोजनानां उद्देश्यं संपर्क व्यवस्थायाः सुदृढीकरणं, ऊर्जा संबद्ध आधारित संरचनायाः परिष्करणं, सांस्कृतिक वैभवस्य संरक्षणं तथा क्षेत्रे जलसुरक्षायाः संवर्धनं चास्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री एकां जनसभाम् अपि संबोधयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां अस्मिन् वर्षे आयोजितासु एशिया क्रीडायाः भारतीय क्रीडक दलस्य सदस्यैः सह संवादं विधास्यति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूहम् अपि संबोधयिष्यति। अवधेयं यत् जापान देशस्य आइची नागोया नगरे आयोजितासु एशिया क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां 4th स्थानं प्राप्तवत्। भारतेन आहत्य 85 पदकानि प्राप्तानि, येषु 21 स्वर्णपदकानि, 27 रजतपदकानि तथा 37 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: यात्रा रताः अपि जगत् वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। PB शब्द माध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः श्रृण्वन्तु।
1: प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 40,000+11,00,000 रेल कर्मचारिभ्यः 78 दिवसानां वेतन समतुल्यं PLB इति उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन धनम् अनुमोदितम्। मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः वार्ताहरान् संसूचितवान् यत् अस्य धनस्य वितरणाय प्रशासनेन 9,200,000,000,000+ राशिः आवंटितास्ति। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन अस्माद् वर्षादारभ्य 5 वर्ष

0: वर्षपर्यन्तं राष्ट्रियसामाजिकसहायताकार्यक्रमस्य निरन्तरतायै अनुमोदनं प्रदत्तम्। अस्य कार्यक्रमस्य कृते 28,453,000 व्ययः निर्धारितः अस्ति। अस्य राष्ट्रियसामाजिकसहायताकार्यक्रमस्य नाम परिवर्त्य प्रधानमन्त्रीसामाजिकसहायतायोजना इति कृतमस्ति। श्रीवैष्णवः दिव्याङ्गपेन्शनयोजना इत्येताम् आलक्ष्य अवदत् यत्
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: कृषि कृषक कल्याण विभागः अद्य नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य महिला कृषक दिवसस्य राष्ट्रीय स्तरीयं कार्यक्रमस्य आयोजनं करिष्यति। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं भारतीय कृषि क्षेत्रे महिलानां योगदानस्य सम्मानः अस्ति। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी चेत्येतेषु स्थलेषु अतिवृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा नारंगवर्णपरा संचेतना प्रकाशिता। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ हैदराबादे आयोजितायां चतुर्थायां 20-प्रति-20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धायां वेस्टइंडीज दलेन भारतं 24 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ की प्रस्तुति सुन रहे थे। संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मों से भजन। श्रोताओं, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सुबह की पावन बेला है, सूरज की पहली किरण के साथ हवाओं में भी एक अलग सी पवित्रता है, क्योंकि सृष्टि आदिशक्ति माँ की भक्ति से सराबोर है।

आज नवरात्रि का पांचवा दिन है और आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। आदिशक्ति माँ जगदम्बा की महिमा अपरंपार है। उनके सुमिरन से ही जीवन की सारी नकारात्मकताएं मिट जाती हैं और सकारात्मक का प्रकाश भर जाता है। और श्रोताओं, भजन वो भाव है जिसमें शब्द भले ही कम पड़ जाएं पर भावनाएं और गहरी हो जाती हैं, और जब माँ की कृपा होती है तो माँ अपना बुलावा भेज ही देती है।

माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिल्म से भजनों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब समय है प्रादेशिक समाचार का, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2031 तक जारी रखने को भी मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम स्थलों का किया स्थलीय निरीक्षण। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा के विमोचन में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुस्तकालय विकसित करने की दिशा में काम कर रही है सरकार। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 महीने के भीतर ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का दिया आदेश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 लाख 40 हजार से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का उत्पादकता आधारित बोनस देने को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी त्योहारों से पहले गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जा रहा है।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को भी स्वीकृति दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिजेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3 करोड़ 20 लाख हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्री

0: मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भारत सेवाश्रम संघ के उल्लेखनीय कार्यों के बारे में चर्चा की।
1: देश और धर्म के लिए मरेंगे, देश और धर्म के लिए जी रहे, ये जो जज्बा है, यही जज्बा तो विपरीत परिस्थितियों में भारत को भारत बनाया हुआ, यही जज्बा है जो दुनिया की तमाम संस्कृतियों को नष्ट करती है, लेकिन भारत आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने वाराणसी बलियाखंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रदेश विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में कल वाराणसी में आयोजित शिक्षक स्नातक सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियों की समीक्षा की और संभावित कार्यक्रम स्थलों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग लोगों को मात्र 52 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर चीनी उपलब्ध कराएगा। उपभोक्ता लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान परिसर में स्थित चीनी निगम और सहकारी चीनी मिल संघ के चीनी विक्रय केंद्र से उक्त दर पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में उनकी आत्मकथा भारतीय गणतंत्र की विजय गाथा मेरा जीवन मेरा संघर्ष का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विमोचन किया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद प्रदेश को नई ऊर्जा मिली है।
2: वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद प्रदेश में विकास के कार्यों को, कानून व्यवस्था को और सुशासन को एक नई ऊर्जा मिली। योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प किया है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुस्तकालय विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
3: हर ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी बन रही है, डिजिटल लाइब्रेरी भी बन रही है। 57,600 ग्राम सचिवालय बन गए हैं। सचिवालय में एक रूम केवल और केवल लाइब्रेरी का है। गांव के बच्चे वहां पर जाके अब पढ़ते हैं।
0: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव 3 महीने के भीतर कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में अपना कार्यभार संभालते रहें। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेड़वा ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे हुए पात्र नागरिकों और पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 17 और 24 अक्टूबर को प्रत्येक बूथ में एक विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर दिए हैं। उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र जनसेवा से देश सेवा रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय ने किस तरह इस दृष्टिकोण को साकार किया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो भी भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय

0: उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
1: देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
0: नई दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सोच, नेतृत्व और योगदान को सामने लाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने अपने प्रदेश दौरे के दूसरे दिन कल प्रयागराज में अक्षय वट का दर्शन पूजन किया और संगम गए। उन्होंने प्रयागराज के अंधावा केंद्र का निरीक्षण भी किया। शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन आज प्रदेश भर में माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में घंट, घड़ियाल और आरती के बीच बड़ी संख्या में भक्त माँ के दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2031 तक जारी रखने को भी मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम स्थलों का किया स्थलीय निरीक्षण। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा के विमोचन में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुस्तकालय विकसित करने की दिशा में काम कर रही है सरकार। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 महीने के भीतर ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का दिया आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें सुनिए आज पंडित अनोखे लाल का तबले पर बजाया 3 ताल।

0: विज्ञापनों की बुकिंग
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242। सुनो ना।
0: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
2: खेती में मेहनत।
3: समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मंत्रिमंडल ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। सरकार ने गन्ना किसानों के मुद्दों की जांच और उचित उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश की संभावना। और वेस्टइंडीज ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वे इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
4: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
3: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस PLB को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
5: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
3: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
5: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
3: ये समाचार हमारी

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित अनोखे लाल का तबले पर बजाया तीन ताल। अब से कुछ ही देर में अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए

0: न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटका और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरूआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
5: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
6: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है

0: हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
1: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
2: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
1: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
4: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
3: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर हुरमुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है। फिलहाल दोनों जहाजों के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। और कोलंबिया ने कल यरूशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प्रियेला ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
6: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पांच देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत करिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में तकरीबन 3,350 करोड़ रुपए मालियत के 5 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। मरकजी काबीना ने रेलवे के 11 लाख से ज्यादा मुलाजमीन के लिए पैदावार से मुंसलिक 78 दिन के बोनस को मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो गन्ना किसानों की जानिब से उठाए गए मामलात का जायजा लेगी और मुनासिब इकदामात की सिफारिश करेगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और मर्दों की क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने चौथे T20 मैच में भारत को 24 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-2 से बराबरी हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लद्दाख में तकरीबन 3,350 करोड़ रुपए मालियत के 5 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद खित्ते में कनेक्टिविटी को मुस्तहकम बनाना, तवानाई के बुनियादी ढांचे में सुधार लाना, सकाफती विरासत को महफूज रखना और पानी की दस्तियाबी में इजाफा करना है। जनाब मोदी इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म लेह में कुशोक बाकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नई मुसाफिर टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे जो 640 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई है। ये 23,800 मुरब्बा मीटर से ज्यादा के इलाके में फैली हुई है। जदीद तर्ज के इस टर्मिनल से सालाना 35 लाख मुसाफिरों की आमद रफ्त में सहूलत होगी। जनाब मोदी 298 किलोमीटर तवील निम्मू पदम दारचा रोड को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे जिसे सरहदी सड़क तंजीम ने तामीर किया है। दूर दराज की जंस्कार वादी के रास्ते ले में निम्मू को हिमाचल प्रदेश में दारचा से जोड़ने वाले इस सड़क राबते से लद्दाख के लिए मुतबादल कनेक्टिविटी कॉरिडोर फराहम होगा। वज़ीर-ए-आज़म 9 मेगावाट के हनु छोटे पन बिजली प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी लेह में सिंधु घाट के मकाम पर भारत के पहले पेट्रोलेक कंजर्वेशन पार्क का इफ्तिताह भी करेंगे। जनाब मोदी प्रोजेक्ट हिम सरोवर के तहत 40 गांवों में 40 आबी जखीरों का आगाज भी करेंगे। मिशन अमृत सरोवर के मकासद के ऐन मुताबिक पानी की बचत के जरिए लद्दाख के मुनफरिद जोग्राफियाई और आबो हवा के चैलेंजों से निमटने के मकसद से ये पहल शुरू की गई है। ले लद्दाख से फुनसोक वांगमो की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में उन भारतीय खिलाड़ियों से गुफ्तगू करेंगे जिन्होंने 2026 के नागोया एशियाई खेलों में हिस्सा लिया था। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: जापान में हालिया एशियाई खेलों में भारत मजबूती तौर पर 85 तमगे जीतकर चौथे मकाम पर रहा। इनमें सोने की 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। इस तरह भारत लगातार दूसरी मर्तबा एशियाई खेलों में चोटी के 5 मुल्कों में शामिल रहा। इससे मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में भारत की बढ़ती हुई मसाबिकत की अक्कासी होती है। भारत ने इन खेलों में कई काबिले कदर कामयाबियां हासिल की। इनमें रिकर्व तीरंदाजी में तारीखी कारकर्दगी, मर्दों और खवातीन की हॉकी दोनों में सोने के तमगे, नीज, सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड

0: मार्शल आर्ट्स में पहली बार तमगे जीतना शामिल है। दिल्ली से नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: मरकजी काबीना ने रेलवे के 11,40,000 से ज्यादा मुलाजमीन के लिए पैदावार से मुंसलिक बोनस को मंजूरी दे दी है, जो 78 दिन की उजरत के बराबर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी देते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने इसके लिए 2,009 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए हैं।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: हर अहल मुलाजिम के लिए 78 दिन के ज्यादा से ज्यादा बोनस की रकम 17,951 रुपए होगी। ग्रुप सी के रेलवे अहलकार इसके दायरे में आएंगे। इनमें ट्रैक मेंटेनर्स, लोको पायलट्स, ट्रेन मैनेजर्स, गार्ड्स, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीकी अहलकार और पॉइंट्समैन शामिल हैं। काबीना ने समाजी इमदाद के कौमी प्रोग्राम को मजीद 5 साल जारी रखने की भी मंजूरी दी है। इसकी मुद्दत साल 2030-31 तक होगी। इसके लिए 53,428 करोड़ रुपए का मजमूई बजट रखा गया है। इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने IDBI बैंक की क्लीदी तंजीमों को भी मंजूरी दी है। ये फैसला किया गया है कि IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी एक क्लीदी खरीदार को फरोख्त की जाएगी। सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो गन्ना किसानों की जानिब से उठाए गए मामलात का जायजा लेगी और उनकी तशवीश के ताल्लुक से मुनासिब इकदामात की सिफारिश करेगी। नीति आयोग के साबिक मेंबर प्रोफेसर रमेश चंद इस कमेटी की सदारत करेंगे। ज़रात और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर, नीज सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आमा महकमे के मरकजी वजीर के साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के नुमाइंदों की मीटिंग के दौरान किए गए फैसलों के तनाजुर में ये कमेटी तश्कील दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: ये कमेटी खेती पर आने वाली लागत और दीगर मुतालका पहलुओं को मलहूज़े खातिर रखते हुए गन्ना किसानों के लिए मुनाफा बख्श कीमतें बढ़ाने की मांग का जायजा लेगी। इसके अलावा ये कमेटी शकर की पैदावार की लागत, मार्केट की सूरत हाल और शकर मिलों के माली इस्तेहकाम के जिमन में शकर की कम अज कम कीमत फरोख्त पर नजरसानी के मुतालबे का भी जायजा लेगी। ये कमेटी किसानों को अदा की जाने वाली गन्ने की कीमत के बारे में तरीक़ाकार के माली असरात का तजिया करेगी और अगर कोई दीगर मुतालिका मामला भी जरूरी है तो उस पर भी गौर कर सकती है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज्म के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी खुसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि रेरा जैसे इदारों के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है, जो जायदाद और इमलाक के शोबे में शफाफियत लाने और सार्फिन के हकूक की समत काम कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पार्लियामेंट ने रियासतों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज RERA के कयाम के लिए राह हमवार करते हुए साल 2016 में रियल एस्टेट के जाब्ताबंदी और तरक्की से मुतालिक कानून को नाफिज किया। इस कानून के तहत डेवलपर्स के लिए इस बात को लाजमी बनाया गया कि वो इस कानून के तहत काबिल इतलाक दफात के मुताबिक इमलाक के इश्तेहारात देने या उन्हें फरोख्त करने से पहले रियल एस्टेट प्रोजेक्टों को रजिस्टर कराया जाए। RERA डेवलपर्स और घर खरीदने वाले अफराद के दरमियान तनाजात के तस्फीये के लिए इंजबाती तरीक़ाकार फराहम करती है ताकि रियल एस्टेट शोबे में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि RERA घर खरीदने वाले लोगों और डेवलपर्स के दरमियान एतमाद को मुस्तहकम बनाने में नुमाया रोल अदा करती है।
4: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को

0: पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
1: गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले अनिल तिवारी ने बताया कि RERA ने डेवलपर्स और घर खरीदने वाले लोगों के दरमियान शफाफियत को बेहतर बनाया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए शोएबा।
2: ज़राअत और किसानों की बहबूद का महकमा ज़राअत के शोबे में ख़वातीन की खिदमात के एतराफ़ में आज कौमी सतह पर महिला किसान दिवस की तकरीब का अहतमाम करेगा। इस प्रोग्राम का मौजू है तरक्की याफ्ता ज़राअत और विकसित भारत की तामीर में खातून किसानों का किरदार। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने कहा कि आज अक्वामे मुत्तहिदा के देही ख्वातीन का बैनुल अक्वामी दिन भी मनाया जा रहा है। वजारत ने इस बात पर जोर दिया है कि यह खातून किसानों का ताउन है जो भारत में ज़राअत को मजीद पैदावारी सलाहियत और खुद इन्हसारी बख्श रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा में पुन्नमी घाट के मुकाम पर कौमी सरस रोजी रोटी मेले का इफ्तिताह करेंगी। पहली बार कौमी सतह का यह मेला दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते से बाहर हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: कौमी सरस मेला 2026 अपनी मदद आप ग्रुपों से ताल्लुक रखने वाली देही खवातीन को मुल्क भर में अपनी मसनूआत की नुमाइश करने, वसी बाजार रसाई और अपने जरिए माश को मुस्तहकम बनाने का प्लेटफॉर्म फराहम करता है। इसका एहतमाम आंध्र प्रदेश हुकूमत के इश्तराक में देही तरक्की की मरकजी वजारत की तरफ से किया गया है। 650 से ज्यादा स्टॉल्स पर रिवायती हथकरघे की मसनूआत, नामियाती अशिया और घरेलू सामान की नुमाइश की गई है। कौमी सरस मेला देही खवातीन की पायदार आमदनी और माली एतबार से खुद इन्हसारी में मुआविन लखपति दीदी पहल को नुमाया करता है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर।
2: पंचमी के साथ बड़ी तकरीबात के आगाज के लिए मगरबी बंगाल में पूरी अकीदत, शान शौकत और इत्तेहाद के जज्बे के साथ देवी दुर्गा का खैर मकदम करने के लिए तैयारियां जारी हैं। कोलकाता और रियासत के दीगर हिस्सों में रंग बिरंगी रोशनी और देवी दुर्गा की शानदार मूर्तियों के साथ पंडालों को खूबसूरती से सजाया गया है। इस साल मगरबी बंगाल में तकरीबन 57,500 दुर्गा पूजा का अहतमाम किया जा रहा है। इनमें अकेले कोलकाता में ही 3,300 से ज्यादा पूजा पंडाल हैं। हजारों लोगों ने पहले ही पंडालों में आना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों के साथ लोगों की तादाद में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हरियाणा, पंजाब, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साहिली आंध्र प्रदेश और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक मशरकी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और मगरबी उत्तर प्रदेश में आज गरज चमक के साथ बारिश होने और ओले गिरने का इम्कान है। उधर जम्मू कश्मीर में कई मुकामात पर हल्की से लेकर औसत बारिश होने और बुलंद मुकामात पर हल्की बर्फबारी होने की पेशगोई की गई है। मर्दों के क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 मैच में भारत को 24 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-2 से बराबरी हासिल कर ली है। भारत को 248 रन का निशाना मिला था, लेकिन वो 19 ओवर्स और 3 गेंदों में 9 विकेट पर 223 रन ही बना सका। संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 43 रन स्कोर किए। अर्शदीप सिंह चोट लगने की वजह से मैदान से चले गए, उन्होंने 5 रन बनाए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज से बल्लेबाजी करने को कहा और उसने मुकर्रर 20 ओवर्स में 3 विकेट पर 247 रन बनाए। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने सिर्फ 50 गेंदों पर 102 रन स्कोर किए और आखिर तक आउट नहीं हुए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। 5 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच बेंगलुरु में इस महीने की 17 तारीख को खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
3: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। भारत और आसियान बहरी सलामती और दिफाई टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को आज के अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वैशाली कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार किया और मुतासरीन के अहले खाना के लिए इमदादी रकम का ऐलान किया। इस खबर को भी अखबारात ने नुमाया तौर पर पेश किया है। DRDO इख्तिराई कॉन्फ्रेंस में मकामी चिप और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर तबादले ख्याल करेगा। इस खबर को प्रताप के अलावा दीगर अखबारात ने भी नुमाया किया है। इसके अलावा आज के अखबारात की बैनुल अक्वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं। सना में सऊदी इत्तेहाद का बड़े हमले।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

तो दोस्तों जज्बे को बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ने की राह में चाहे जितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, आप कभी हार मत मानिए, क्योंकि अगर हमने हार मान ली तो हम दिल से टूट जाएंगे, और अगर दिल से टूट गए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बस आज छात्रों से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपनी मंजिल के पानी की राह में कभी डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जैसे सोशल मीडिया या फिर अदर चीज़ें जितनी भी हैं, उसमें अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आप अपनी राह भूल जाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप कभी भी रुकिए मत, कभी भी हार मत मानिए।

आप कभी हार मत मानिए, क्योंकि अगर हमने हार मान ली तो हम दिल से टूट जाएंगे, और अगर दिल से टूट गए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बस आज छात्रों से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपनी मंजिल के पाने की राह में कभी डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जैसे सोशल मीडिया या फिर अदर चीज़ें जितनी भी हैं, उसमें अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आप अपनी राह भूल जाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप कभी भी रुकिए मत, कभी भी हार मत मानिए।

0: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अब अपनी रेडियो दोस्त नेहा को दीजिए अनुमति। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी अभयकांत तिवारी जी की।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
4: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही, खेती का तरीका समझदार।
3: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
4: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में ये पहला गाना लिया है हमने कॉकटेल फिल्म से। आवाज़ है नीरज श्रीधर और कविता सेठ की। संगीत से सजाया है प्रीतम ने और बोल हैं इरशाद कामिल के।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
5: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही, खेती का तरीका समझदार।
4: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
5: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
4: किसान वही, खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
5: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा, बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
6: ओ, 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
4: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की

0: फसल भी उगाई जा सकती है।
1: बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
2: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही खेती का तरीका समझदार।
1: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
2: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निःशुल्क प्राप्त करें।
1: किसान वही खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
2: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
3: फिल्म संगीत में अगला गाना लिया है हमने शेरशाह फिल्म से। आवाजें हैं जुबीन नौटियाल और असीस कौर। शुरू से सजाया है तनिष्क बागची ने और रचना भी है तनिष्क बागची की ही।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए

फिल्म संगीत में अगला गाना लिया है हमने धुरंधर फिल्म से। गायक हैं अरिजीत सिंह, संगीत है शाश्वत सचदेव का, रचना है इरशाद कामिल की।

उजाले तेरे तू के साथ श्रोताओं। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और मिर्जापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिय का।
1: महोबा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में 58,234 वादों का निस्तारण किया गया। न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत की शुरुआत प्रभारी जनपद न्यायाधीश ध्रुव कुमार और पीठासीन अधिकारी जय सिंह पुंडीर ने की। इस मौके पर न्यायालय परिसर का निरीक्षण भी किया गया। लोक अदालत में सिविल के 6, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के 34, बैंक ऋण एवं पी लिटिग्रेशन स्तर के 212, लघु आपराधिक मामलों के 25 और अन्य प्रकार के 57,884 वादों का निस्तारण कराया गया। मोटर दुर्घटना वादों में प्रतिकर राशि के रूप में 2,81,55,000 रुपए और अर्थदंड के रूप में 2,78,550 रुपए और बैंकों के 1,39,70,700 रुपए वसूल की गई। जनपद महोबा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम वीवीपैट की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की चल रही प्रथम स्तरीय जाँच की प्रक्रिया को देखा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों में जाँच प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने मशीनों के रखरखाव सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को FLC से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई गयी। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में निर्वाचन की तैयारियों में कर्मचारियों की उपलब्धता, वाहनों, स्ट्रांग रूम, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के बारे में जानकारी हासिल की गयी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूरे प्रदेश के 75 जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, FLC सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बाद में सेक्टर स्ट्रेट पोलिंग बूथ को सत्यापन करने का काम करेंगे। महोबा DM प्रभास कुमार की अध्यक्षता में फसल क्षति की आकलन एवं प्रभावित किसानों को मुआवजा बीमा क्लेम का भुगतान कराए जाने के संबंध में जिले के सभी SDM कृषि विभाग के अधिकारियों तथा फसल बीमा से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में महोबा जिले में अतिवृष्टि के कारण हुई फसल क्षति के आकलन तथा क्षति से संबंधित उप जिलाधिकारी व कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध फसल क्षति की सूचनाओं की समीक्षा की गई। DM द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कोई भी अतिवृष्टि से प्रभावित किसान सहायता हेतु न पाए एवं नियमानुसार समयबद्ध ढंग से कार्यवाही पूर्ण कराते हुए सूचना उपलब्ध कराई जाए ताकि शासन को आवश्यक मांग भेजी जा सके। महोबा जिला महिला चिकित्सालय में मुख्य विकास अधिकारी बलराम कुमार तथा CMO डॉक्टर विनय कुमार ने संयुक्त रूप से महिला अस्पताल में फीता काटकर संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत मच्छर जनित बीमारियों के रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को बीमारियों से बचाव एवं उपचार के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर CDO बलराम कुमार ने कहा कि बारिश के मौसम में मच्छर जनित रोग बढ़ते हैं। अपने घरों के आसपास बरसात के पानी को एकत्र न होने दें। अपनी छतों पर रखे गमले व कूलर आदि का पानी बदलते रहें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। बुखार आने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाएं। झोला छाप के इलाज से बचें। CMO ने बताया कि 12 से 31 अक्टूबर

0: अक्टूबर तक दस्तक अभियान चलेगा, जिसके अंतर्गत आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बुखार समेत अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों का सर्वे कर रिपोर्ट संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक एवं उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगी। दस्तक अभियान की टीम लार्वा सर्वे, सोर्स रिडक्शन, दवा वितरण करेगी। साथ ही दस्तक टीम द्वारा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, कालाजार जैसे संचारी रोगों की रोकथाम एवं जागरूकता का कार्य करेंगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य, नगर विकास, पंचायती राज, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, सूचना सहित 11 विभागों की संयुक्त भागीदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी पहल आज देश के करोड़ों ग्रामीण महिलाओं के जीवन में नया उजाला भर रही है। पीएम उज्ज्वला योजना महोबा जिले की ग्रामीण महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। पारंपरिक चूल्हे के काले धुएं और दूरदराज के जंगलों से लकड़ियां ढोने की जानलेवा मेहनत से जूझने वाली महिलाओं को अब एलपीजी गैस कनेक्शन मिलने से भारी राहत मिली है। महोबा गांधीनगर निवासी राजकुमारी ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी करती है, लेकिन पहले उसे खाना बनाने के लिए ईंधन जुटाना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज वह गैस पर खाना आसानी से और जल्द बना लेती है, जिससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि वह बच्चों को समय से स्कूल भेज देती है और काम पर भी चली जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को पारंपरिक चूल्हे के खतरनाक धुएं से मुक्ति दिलाकर स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन उपलब्ध कराना है। यह योजना धरातल पर महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। महोबा जिले में उज्ज्वला योजना के फेज वन में 52,632 गैस कनेक्शन दिए गए, जबकि फेज टू में 20,246 गैस कनेक्शन और फेज थ्री में 2,027 कनेक्शन अब तक वितरित किए जा चुके हैं। महोबा की लाभार्थी रामदेवी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि पहले उन्हें पारंपरिक चूल्हे पर खाना बनाने के लिए दूर से लकड़ियां लानी पड़ती थीं, जो कि बेहद थका देने वाला काम था। चूल्हे के धुएं से आंखों में जलन और दर्द की समस्या आम थी, लेकिन गैस कनेक्शन मिलने के बाद अब जरूरत पड़ने पर झटपट खाना तैयार हो जाता है और धुएं के अभिशाप से पूरी तरह राहत मिल गई है।
1: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सभा का।
2: मिर्जापुर में ग्रामीण क्षेत्रों तक पेयजल पहुंचाने के लिए जला अर्पण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जनपद में कुल 1609 गांवों के सापेक्ष अब तक 1169 गांवों में जलार्पण का कार्य संपन्न हो चुका है। शेष 440 गांव में 31 अक्टूबर 2026 तक जला अर्पण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गत दिनों उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों ने विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति से संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया और प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान जगन्नाथपुर, महुआर, पचोखरा कला, पहाड़ी, सुगंधी, विजयपुरा समेत अन्य क्षेत्रों में जला अर्पण सम्पन्न हुआ। अधिकारियों के अनुसार शेष गाँव में निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा कराने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। देश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गत दिनों मिर्जापुर भ्रमण के दौरान मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन कर कहा कि वर्षा के बाद गड्ढा मुक्त के तहत प्रदेश के सभी सड़कों का प्राथमिकता पर मरम्मत किया जाएगा। उन्होंने मिर्जापुर में रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति कराने की हिदायत दिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर मिर्जापुर के विकास कार्यों, जन समस्याओं के निस्तारण की प्रगति, विद्युत आपूर्ति, सड़क स्वास्थ्य एवं कानून व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि
3: गड्ढा मुक्ति का एक सहज अभियान पूरे प्रदेश में शुरू करने को लेकर के बैठक हो चुकी है और बहुत तीव्र गति से अभियान चलेगा और हमारा प्रयास यही होगा कि चाहे ग्रामीण सड़कें हों और चाहे मुख्य मार्ग हों और चाहे स्टेट हाईवे हों, चाहे नेशनल हाईवे हों, चाहे एक्सप्रेसवे हों, सबको हम लोग दुरुस्त कर लेंगे।
2: प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में इस समय 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र मेला चल रहा है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद ले रहे हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 10 जोन व 21 सेक्टरों में विभाजित कर जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेला की कमान संभाले हुए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में 2,500 से भी अधिक पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। मां के गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी के साथ चरण स्पर्श व फोटोग्राफी पर रोक लगाया गया है। इसी के साथ ही जिले के अन्य मंदिरों पर भी नवरात्र मेले की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर मिर्जापुर में गत दिवस सेवा संकल्प अभियान के प्रकाश से जगमगाया पूरा नगर व ग्रामीण क्षेत्र। पूरे जनपद में 12.5 लाख दीपों से रोशन हुए घर, घाट और मंदिर। जन्म दिवस 17 सितंबर 2026 से प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पहले दिन जनपद में विविध कार्यक्रम का आयोजन कर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया। इस अवसर पर पूरे जनपद में एक साथ नगर से लेकर ग्रामीण अंचलों में 12,50,000 दीप प्रज्वलित किए गए। इस मौके पर फतह घाट पर गंगा की लहरों एवं नाव पर हजारों दीप जलाए गए। इस दृश्य को देखकर लोगों

0: उन्हें अत्यंत मनोहारी बताया। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने कहा कि यह केवल दीपोत्सव की नहीं बल्कि सेवा संकल्प का प्रकाश है, जो लाभार्थियों एवं सबके जीवन में खुशहाली का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग एवं मिर्जापुर जिला प्रशासन के सहयोग से गत दिनों स्थानीय सिटी क्लब में देर रात्रि तक भव्य कजली महोत्सव का आयोजन किया गया। परंपरागत कजली महोत्सव का उद्घाटन नोडल अधिकारी निदेशक उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान अतुल द्विवेदी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रभारी अधिकारी पर्यटन जूही प्रसाद एवं पद्म श्री लोक गायिका उर्मिला श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कजली की मधुर एवं स्वर लहरियों ने पूरे माहौल को कजलीमय बना दिया। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी निदेशक उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान अतुल द्विवेदी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृति विभाग द्वारा भारतीय संस्कृति परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। स्थानीय कलाकार कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सके इसके लिए मंडल व जनपद स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। जिला ग्रामोद्योग कार्यालय मिर्जापुर में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के तत्वाधान में गत दिनों मंडल स्तरीय माटी कला पुरस्कार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंडल के मिर्जापुर, भदोही व सोनभद्र जनपदों से कुल 15 प्रतिभागियों ने अपने उत्कृष्ट माटी कला प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इनमें से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 15,000, 12,000 एवं 10,000 की धनराशि फील्ड एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का।
2: श्रोताओं, अब सुनिए उर्दू कार्यक्रम जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेशे खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, मिसाइल मैन को कौन नहीं जानता। ये नाम हमारे मुल्क के दिफाई निज़ाम के साथ साथ सियासी निज़ाम या मुल्क के फर्द अव्वल में शामिल है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं साइंसदाह और सदर जमहूरिया जनाब APJ अब्दुल कलाम के बारे में। सामईन, APJ अब्दुल कलाम साहब की योम पैदाइश 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुई। उनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। उनकी इब्तदाई तालीम रामेश्वरम के एक स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोस्पेस में इंजीनियरिंग की। सामईन, तालीम मुकम्मल करने के बाद वो इसरो और DRDO जैसे साइंसी इदारे से भी वाबस्ता रहे। सामईन, APJ अब्दुल कलाम साहब ने बहुत से साइंसी काम किए, लेकिन दुनिया और भारत में उनकी शोहरत मिसाइल मैन के नाम से हुई, क्योंकि उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाकर हिंदुस्तानी दिफाई निज़ाम को और मजबूत किया। सामईन, वो 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें सदर जमहूरिया भी रहे। सामईन, उनका इंतकाल 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में एक लेक्चर के दौरान हुआ। सामईन, APJ अब्दुल कलाम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे और वो चाहते थे मुल्क का हर बच्चा स्कूल या कॉलेज जाए। और वैसे सामईन, हम आपको बता दें कि आज के प्रोग्राम के लिए हम भी एक कॉलेज गए। जी हाँ, हम अपने खसूसी प्रोग्राम कैंपस डायरी के लिए लखनऊ के करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स PG कॉलेज में गए, जहाँ की तालिबात ने अपने हुनर को हमारे साथ साझा किया। तो सामईन, आइए सुनते हैं उनका हुनर।
2: मैं बुशरा अकील और मेरा BA 3rd ईयर है इस बार, और मैं आपके सामने नात पेश करने जा रही हूँ।

ही देखें, जब मौत को देखा तो ज़िंदगी प्यारी नज़र है आती। निगाहों के तकाजे भी कितने अजीब हैं शाफ़ी, निगाहों के तकाजे भी कितने अजीब हैं शाफ़ी, जिसे जैसे देखो उसे निगाहें समझ नहीं है पाती, जिसे जैसे देखो उसे निगाहें समझ नहीं है पाती। अब इसके बाद मैं आपके सामने गज़ल पेश करने जा रही हूँ जो बशीर बद्र साहब का है।

0: कदा।
1: सामिन, ये था हमारा आज का खसूसी प्रोग्राम कैंपस डायरी, जिसमें करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज लखनऊ की जिन तालिबात ने शिरकत किया उनके इसमें ग्रामी हैं साफिया खान, साइबा खातून, निकहत बानो, बुशरा अकील और हया फातिमा साहिबा। सामिन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है, लेकिन रुकिए, आपके तासुरात भी हम जानना चाहते हैं। अपने तासुरात अगर मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com, और अगर आप अपने पैगाम हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेजना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7991778157। एक बार फिर सुने, 7991778157। सामईन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल

0: में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
1: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही खेती का तरीका समझदार।
0: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
1: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निःशुल्क प्राप्त करें।
0: किसान वही खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
1: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में।
1: मनीषा निरखी द्वारा गाए इस भजन पर तबले के साथ संगत कर रहे थे दीपक शाह, हारमोनियम पर थे महेश्वर दयाल। अब प्रस्तुत है इन्हीं की आवाज में ये गीत।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। इसके साथ ही भंडार सीमा 1000 क्विंटल निर्धारित की है। ये इस वर्ष नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने जमाखोरी को रोकने और त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चीनी भंडार मानदंडों में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत कोलकाता और इसके क्षेत्रों तथा असम के लिए भंडार सीमा 2000 क्विंटल निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने कहा कि औसत खुदरा चीनी के मूल्य में अगस्त में अपने उच्चतम स्तर से 15% तक कमी आई है। चीनी की कीमतों में कमी सरकार के चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसके सुचारू संचालन को सुगम बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों के प्रभाव का असर है। थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं से ये भी आग्रह किया गया है कि वे मिल से निकलने वाली चीनी की कीमतों में आई भारी गिरावट का लाभ तुरंत उपभोक्ताओं तक पहुंचाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित इस मेले में देश भर के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 1500 महिला उद्यमी और कारीगर हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया संदेश में श्री मोदी ने कामना की कि मातृत्व प्रेम और स्नेह की प्रतीक मां स्कंद माता का आशीर्वाद हर परिवार में प्रेम शांति और सद्भाव लेकर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया संदेश में श्री शाह ने कहा कि डॉ कलाम ने अपनी असाधारण वैज्ञानिक प्रतिभा का उपयोग भारत को एक प्रमुख सामरिक शक्ति बनाने के लिए किया और राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा। श्री शाह ने कहा कि भारत के मिसाइल मैन डॉ कलाम हमेशा एक आदर्श बने रहेंगे और युवा पीढ़ी को राष्ट्र की सेवा में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने 4th स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए 4th T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य का जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर तो 223 रन ही बना सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये पहला गाना लिया है हमने

0: आज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा।
1: दोस्तों, हम सभी किसी न किसी लक्ष्य को पाने या अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रोज़ न जाने कितने ही रास्तों से होकर गुजरते हैं, लेकिन क्या उन रास्तों पर चलते हुए लंबे रास्तों को देखकर मन में एक ख्याल आया है कि ये रास्ते बिल्कुल हमारी ज़िंदगी जैसे ही तो हैं, कभी एकदम सीधे और साफ तो कभी मोड़ों से भरे हुए, कभी इस पर धूप खिली होती है तो कभी घने पेड़ों का साया होता है। इसी बात पर हम अभी सॉन्ग सुन रहे थे। स्वदेश फिल्म का गायक थे उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश, म्यूजिक से सजाया था AR रहमान ने। आइए आपको फिल्म संगीत का अगला गाना सुनवाते हैं।

रास्तों में जैसे मोड़ आते हैं वैसे ही जिंदगी में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। ऐसे वक्त में हमारे अपने प्रियजन या कोई दोस्त जो पूरी शिद्दत से हमारे साथ खड़ा रहे और हमारे दुख में या संघर्षों में ढाल बनकर खड़ा हो जाए तो सफ़र आसान

जाता है। तो अगर आपके जीवन के रास्तों में भी कोई ऐसा है जो आपके साथ हर वक्त एक अटूट भरोसे के साथ खड़ा है, तो उसे थैंक यू बोलिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमें कभी रास्तों में अकेला नहीं छोड़ते।

श्रोताओं, कई बार रास्तों पर चलते चलते ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ ये रास्ते भी हमारे साथ चल रहे हैं, और उन रास्तों पर मिलने वाले मुसाफिर और कुछ हमसफ़र ऐसे मिल जाते हैं जो रास्तों को इतना खूबसूरत बना देते हैं कि हमारी मंजिल कब आ जाती है पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, रास्ते सिर्फ पत्थरों या मिट्टी के नहीं होते, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो दो दिलों के बीच से होकर गुजरते हैं। हाँ दोस्तों, ज़िंदगी की राहें कभी आसान नहीं होती, कभी परेशानियाँ भी आती हैं, और कभी कभी तो मंजिल धुंधली सी लगने

लगती है, और इस मुश्किल धुंधली सी लगने वाली जो मंजिल होती है, इस मुश्किल रास्तों को खूबसूरत और आसान बनाते हैं हमारे अपने। जब अपनों का साथ हो तो हर रास्ते के कांटे फूल बन जाते हैं और हर मुश्किल राह एक आसान सफ़र और हसीन सफ़र हो जाता है। तो अपनों का साथ बनाए रखिए और कठिन रास्तों पर अपनों के साथ चलते रहिए।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
0: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही खेती का तरीका समझदार।
3: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
0: तो एक फसल पर निर्भर न रहें। गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
3: किसान वही, खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
0: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

93.3 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। इसमें रश्मि भारतीय के स्वर में सुनिए ये गंगा गीत।

इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

नमस्कार श्रोताओं, स्वर और संगीत की इस महफिल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत को याद करने जा रहे हैं जिनके संगीत ने भारतीय सिनेमा को एक नया आयाम और एक नई पहचान दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमर संगीत

फिल्म चोरी चोरी का ये गीत आज भी कानों में रस घोल देता है। शंकर जयकिशन की इस जोड़ी में शंकर जी का अंदाज थोड़ा अलग था। वो धुनों में मिट्टी की महक और एक खास देसी अंदाज में पिरोया करते थे। उनकी बनाई धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का अनुशासन और लोक कलाओं की जीवंतता का अद्भुत संगम देखने को मिलता था।

श्रोताओं, शंकर जी ने केवल रोमांटिक और चंचल गीत ही नहीं दिए, बल्कि जब उन्होंने दर्द और तन्हाई को बयां किया तो वो भी गीत अमर हो गए। उनकी हर रचना में एक कहानी होती, एक जीवंतता होती है जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है।

श्रोताओं, भक्ति और विश्वास से सराबोर ये गीत शंकर जी की संगीत साधना की गहराई को बयां करता है। शंकर जी ने अपने जीवन काल में संगीत को ही अपनी पूजा बनाया और अपने सुरों के जरिए अमर हो गए।

श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज आप संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर जी पर आधारित कार्यक्रम सुन रहे हैं।

श्रोताओं, आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बनाई ये धुनें हर संगीत प्रेमी की धड़कन में जिंदा हैं।

आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है प्रोग्राम बोलते नगमे। वाचन स्वर है नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के और प्रस्तुति नेहा गुप्ता की।

0: बोलते नगमे।
1: नमस्कार दोस्तों, वंदना जी नमस्कार।
2: नमस्कार नेहा जी, और सभी सुनने वाले दोस्तों को भी नमस्कार हमारा।
1: अब आप कहेंगे कि अरे ये खिलखिलाहट किस लिए है?
2: ये तो अच्छी चीज लगी मुझे, और दिल के तार जैसे झंकृत हो जाते हैं, और जो आपकी हंसी

0: है वो दिल तक सुनाई पड़ी और दिल का जो मौसम है वो खुशनुमा हो गया।
1: दरअसल होता क्या है दोस्तों कि आप एक ऐसे जोन में चले जाते हैं या आपने कुछ देख लिया हो और एक गुदगुदाती हुई सी हंसी आपके चेहरे पर बिखर जाती है और वो ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है कि आप पूरे दिन खुश रहते हैं, ऐसा होता है?
0: बहुत बार ऐसा होता है नेहा जी, जब हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं या कभी हम सिनेमा के कुछ ऐसे सीन देख रहे होते हैं या फिर कोई गीत ऐसा होता है जो हंसा जाता है और होठों को मुस्कुराहटे बख्श देता है।
1: अच्छा, आप एक मिलियन डॉलर प्रश्न जानते हैं क्या है?
0: हाँ, मिलियन
1: प्रश्न
0: डॉलर है तो मैं भी जानना चाहूंगी है क्या वो चीज़।
1: वैसे आप भी जब ग्रेजुएशन में पढ़ती थी ये बात जरूर सुनी होंगी, लड़कियां कहती हैं ये लड़के बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होते, ये दिल फेक होते हैं, है ना?
0: जी
1: और लड़के लड़कियों को लेके क्या कहते हैं, भाई ये तो तिलस्म है, पहेली है, क्या है, कुछ जाना समझा नहीं जा
0: नेहा
1: सकता।
0: जी, इसमें BA MA की कोई बात ही नहीं है, ये शाश्वत सत्य जैसी बात है जो हर समय
1: जी
0: स्त्री पुरुष के साथ चलती आई है।
1: हाँ
0: अमूमन यही बात होती है, दोनों साथ साथ रहेंगे जरूर। टॉम जेरी वाला जो एक साथ होता है वो
1: हाँ
0: होता है एक तरह से, लेकिन फिर भी बात बात पे ये जरूर बात होती है कि उफ, ये लड़के ऐसे क्यों होते हैं या लड़के सोचते हैं लड़कियां हैं तो हम जैसे क्यों नहीं होती हैं।
1: और बॉलीवुड में
0: जी
1: बहुत सारे अपने जो गीतकार रहे उन्होंने इस नजरियों को देखा, और जो अर्ध नारीश्वर की कल्पना है कि
0: जी
1: एक ही शरीर में स्त्री भी है पुरुष भी है,
0: जी
1: तो उन्होंने दोनों रूपों को देखा, इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की है। तो मेरे जहन में एक गाना आप कहें तो हम बताएं।
0: तुरंत बताएं, क्योंकि अगर आज बोलते नगमे में कुछ इस तरह के चुलबुले गीत
1: जी
0: और इस तरह के प्रश्न वाले जो
1: जी
0: आप कह रही हैं ना, वो अगर ख्यालात और उजागर होंगे गीतों के जरिए तो मजा आ जाएगा आज।
1: ये जो लड़कियां हैं लड़कों की तरह क्यों नहीं होती, बस यही गाना है।
0: अरे क्या बात है, यानी कि सैफ और रानी कर
1: यस, पहले सुना जाए थोड़ा।
0: जी बिल्कुल।

0: जब ये फिल्म रिलीज होती है, बड़ी फ्रेश सी फिल्म हम तुम, यशराज बैनर के तले बनी प्यारी सी रानी, और वो चुलबुले और बेपरवाह सैफ। इसमें प्रसून जोशी जी ने लिखा कि भाई सोचती है ज्यादा, कम हो समझती है। तो आपके साथ भी ऐसा रहा है क्या?
1: सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, अमूमन सभी के साथ ये स्थितियाँ आती होंगी कि जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो इस तरह की जो नोक झोंक होती है, इसे मैं प्यार भरी नोक झोंक ही कहूँगी, और ये शैतानियाँ, ये शरारतें वो आँखों के ज़रिए होठों तक पहुँचती है, दिल में तो पहले से ही रहती है कि किस तरह से इतनी शांत शांत सी क्यों बैठी हैं, थोड़ा सा छेड़ा जाए। मुकाबलेबाजी जो होती है उभर कर सामने आती है। हमारे जितने भी लिसनर हैं वो भी कभी ना कभी इस सिचुएशन से ज़रूर दो चार होते रहे होंगे।
0: बहुत सुंदर शान ने गाया है ना इस गाने को, और अलका याग्निक जी ने। फिर जब वो कहते हैं ये जो लड़कियां हैं वो आती हैं जीवन में कि बहुत खुश रहेंगे हम दोनों, लेकिन होता क्या है कि सब अजीब हो जाता है, कई बार आपको बिल्कुल बदल देती हैं कि शर्ट ऐसे नहीं ऐसे पहननी है, वो तौलिया गीली हुई सी बेड पर नहीं रखना है। लेकिन ये तो अच्छी बात है लड़कियों की।
1: देखिए अच्छी बात तो होती ही है, अधिकतर यही कहा जाता है कि हमने इंसान बना दिया, सुधार दिया है, लेकिन सारी गड़बड़ी जो होती है वो इसी एक शब्द सुधारने में ही छुपी होती है, क्योंकि पुरुष कभी बात ये मान नहीं सकते हैं कि कोई स्त्री उन्हें सुधारे। खैर ये बहुत ही व्यक्तिगत बातें होती हैं और बहुत ही मज़ेदार स्नेहिल होती हैं, जो कि प्यार को बहुत बढ़ा रही होती हैं। उसमें कहते ना छौंक लगाने

0: वाली जो बात होती है रिश्तों में एक तड़के की तरह से काम करती है, ये जो छोटी छोटी तकरार होती है प्यार भरी। देखिए आगे बात क्या हो रही है,
1: सुनते हैं,
0: वो भी सुन ले।
2: प्यार उसे भी है मगर शुरुआत तुम्ही से चाहे, खुद में उलझी उलझी है पर बालों को सुलझाए। I mean, you're all the same, यार।

0: बहुत सुंदर ये सारी जो बातें हुई हैं, कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में रहता है कि भाई आप जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते और ऐसे जिंदगी तो चलती नहीं, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा तो है नहीं।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो हो सकता है कि दोस्त ये समझे कि नेहा जी लड़कियों का पक्ष ले रही है ये इसके चांसेस हैं। तो वंदना जी आपको ना न्यूट्रल होना है।
1: देखिए बात ये होती कि मेरे नजदीक अगर इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के सवाल जवाब होते हैं नेहा जी जैसे अभी भी गाने में सुन रहे हैं, तो उससे कितना गहरा प्यार छुपा हुआ है। है तो निगेटिव चीजें निकाल कर जो ला रही है बातें वो निगेटिव है, लेकिन वो जीवन को और पास कर देती है, दोनों के रिश्ते को और मजबूत बना देती है। क्योंकि इसी तरह से जीवन की सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ते रहते हैं, साल दर साल हम संबंधों को जीते रहते हैं, इसी तरह की नोक झोंक कहा सुनी होती रहती है, मीठी सी जो तकरार होती है उसका ये जो रूप होता है वो बहुत ही खूबसूरत है। और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, जैसे मैंने पहले ही कहा।
0: ये जो झगड़ा भी है ना जो आप कह रही हैं कि बहुत करीब ले आता है और आप स्पष्ट होते जाते हैं ये कहें। और जरा देखिए इस गाने में सुंदर ढंग से इसको दिखाया गया है कि सैफ को रानी पसंद नहीं आ रही होती लेकिन भागते भी उन्हीं के पीछे
1: पीछे पीछे,
0: और रानी को भी सैफ के अंदर हजार बुराइयां हैं लेकिन उन्हीं के साथ
1: देखिए कितनी खूबसूरत सी बातें और की जा रही है मस्ती भरी।

0: ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टरका,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है।
0: तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ,
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: नॉट लिसनिंग,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा,
0: नॉट लिसनिंग,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत ये तकरार थी मस्ती भरी। और दोस्तों को हम ये भी बताते चलें कि इस फिल्म में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार सैफ अली खान को मिला था, जिन्होंने अपनी अदाकारी से इस तरह से सिल्वर स्क्रीन को जगमगा दिया कि बस जिसने देखा वो उनका होकर रह गया।
3: बिल्कुल, तो अब इसी एक्टिंग को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, नाम अलग होगा लेकिन बात कहीं ना कहीं, पता नहीं क्यों आज मैं आपको और दोस्तों को कहीं और जाने नहीं देना चाहती कई बार क्या होता है कि इसी पहलू में रहते हैं और खोज करते हैं।
2: ऐसा लगता है कि सप्ताह भर आपकी जो मुलाकात कुछ ऐसे ही लोगों से हुई है जहाँ पर आपने इस तरह की बातें देखी हैं या सुनी हैं या गीत ऐसे सुने हैं कि जिसमें ये नोक झोंक वाला जो एक भाव है वो दिखाई पड़ रहा है, तो दूसरा गाना कौन सा है ये पहले बताएं।
3: दूसरा गाना जो है उसमें आमिर खान साहब हैं और प्रीति जिंटा हैं। फिल्म का नाम याद आया या मैं बता दूं?
2: नहीं, प्रीति जिंटा के साथ मैं याद कर रही हूँ कि कौन कौन सी फिल्में आमिर खान ने की
3: है।
2: भगवान,
3: एक बार तो जीत लेने दीजिए।
2: पूरी कोशिश करेगी मेरी कि जीतने ना दूं आपको।
3: देखिए, जब ये वाली भी फिल्म रिलीज होती है, बहुत सारे लोग ये उनके मन में प्रश्न है कि भाई जाने क्यों ये लोग प्यार करते हैं, इतनी सारी मुसीबतें हैं इसमें, दर्द है, सितम है। और जावेद अख्तर साहब को जरा देखें, जैसे जहन और दिल को जब वो देखते हैं तो पाते हैं कि अरे इसका तो जो माजरा है बिल्कुल अलग है और लोग इसको समझ नहीं पा रहे। आमिर खान पहले कितना ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं इस गाने में कि जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, इतनी सारे दिक्कतें हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और प्रीति जिंटा बिल्कुल शांत, बोलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता जैसा
2: तो ऐसा करते हैं कि पहले मुखड़ा सुन लेते हैं
3: जी,
2: इस नोक झोंक को एंजॉय करते हैं।
3: आप ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा रुक जाइए, है ना, मैं जानती हूँ, देखा आपने।
2: चलिए सुनते हैं।

0: जाने क्यों।
1: अच्छा देखिए, उस समय तो आपने मुझे रोक दिया
2: जी।
1: कई बार मैं चाहती हूँ कि मेरी रेलगाड़ी अभी ना रुके और आपके हाथ में होता है ब्रेक, लगा देती है ब्रेक।
2: क्योंकि नेहा जी क्या होता है, ब्रेक इसलिए लगाना पड़ता है जब बातें ज्यादा लंबी खींचने लगती हैं तो वो अपना असर खो देती हैं। अभी तो हम असर में हैं इस चंचलता से भरपूर जो गीत है
1: जी,
2: जिसमें एक दूसरे की भावनाएं इस तरह से प्रेषित हो रही हैं कि हमारा दिल भी कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहा है, कह कहे हमारे दिल के भीतर भी उठ रहे हैं और होठों तक आ रहे हैं, और जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं प्रोग्राम वो भी जरूर मुस्कुरा रहे होंगे इन गीतों को।

0: करते हुए
1: जी,
0: और इसीलिए मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की थी। लेकिन हाँ, बात क्या कहने जा रही थी वो बताइए।
1: उसको क्या कहते हैं दोस्तों, कई बार मुझे प्रोग्राम के दौरान ही इनसे पूछना पड़ता है।
0: लाजवाब हो ना लाजवाब हो गई
1: आपकी हुकूमत बुलंद रहे आमीन आमीन आमीन मैं ये कह रही थी वंदना जी और दोस्तों कि कई बार ये जो करली बाल होते हैं अच्छे लगते हैं ना,
0: बहुत अच्छे लगते हैं। और वो एक खूबसूरत चेहरा अगर साथ साथ चल रहा है, इस करली हाँ। बाल को जो संभाल कर रख रहा है, कैरी कर रहा है, प्रीति जिंटा जो बबली सी नजर आती हैं, बहुत क्यूट सी हैं, लेकिन कितनी समझदारी भरी वो बातें कर रही हैं।

0: क्यों?
1: ईश्वर को भी क्या कहें, दो ऐसे लोगों को मिलाते हैं, एक को यकीन ही नहीं है और एक को यकीन है, और जिसको यकीन है वो बेयकीनी वाले को यकीन दिलाना चाह रही है, नहीं?
0: बिल्कुल। और ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म ये बनी थी, फरहान अख्तर साहब ने ये फिल्म बनाई थी, और उन्होंने अपनी एक डायरी जो लिखी थी, जो यात्रा के दौरान बहुत सारे पड़ाव आए थे, उस दौरान बहुत सारी बातें उन्होंने नोट की थी, बहुत ही खूबसूरत कहानी का निर्माण किया जो हमें दिल चाहता की शक्ल में नजर आती है। और संगीतकार के रूप में पहले AR रहमान साहब को लिया जा रहा था
1: जी,
0: लेकिन उनके पास शायद डेट्स की कमी थी, फिर शंकर एहसान लॉय जी को इसका संगीत सौंपा गया और संगीत ने कमाल कर दिखाया।
1: बहुत हल्के हल्के वाद्य यंत्रों का प्रयोग है ना, उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी मतलब जादू बिखेरते हैं और लोगों के दिलों में ये गाना बस जाता है।

0: मुझे जावेद अख्तर साहब की ये बात बहुत अच्छी लगी है इस गाने की कि प्यार जो है जिंदगी को सजाता है और 100 रंग लेकर के आता है। जिंदगी अगर सजने लगती है तो खुशी होती है ना।
1: बात जिंदगी की आप कर रही हैं, बात सजने की कर रही हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में शामिल हो रही होती हैं जो सकारात्मक होती हैं, हमारे जीवन को कुछ खूबसूरत एहसास से भर रही होती हैं, इसलिए ये सजावट बहुत ही सुंदर नजर आती है।
0: अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ और दोस्तों से भी कि जो थर्ड गीत देखिए, आज मेरी पसंद के ये सारे गाने हैं, आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकती हैं।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं ले रही हूँ।
0: थर्ड वाला ना सरफरोश फिल्म जानती हैं?
1: अरे क्यों नहीं जानती, फिल्म देखी है। आमिर खान से चलकर आमिर खान तक पहुंच रही हैं आप।
0: तो तीसरा जो गाना है दोस्तों, आप सभी ने सुना जरूर होगा, देखा जरूर होगा, उसमें सोनाली बेंद्री
1: जी
0: बहुत प्यारी सी लग रही हैं, और इसकी लाइन सुने या सुना दें पहले?
1: चलिए इस गीत का मुखड़ा सुनवाते हैं, डोंट माइंड।
0: ये जो आप डोंट माइंड बोल देती हैं ना तपाक से।
1: अरे नेहा जी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रही हैं सोनाली बेंद्रे। सुनिए ना दोस्तों के साथ आप भी।
2: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
3: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
2: सुना।

अर्ज है, दवा भी काम ना आए, कोई दुआ न लगे। दवा भी काम ना आए, कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

0: जब हम सभी लोग इस गाने को देखते हैं तो भाता है ये गाना, और दिल के करीब शायद इसलिए भी है क्योंकि वो जो सच्चाई वाली बात है कि जब कोई किसी से लगाव रखता है तो सोचता है कि ज़रा लगाव की गहराई देखी जाए और चाहत के जो रंग हैं, क्योंकि वो रंग हमेशा और इतनी आसानी से नज़र नहीं आते हैं ना।
1: और इसमें जो संगीत है जतिन ललित साहब का, जी, वो भी बड़े ही खूबसूरती के साथ उन्होंने संगीतबद्ध किया है इसके गीतों को, जो कथानक को आगे बढ़ाते हुए से महसूस होते हैं। तो चलिए फिर हम भी इस गुनगुनाहट को
0: और महसूस करते
1: और
0: हैं।
1: महसूस करते हैं।
2: अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

0: अच्छा वंदना जी, कुछ गीतों की एक और ख़ास बात होती है इसमें, बीच बीच में आप देखिए तो मजाहिया अंदाज में आमिर खान साहब शेर कहते नजर आ रहे हैं, और वो शेर जो वो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं और इंटरेस्ट पैदा कर रहा है कि अरे ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार कुछ एक्सेप्टेंस वाला शेर होगा, लेकिन वो इंतजार
1: के विपरीत चीजें हो रही हैं नेहा जी। लेकिन जिस तरह की भाव भंगिमा है आमिर खान की, जब सोनाली बेंद्रे से थोड़ा सा दूर होते हैं वो, तो वो प्रेम में उनके पूरी तरह से डूबे हुए नजर आते हैं, और जैसे सोनाली बेंद्रे नजर आ रही होती हैं तो थोड़ा सा एकदम से अचकचा कर उठ जाते हैं, और फिर वही नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे वाली जो बात होती है,
0: जो ठहराव है रिजेक्शन का तो नहीं है, इंतजार का, वो इंतजार बहुत कुछ कहानी कहता है, है ना। वो कहानी अगर कोई समझ ले तो शायद जो प्रेम का आधार होता है, नींव होती है, वो बहुत मजबूत हो जाती है,
1: क्योंकि कुछ बनने की बात यहाँ पर हो रही है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एक तरह से हमारी रोजगार जो एक समस्या सबसे बड़ी होती है किसी भी युवा के लिए, तो उसके लिए बहुत ध्यान की जरूरत होती है, और प्यार कहीं ना कहीं उस ध्यान को भंग कर रहा होता है कभी कभी। तो ये वाली एक बात यहाँ आमिर खान के चेहरे पर नजर भी आ रही है,
2: और समीर साहब ने भी प्यार के इस रूप को दिल से महसूस किया और कागज पर उतार दिया।
3: जिसे देखो दिल की धुनी रमाता, अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: आज सवेरे मैंने इन कुछ गानों को देखा था।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: आज सवेरे मैंने इन कुछ गानों को देखा था, आपसे थोड़ा छुपाया लेकिन फिर अब छुपाती तो जाती कहाँ, प्रोग्राम बनता कैसे?
2: बिल्कुल, प्रोग्राम तो आपको मेरे साथ ही करना है नेहा जी।
1: अब दिन और रात को अलग तो नहीं किया जा सकता।
2: नहीं, बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो जो मेक मिलन होता है वो संध्या के रूप में निकल कर आता है। तो नेहा जी,
1: जी
2: ये सारी बातें, तकरार की, इकरार की, इनकार की, फिर प्यार की, ये सब जो फैलाई थी हमने गीतों के माध्यम से, उन सबको समेटने का आ गया है वक्त, यानी वक्त है दोस्तों से विदा लेने का। तो दोस्तों सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम बोलते नगमे और दीजिए हमें इजाजत।
1: नमस्कार।

AIR at 90. ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। इसमें संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान भी उपस्थित थे। डॉ जयशंकर ने बहुपक्षवाद के तत्काल सुधार के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बदली वैश्विक व्यवस्था की गति को समझना जरूरी है। डॉ जयशंकर ने श्री नहयान के साथ बैठक में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने जॉर्जिया के विदेश मंत्री माका बोतचोरी शिवली से भी मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बैंकॉक में ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉन हीली से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने चौथे भारत ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद, फिनटेक बैठकों और संबंधित IUKFP बैठकों के सफल समापन पर चर्चा की। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने साझा प्राथमिकताओं, रचनात्मक

0: और समावेशी G20 प्रक्रिया की दिशा में ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि भारत और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस साल पूरी होने की उम्मीद है। कल मुंबई में श्री सिद्धू ने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में हुई प्रगति द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और कनाडा के रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चर्चा के दौरान CEPA के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार पर बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 12.5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र ने न केवल अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भी किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
1: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन एंड ऑफ वार। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में यह माना जाता है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसी तर्क पर मैं कहता हूं, होप फॉर द पीस बट प्रिपेयर फॉर वॉर।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पूछा है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करेगा। इनमें हत्याओं की जांच और इंटरनेट सुविधा पर लगाई गई पाबंदियां शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में कल मानवाधिकार उच्चायुक्त के साथ संवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम होगा रात में 8:30 पर और गजलों पर आधारित कहकशा प्रोग्राम आप सुनेंगे रात में 9:30 पर। अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। प्रस्तुत है बांसुरी पर राग मधुवंती। कलाकार हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से बांसुरी पर राग मधुवंती सुन रहे थे। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अब आपने ट्यून कर लिया होगा आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, क्योंकि आ गया है आपका मनपसंद कार्यक्रम आपकी पसंद। लेकिन आज आपकी पसंद में आ गई है मेरी भी पसंद। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कार्यक्रम तो आपकी पसंद है, तो फिर ये मेरी पसंद कैसे? कारण ये है कि हमारे कुछ जो श्रोता हैं, उन्होंने कहा है कि मधु जी, आज हम आपकी पसंद का भी गीत सुनना चाहते हैं। तो मैं बड़ी असमंजस में पड़ गई, अपनी पसंद के गाने आपको कैसे सुनवाऊं। लेकिन श्रोताओं ने बहुत ज्यादा इसरार किया, नहीं भाई, एक गाना तो आपकी पसंद का भी होना चाहिए। एक गाना आज मैं आपको अपनी पसंद का सुनवाऊंगी, और वो गाना मुझे इसलिए पसंद है कि उसकी एक एक पंक्ति ऐसा लग रहा है जैसे सच्चाई हो। लग क्या रहा है ही सच्चाई वो।

एक एक शब्द जो लिखा गया है ना, वाकई दिल में उतर जाता है और सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना। तो ये गाना मैं आपको सुनवाऊंगी, सोनू निगम की आवाज़ में है और फिल्म का नाम है कल हो ना हो। तो पहले मैं आपको ये गीत सुनवा देती हूँ, उसके बाद मैं आऊँगी आपकी पसंद पर। तो चलिए पहले सुनते हैं ये गाना।

आने से पहले आपको सुनवाते हैं राहत इंदौरी जी का लिखा ये शेर। नफरत नहीं किसी से बस अब कोई अच्छा नहीं लगता। नफरत नहीं है किसी से बस अब कोई अच्छा नहीं लगता। ये झूठे चेहरों का मेला अब मुझे सच्चा नहीं लगता। बहुत करीब से देखा है मैंने रिश्तों को बदलते हुए। अब किसी का साथ उम्र भर का पक्का नहीं लगता। तो भाई ये तो दुनिया है, परिवर्तनशील है, कोई चीज़ हमेशा के लिए कभी नहीं रहती। जैसा कि आपने अभी जो गाना सुना था, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। तो हर घड़ी जिंदगी रूप बदलती है, साथ साथ लोग भी रूप बदल देते हैं। जी हाँ, खुशियों में रहते हैं आपके साथ और जहाँ भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है धीरे से निकल लेते हैं। तो भाई ये रूप तो आते रहते हैं दुनिया के, लेकिन हम चल दिए हैं अब दूसरे गीत की तरफ। और जो गीत आ रहा है, फिल्म का नाम है आशा, आवाज़ है लता मंगेशकर की, बहुचर्चित गीत है इस फिल्म का। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो भाई इस गीत की फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने की है, पहले उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। प्रयागराज से रोशनी, संदीप, मनदीप, रंजीत और पूजा। दादनपुर प्रयागराज से विकास, नीतीश, आर्या। हंडिया से प्रेमचंद, महेंद्रनाथ और रेखा। मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, नीलम प्रजापति, सिद्धार्थ प्रजापति और श्रीजी। हवेलिया झूसी से महेंद्रनाथ कुशवाहा और इनके बहुत सारे मित्र। सदर बाजार राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। और अब सुनते हैं आशा फिल्म का ये गीत।

दोस्तों एक छोटी सी कहानी है कि एक जुगनू के पीछे एक बाज पड़ गया। तो जुगनू ने पूछा, भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे खाकर तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बाज ने क्या जवाब दिया, बात तो सही है तुम्हारी, तुमको खाने से मेरा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन तेरी चमक मुझसे देखी नहीं जा रही। तो याद रखिए, कुछ लोग आपका बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन आपका अच्छा होना भी उन्हें हजम नहीं होता। वो नहीं चाहते कि आपकी अच्छाइयाँ समाज में सब लोग अप्रिशिएट करें, सब लोग उसको सराहें, इसलिए वो किसी न किसी बहाने से आपका नुकसान करना चाहते हैं, आपकी छवि को बिगाड़ना चाहते हैं, आपके लिए अनर्गल बातें कहना चाहते हैं। तो इसलिए करना चाहते हैं कि जो आपकी इमेज बनी है ना समाज में, वो थोड़ी धूमिल हो जाए, और जब वो धूमिल होगी तो उससे उनके मन को बड़ी शांति मिलेगी। भाई अब क्या बताया जाए, इस तरह के लोग भी हैं समाज में। चलिए चलते हैं अब हम अपने अगले गीत की तरफ, और ये जो गीत आ रहा है, फिल्म का नाम है 1-2 का 4, और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। इनके नाम है औरंगाबाद से अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश, जहा चौराहा प्रयागराज से मधु कनौजिया, गोविंद कनौजिया, हनी कनौजिया, गौरी कनौजिया, बाला कनौजिया और शिव शंकर कनौजिया, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू रज्जन, रजक संजीव गुप्ता, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, सोना मोना, हनी, सौम्या और उनके मम्मी पापा। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, अगला गीत जो मैं सुनवाने वाली हूँ आपको, वो किसी फिल्म का नहीं है, लेकिन इस गीत की फरमाइश हमारे कुछ श्रोताओं ने की है और उन्होंने ये भी लिखा है कि हम बहुत दिनों से इस गीत को सुनना चाह रहे थे, आप प्लीज़ हमें इस कार्यक्रम में ये गीत सुनवा दीजिए। अदनान सामी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गाना है और इस गीत की जो फरमाइश की है उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा। दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून। छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, मुरली वर्मा।

माँ और इनके परिवार के अन्य सदस्य। लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश। संभलपुर कांकेर से फागु राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। गुजरात से धीरज वी रवाड़ी। तो आइए सुनते हैं अदनान सामी की आवाज में ये गाना।

0: अभी आप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। एक बजने को है, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से लोगों का सफर आसान होगा।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा। कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। श्री शाह सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने संकल्प को पूरा किया और राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन लोगों के पुनरुद्धार में शामिल है।
3: नरेंद्र मोदी सरकार

0: वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
1: ये समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के जनसेवा के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया है कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से था, जो अब बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12.5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र ने न केवल अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भी किया है। नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने राज्यों को देश में डेटा सेंटरों के सतत विकास की योजना बनाने में मदद के लिए डेटा सेंटर इवेल्यूशन फ्रेमवर्क जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य देश के डेटा सेंटर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचे की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बैंकॉक में ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉन हेली से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने चौथे भारत ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद, फिनटेक बैठकों और संबंधित IUKFP बैठकों के सफल समापन पर चर्चा की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने बताया है कि भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2025 तक 9% की वृद्धि के साथ 2,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मुंबई में आयोजित CII बिग पिक्चर सम्मेलन में श्री कुमार ने बौद्धिक संपदा को मजबूत करने, सतत राजस्व सुनिश्चित करने, अनुशासित निवेश को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर दर्शकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री कुमार ने बताया कि वेब्स का अगला संस्करण अक्टूबर 2027 में मुंबई में आयोजित होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. We now go over live to listen to the Prime Minister's address.
3: उनकी मेहनत और पारंपरिक हुनर से जुड़ी पश्मीना की पहचान को और मजबूत किया जा रहा है। लद्दाख में अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फूलों की व्यावसायिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत हमारे देश की अनमोल धरोहर है। यहां के प्राचीन मठ, बौद्ध परंपराएं और यहां के उत्सव इन्हें संजोना और अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करना हमारा सामूहिक दायित्व है।
2: The newly inaugurated projects includes new passenger terminal building at Kushok Bakula Rinpoche Airport, Leh, built at a cost of 640 crore rupees. The modern terminal is spread over 23,800 square meters and is designed to handle 35 lakh passengers annually. The Prime Minister also

हो चुकी, मगर नक्सलवाद समाप्त होने से ये 5 दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा।

0: आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि सफाई सुथराई के कारकुनों को 16,000 रुपये का कम अज़ कम एजाज़ दिया जाएगा। उन्होंने पीए सिक्योरिटी इंश्योरेंस और तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जाएगी। सफाई कारकुन की मौत की सूरत में उनके खानदान को माली इमदाद दी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर किसी भी सफाई कारकुन के एजाजिया से गैरकानूनी कटौती की गई तो मुतल्लिका शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-आला ने कहा कि सफाई के कारकुनान अपनी खानदानी जिम्मेदारियों को निभाते हुए माशरे को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए अंथक मेहनत करते हैं। जब ज्यादातर लोग सुबह सोते हैं, सफाई कारकुनान गलियों और मोहल्लों की सफाई करते हैं। उनकी मेहनत से शहरों और मोहल्लों को साफ सुथरा और रहने के काबिल बनाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि अब काशी बदल रही है।
1: काशी आज अपनी एक नई आभा के साथ, अपनी एक नई काया के साथ, अपने एक नए कलेवर के साथ अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ रही है। ये सच है, सरकार निर्माण कार्य कर सकती है, लेकिन उस कार्य के संरक्षण की जिम्मेदारी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जनता जनार्दन की होती है, जागरूक समाज की होती है।
0: वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ अपने वाराणसी दौरे के दूसरे और आखिरी दिन जुमरात को पीलानी कटरा के सरवजा पैलेस मुनक्कदा एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। वाराणसी साउथ के एमएलए डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के 76 रोजा वार्ड के दौरे के इख्तिताम पर उन्होंने सफाई के कारकुनों को एजाज बख्शा और उनके ताउन की तारीफ की। इसके बाद वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ मिर्ज़ापुर मुनक्कदा असातज़ा कॉन्फ्रेंस में उस्ताद कानून कौंसिल इंतखाब में उम्मीदवार की हिमायत में जलसे आम से

0: किया। इससे पहले उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए और पूजा की। मंदिर में पूजा करने के बाद वजीर आला ने गंगा घाटों पर जारी तामीराती काम का मुआयना किया। आज वजीर आला प्रयागराज में पद्मलोक अपार्टमेंट्स का भूमि पूजन भी करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी का दौरा किया। वहां उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ के 7 साल तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने भारत सेवाश्रम संघ के काबिल जिक्र कामों पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला ने वाराणसी बलिया ब्लॉक टीचर हलके से रियासती कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में कल वाराणसी मुनक्दा टीचर ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वाराणसी के मुजवजा दौरे की तैयारियों का जायजा लिया और मुमकिन प्रोग्राम के मुकाम के साइट पर मुआयना किया। अपने रियासती दौरे के दूसरे दिन ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन ने कल प्रयागराज में अक्षयवट और संगम का दौरा किया। उन्होंने प्रयागराज में अंधावा सेंटर का भी मुआयना किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत में 25 साल मुकम्मल कर लिए। उनके सफर का बुनियादी मंत्र अवामी खिदमत के जरिए कौम की खिदमत रहा है। खिदमत और अच्छी हुक्मरानी के विजन के साथ हुकूमत 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने के सिमत में मुसलसल काम कर रही है। जाम तरक्की और समाजी बाख्तियार बनाने के जरिए लोगों की जिंदगी को बदलने की कोशिशें की जा रही है। इस खसूसी सीरीज में हम इस बात का जायजा लेंगे कि वजीर आजम के म्यूजियम ने इस विजन को कैसे महसूस किया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया।
2: देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
1: नई दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सोच, नेतृत्व और योगदान को सामने लाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मरकजी वजीर दिफा और लखनऊ के रुकन पार्लियामेंट राजनाथ सिंह आज लखनऊ पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वो फैजुल्लागंज इलाके में सैलाब से मुतासर खानदानों में इमदादी सामान तकसीम करेंगे। वो मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से मुलाकातें भी करेंगे और तयशुदा प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकई खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब बहनें सुनेंगी कार्यक्रम पनघट।

0: सरस्वती, अरे ओ सरस्वती, हम कहे राम राम।
1: गुंजा अपन गढ़ सुने बैठी सब बहनी हरन के भी सरस्वती और गुंजा के
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम। गुंजा देखा नवरात्र चलत बाटे है
0: हाँ बहनी।
1: ना, और आज नवरात्र के पांचवा दिन बाटे और स्कंद माता के पूजा घरे घरे होत
0: होता
1: है।
0: है।
1: स्कंद माता यानी कार्तिकेय जी की माता, हम सब की माता, जो उनकी ममत्व की देवी हैं, करुणा और वात्सल्य की देवी हैं,
0: बिल्कुल।
1: है ना। तो आज जगह जगह उनकर पूजन होता। हम सब जानत ही कि माता के जौन हाँ प्रेम से भक्ति से पुकार ले बस उहे बहुत है ना।
0: बिल्कुल
1: तो
0: देख
1: बतावा तू भी पूजन पाठ करत हो ना।
0: हाँ वही नहीं देखा, 9 दिन माता के नवरात्रि होते, जागरण है, मैया के भजन है, लोकगीत है, कुल पूरा संसार ये में अभी खोवा बाटे। ऐसा लगता है कि सच में धरती कहीं ना कहीं स्वर्ग बन गई है।

0: इतनी समय जब माता विराजमान है जगह जगह पर, तो
1: बिल्कुल
0: मुला दिखा मैया के इतने गुणगान करे जितना उतना ही कम है।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही कह रहे
0: जैसे
1: हो।
0: तू कहो कि मातृत्व की देवी है, सच में एक माँ जैसे अपने घरे के होती, अपने गदेला के कितना लालन पालन से अपने जो है शिक्षा से उनका कैसे जीवन के निखारा दिन, वैसे न हमार मैया है जो 9 रूपों में अपने बच्चन का देखभाल करा थे और उनके अच्छा और बुरा के ज्ञान भी करावा थी मैया।
1: बिल्कुल सही कह थू। तो देखा, आज माता स्कंद माता के रूप में
0: हाँ
1: उपस्थित भई हम सभी के सामने, और माता के केला के भोग बहुत पसंद आते।
0: पसंद बाटे,
1: और एक बात बताई
0: और मैया
1: जाना
0: के
1: के,
0: पीला वस्त्र भी बहुत पसंद बाटे।
1: तो हम सब नाना तरह के विधान से माता का पूजन करत ही। और हमेशा की तरह एक बार फिर से कहबे कि देखा, हम सबे माता के ही और माता हमार
0: हमार
1: ही।
0: है।
1: कुछ हो ना हो, मन में प्रेम होए तो
0: बिल्कुल
1: माता जरूर हमें
0: जरूर
1: राख
0: आवत,
1: उठा के
0: काहे कि
1: देखी।
0: मैं नहीं देखा ढेर सारा चढ़ावे चढ़ावे से कौनो भी चीजन के हम अपनाए नहीं सकित। मुला जब अगर हमारे अंदर प्रेम की भावना हुई, सद्भावना हुई, सच्चा हृदय हुई और सच्चे मन से पुकारब तो हर चीज मिल सकत है।
1: बिल्कुल सही कहा थू। तो इतनी बढ़िया हम सबे नवरात्र के बारे में बातचीत करे गुंजा,
0: हाँ
1: तो आज हम तो से ई बताइब कि आज है 15 अक्टूबर के अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस।
0: दिवस
1: प्रत्येक वर्ष आज 15 अक्टूबर के हम सबे अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस
0: मनावा जात।
1: मनावत ही। तो कुछ बतावा इकरे बारे में।
0: देखा आज जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान है, कृषि विकास में है, खाद्य सुरक्षा में है और उनका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। लैंगिक समता समानता के भी बढ़ावा दिन जाता है। काहे कि पहले देखा भैया आरन खेती करत रहे, बहनी आरन घरन तक सीमित रहे, मुला देखा आज हमार बहनी हरे भी खेती खलियाने तक के पूरा बाग बगीचा सब कुछ संभाला थे, यहाँ तक कि बोआई निर्गुड़ाई सब कुछ करा थे गा बहनी
1: यानी
0: हरे।
1: कि गुंजा घर में लड़कन बच्चन के देखे से खाना बनाए से लेकर के वो खेती में भी अपन योगदान देते हैं, घरे
0: बिल्कुल
1: बाहरे सब कुछ संभारत हैं। यानी कि उनकर श्रम के नजरअंदाज जोन हम सभी करती, ई हम सभी के नाई करे के चाहिए।
0: बिल्कुल
1: कहीं ना कहीं ई जोन दिवस बाटे अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस,
0: हाँ
1: यही ओर संकेत करते कि उनके मेहनत के,
0: हाँ
1: उनके योगदान और श्रम के पहचान मिले।
0: बिल्कुल। और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इनकर स्थापना की गई रही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं मूला, जो जिनकर हमेशा भूमि ऋण और संसाधनों तक समान पहुँचावे नहीं समान मिला तो है, यह दिवस उनके अधिकार और सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता के भी बढ़ावा देवे नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा तू। काहे की देखा, समाज और देश के प्रगति में विकास में उनकर बहुत विशिष्ट योगदान
0: बिल्कुल
1: हवे, है ना। वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में,
0: हाँ
1: कृषि के क्षेत्र में,
0: हाँ
1: हस्तशिल्प में, लघु उद्योग में, हर जगह अपन उपस्थिति दर्ज कराई चुकी
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: महिलाओं के जो कहते नहीं कि स्तर दिन पर दिन बढ़ गया है बहनी
1: बिल्कुल सही कहा तू।
0: और
1: और देखा, गांव में तो गुंजा बहनी स्तर बढ़ावे बदे समार सरकार भी बहुत प्रयास
0: बिल्कुल
1: करत है।
0: उनका
1: और
0: प्रगति के बदले हर प्रयास होता है।
1: बिल्कुल, और ऐसन जन हम सभी दिवस मनावत ही ना, ये
0: हाँ
1: सब उनके मनोबल के बढ़ावत है,
0: बिल्कुल
1: उनके प्रति जागरूकता उत्पन्न करत है कि
0: हाँ
1: देखा
0: बहनी
1: उनके योगदान के हम सभी समझी कि उनका कितना योगदान है। वो आर्थिक रूप से अपने परिवार के भी सबल करती और समाज के भी सबल
0: बनावा थे
1: करती,
0: बिल्कुल।
1: है ना।
0: महिला दिवस केवल महिलाओं के प्रशंसा करे बदे नहीं होत, मुला उनका साहस त्याग और हर क्षेत्र में उनकर बराबरी के स्वीकार करे का दिन भी आए। महिलाओं के देवी कहे से पहले उनकर एक इंसान समझे बहुत ही जरूरी बा। देखा कहती नहीं कोने कोने घरे में महिलाओं के सम्मान दिया जाते है, कोने कोने घरे में उनके जो भी जैसे उनके कोनो भी पीड़ा है या कोनो उनके समस्या है या उनके कोनो चीजें की कमी है
1: जैसे कि
0: या
1: शारीरिक पीड़ा या मानसिक पीड़ा, कोई भी तकलीफ हो जो वो सोचत
0: हाँ
1: थी।
0: तो उनका नजरअंदाज कर दिया था कि बहनी यार इन काम तो कराती हैं तबो कहा दिया कि बीमार है, बोला
1: हाँ,
0: उनके घर एक काम होता है।
1: लेकिन ये नहीं सोचते कि
0: हाँ
1: देखा वो कौने परिस्थिति में काम करत
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और साथ ही साथ अगर हम उनके मनोविचारों के उनके जो उन्हें फैसला है अगर हम अपने परिवार में सलाह लेते ही तो हम सब के कुल बहुत ही फायदा होते, एकरे बदे हमार महिला के बहुत सम्मान देन चाहिए।
1: और देखा गांव में अशिक्षा गरीबी है ना, अंधविश्वास बहुत ही ज्यादा व्याप्त रहा।

0: है, लेकिन फिर भी अब सरकार के इतने प्रयास के वजह से और लोगों के बीच में जागरूकता बढ़े के वजह से काफी बदलाव आवा है, लेकिन अभी भी बदलाव का जरूरत हवे। तो देखा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पे हम तो यही कहे कि सब महिला, हरे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, सबके पीड़ा के समझे के चाहिए
1: बिल्कुल।
0: और उनके सम्मान देवे के चाहिए। तो चला गुंजा, अब नवरात्र चलत है और देवी गीत न होए है ना, तो
1: हाँ
0: चला सावित्री श्रीवास्तव बहनी से तो का एक ठे बढ़िया सा देवी गीत सुनाई दी, चला सुन लीन जाए।
1: बहनी हरे भी सुने।

0: देखा कितनी बढ़िया मैया के गौनेही रही, और ऐसा भजन जब हो थे ना तो मन वैसे भी मग्धमुग्ध हो जाते मैया
1: बिल्कुल
0: के भजन
1: बिल्कुल
0: से।
1: बिल्कुल सही कहा। तो और मैया के भजन बिना तो देखा एकदम अधूरा अधूरा लगी नवरात्र, है ना। तो गुंजा देखा,
0: हाँ
1: हम सब बात करत रही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की। तो ऐसे में हम सोचे थी तो कि एक ठे परिचर्चा सुनाए दी, खेती में ग्रामीण बहनों का सहयोग। अब परिचर्चा में प्रतिभागी हैं मंजू देवी, मंजू
0: हाँ
1: यादव, निर्मला देवी और नेहा गुप्ता जी। तो चला सुन लीन जाए परिचर्चा।
2: बहनों, खेती का काम इतना आसान ना ही बा। खेती का काम करे बदे बहुत मेहनत लागत है। कोई कहत है कि बस खाली आदमी लोग मेहनत करत हैं, लेकिन आज स्टूडियो में मंजू यादव जी हैं, निर्मला देवी जी हैं, मंजू देवी जी हैं। इन लोगन के पास खेत है। ये लोग कहत हैं कि भैया खेत जोन है हमहू काम करत है, तब जा करके दूध दही जो शहर में पहुंचत है, जो हम बथुआ खात हैं जाड़े में, गर्मी में भिंडी सिंडी सब खात हैं। तो ये मेहनत आदमी औरत दोनों मेहनत करत हैं, तब जाके खाए के मिलत है। तो मंजू देवी जी, मंजू यादव जी, निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी स्टूडियो में।
3: धन्यवाद
4: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
2: तो निर्मला जी, ई जो लोग समझत हैं कि सब सिर्फ खेती का काम आदमिन क्या है, ई का बात सच है?
4: नहीं देखा बहनी, खेती तो आदमी ना, जब तक हमार बहनी हरे अपन भागीदारी न करहिन, हमें सहयोग न देहिन, भैया हरे तो कतौ बहरो चला गए, कौनो कार्य में चला गए, कमाऊ चला गए। बहने अपन तो हमार जो उन्हें घर बहरे से हार सारा चीज रसोई से लेके खेती तक निभावत रहते, तो बहुत जरूरी बा कि लेकिन सहयोग भैया हरंग रहा था। हमार बहने तो ऐसा है कि देखा ये है कि अपने जो आबादी बा ओकर हिस्सा ही नहीं बल्कि शब्द का आधा अक्षर के बराबर हैं बहने हरे खेती में।
2: तो निर्मला जी, आप खेत का काम करती उड़ती हैं?
4: हाँ बहनी, खेत का काम हम देखा करी था बहनी।
2: कहाँ
4: यहाँ
2: कहाँ
4: बाग
2: करती हैं?
4: देखा बहनी, पहले गेहूं बोए है।
2: अच्छा
4: हाँ गेहूं बोए तो गेहूं ऐसा नहीं बोए है, पहले गेहूं की जोताई करे है, ओमे गोबर खाद डाल के जोताई दे है। जोताई के बाद पानी लगा के भर दिया, खेत पक गया, तो वो हमें हम तब बोवाई करा। बोवाई कैसे करा कि भैया हर लेके गए बोवाई खेत में जोताई, तो पाछे से ओका हम गेहूं ले के वो हमें बोवाई करते है, साथे साथे बोवत रहे भैया के गेहूं में, तो गेहूं बहुत अच्छा उपजत है और ओकर पैदावार बढ़िया होता है। अरे बाद भाई देखा वही गेहूं जब जाम आवत है तो ओकरे समय के अनुसार ओका सिंचाई करा जाता है। जब ओका सींचे के बाद बहने ओका हमेशा तो भैया तक निकल गए, तो ओका हम लोग बहनी हरे देखते हैं ओमे जोन खर पतवार आई हवा ओका बड़े सहेजा जाता है कि कल दवाई ले आए। वो खेती में बथुई है, तरह तरह के मकोई घास घोरजई, तो हमें कीटनाशक जो दवा छिड़का जाता है तब वो घास जब खत्म होता हमार गेहूं बढ़िया तब उपजत है।
2: अच्छा जानत हैं श्रोतागण, ई बात निर्मला जी जैसे जाड़ा में भी खेती करत हैं और गर्मी में भी करत हैं। अच्छा मंजू जी, मंजू यादव जी हैं, ई बताइए आप कि जैसे आदमी जाड़ा में तो सोचा था कि भैया

0: धूप निकलत है, खेत का काम थोड़ा आसान लागत है, लेकिन गर्मी में तो धूप एकदम सर माथे पे रहत है। तो फिर का उस समय आप जावत हैं खेत में काम करे?
1: हाँ, जाए पड़ा था बहनी,
0: अच्छा,
1: अगर
0: तो
1: ना
0: का
1: जा
0: करत हैं
1: तो
0: तब?
1: खेत में जब जाए पड़ा था तो हम लोग जैसे गेहूं आ या धान या कुछ भी बोए है खेते में, तो वहां जाए को कोई निरावे पड़ी आदमी औरतन के लिए आगे जाबे तो ओके निर्वही करो भाई अच्छे से, चाहे जितना घाम पड़ी हमारे ऊपर, लेकिन हम लोग को करना है
0: अच्छा,
1: ओका।
0: तो आप बर्दाश्त कर पावत
1: अब
0: हैं?
1: अपना किसानी काम है तो बर्दाश्त करे के पड़बे करी बहनी।
0: अच्छा, तो आजकल तो नाजुक जो लड़कीन है वो कहते हैं भैया हमसे तो ना ही होई, तो फिर आपसे हो जाता है?
1: हाँ बिल्कुल हो जाई, काहे ना हो जाई, ये
0: अच्छा
1: अपन काम है ना बहनी, तो करे के पड़बे करी ना।
0: हाँ, तो आजकल कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया धूप में जाए से चेहरा खराब हो जाता है, तो एक ही चिंता आप दोनों का ना ही
1: ना ही
0: है?
1: हमका बिल्कुल ना ही बाटे।
0: तभी इतना सुंदर दिखत हैं आप
1: हाँ
0: मुस्कात हैं। अच्छा मंजू देवी जी, आप कहाँ से आई हैं भाई, बताइए हमारे सुनने वाले श्रोता लोगों को, बहनों लोगों।
2: जी बहनी, हम करछना से आई है।
0: तो मंजू देवी जी ये बताइए कि करछना में आपका खेत खलिहान है कि नहीं?
2: जी बहनी, खेत है हम लोग उनके पास।
0: है, तो खेत में सिर्फ भैया जाते हैं कि आप हूँ जाते हैं?
2: नहीं, भैया लोग भी करत हैं और हम लोग भी करत हैं।
0: अच्छा, का करत हैं आप?
2: अब हम लोग इस समय जैसे हम लोग के खेत में गेहूं बोआ है और साग सब्जी भी उगा लेती।
0: तो उमन पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं आप
2: जी जी बहन।
0: उगावे से लेकर काटे?
2: हाँ, अब जैसे हम लोग सब्जी का खेती है तो अब भैया लोग तो अपन दिन भर कुछ अपना दूसरे काम में व्यस्त रहती, तो हम लोग सब्जी है तो का बोआई बोई गई है अगर तो का निराई करे के है, कोड़ाई करे के है, उसमें खाद उद रखना है जैसे देसी खाद रखते हैं सब्जी उब्जी में, तो ये सब काम करती।
0: अच्छा, तो ई निर्मला जी, जैसे कई कई बार क्या होता है कि ई देखा गवा है कि भाई थोड़ा सा काम करके महिला लोग थक जाती, तो आप कहत रहे कि भाई गैया भी है भैंसिया भी है, सब्जी उगावत हैं, कभो धान उगावत हैं, कभो गेहूं मौसम अनुसार, तो आप थकत नहीं है?
3: देखा बहनी, थकब कैसे,
0: अरे
3: वो तो
0: हाँ।
3: हमार धरोहर है, हमारे पुरजीवन का खेती। हाँ, ओमे चाहे जितना खोदब खनब तब तो उसे हम फायदा ले। खेते में देखा जैसे यहाँ समय गेहूं कलाओ बहनी, सब्जी बोए है हम। सब्जी का बोए है, जैसे देखा पालक है, चुकंदर, ओमे सोया मेथी, हरी सब्जी पूरा खा के बोए है। तो ओका जब निकाल लिया आई था ना, तो कुछ देखा निकाल के खुरपी से काट के लैया, ओका धोई कर रखा। रखे के बाद अगर अधिक रहा था ना, तो कुछ अगल बगल वाले से 2 पैसा मिल जाता है, तो उसमें थकाई कहाँ लगे हम लोगन के।
0: अच्छा, तो निर्मला
3: हाँ
0: जी आप
3: हाँ
0: कमावत भी
3: हाँ
0: हो।
3: खेती से फायदा ऐसे ही ले लेते बहनी। और देखा बहनी, खेतिया में जोन है ना कि जितना तू करब उतने पैसा मिलता, उतने खूब जीव बढ़ा जाता, ना धूप लागे ना तो हमें प्यास लागे।
0: आहा, मंजू जी आप अहू कमा लेते हैं कि कुछ खरीदे का पड़त
1: नहीं
0: है?
1: नहीं हम सब खेतों में कमाई ली थी।
0: सच में
1: हाँ सच में बहनी,
0: फायदा है?
1: बहुत फायदा है, अगर फायदा ना हो तो काहे घम लागे, जब फायदा रही तो घाम छा तो बर्दाश्त करवे के पड़ी ना।
0: अच्छा, अरे मंजू देवी जी ये बताइए आप कि जो सब्जी आप उगावत हैं तो बस घरे भर खातिर हो जात है कि नहीं, कि खरीदे का पड़त है
2: नहीं
0: आपका?
2: नहीं घर भर के अच्छा से हो जाता है, उनमें से 4 पैसा के हम लोग बेचो ले थे बाजार में, ऐसे
0: अरे
2: कुछ घर के खर्चा और नून तेल मसाला के लिए हो जाते हैं।
0: अरे बहुत बढ़िया। अब आप लोगन से बात करत करत हमका तो आनंद आवे लागल है। ठीक है, तो हम चाहित है कि तीनों लोग मिलके अगर कुछ गवनही थोड़ा बहुत सुनाए दें, जैसे खेती करत हो आप लोग तो कुछ ना कुछ तो गुनगुनावत हो ना,
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो
1: कहना ही
0: थोड़ा
1: हाँ।
0: गुनगुना दें भाई।
3: सुन बहनी, सोहर

0: बढ़िया। निर्मला जी, मंजू यादव जी, मंजू देवी जी, आप लोग खेती का भी काम करते हैं, गाना भी गा लेते हैं भाई लोग गीत। हाँ
1: बहनी, देखा हम लोग जब काम में लगा रहे थे खेते में ना, गुनगुनाते तो ज्यादा काम हो जाता। हम लोग खेती के चाहे कटाई हो तो और मजा देता है।
2: अच्छा,
1: वही बात लगावत रहता,
2: समय नहीं पता चलत,
0: समय नहीं पता चलता। अच्छा, ये अब बताएं एक एक करके तीनों लोग कि भाई खेती का काम कर लेते हैं आप लोग, गनो गाय लेते हैं, लेकिन पेट तो भरे का खातिन बनाए का पड़ी। तो मंजू यादव जी, आप खाना बना भी बनावत हैं कि घर के बाकी लोग बनावत हैं?
3: खेत से जब काम करके जाई थी ना बहनी, तब तो घर के खाना बनाई थी तो खावल जाता, उसके बाद फिर आराम करल जाता।
0: निर्मला जी, आप कुछ बनावत हैं?
1: हमारे पतो बनावत हैं बिट्टी, देखा जोन बहनी पशु रखे है ओका बारे हर चारा हम ले आई काट के खेते से, काट दे थे तब बहू ओका मिलाई के डालत थी। अब करे बाद देखा जितना अच्छा हर खेते से ले आओ हरियर चारा अपने पशु गाय के खवाओ भैंसी के, उतना अच्छा हमका दूध निकले। दूध से फायदा ही है, अगर ज्यादा दूध होगा तो ओका डेयरी में देवाई गया, बहुत दू पैसा मिल रही लाग बहनी। ओकरे बाजू जो दही मिल जाता है, मक्खन मिल जाता है, माठा मिल जाता है, उसे खाए से लड़कियन का स्वाद बढ़ा था, अपन स्वाद बढ़ा था, शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहा था। देखे माठा मजा कब देता है बहनी, जब थोड़ा से ओका हाँ लौकी कद्दी कसे धैल गाजर धैल ओमे लहसुन मरचा जीरा तड़का दे दे, वो माठा डाल दो, करे बाद जो कस कद्दू कस करे रहे काला नमक जीरा डाल दे तो क्या हल जा आप खाबे में रहा था पहले बहुत स्वाद क्या बगैर मन क्यों का खा लिया।
0: जॉन, ये प्रोग्राम सुनत है हमारे श्रोतागण, आपकी बतिया सुनकर मतलब उनके मन कर जाए कि माठा खाए ले या माठा में लौकी डाल ले। हाँ। लौकी के साथ साथ ये जो आप बोले हैं कि छौंका तनी से लगाए दे। हाँ। जी तरो ताजा हो जाए। अच्छा मंजू देवी जी, आप लागत तो बहुत नीक है, सुंदर लागत है, मुस्का भी रही हैं, लेकिन ये बताएं कि खेती के काम के साथ साथ हम सुना है कि आप पढ़ाऊ करती हैं और फिर का खाना भी बना लेती हैं?
2: हाँ बहनी देखा, खाना पीना तो बनाएन पड़े, ये तो बहुत ही जरूरी काम है हम बहनी हरन के, कि कितना काम कह के ही लेकिन सुबह शाम खाना के तो काम करन पड़े, खाना बनाएन पड़े, अपन लड़कन का देलन है उस सबके खवाए पियाए पड़े, लड़का का देला सब स्कूल जात हैं तो उनका टाइम से भोजन बनाई के दे पड़े।
0: तो ये बात ना ही लागत है कि आप लोग दुगना काम करते हैं आदमी लोगों की अपेक्षा, कब हुई लागत है मुझे यादव जी?
3: हाँ बिल्कुल लागत है बहनी।
0: तो फिर का करत है?
3: नहीं दुगना काम करत है बतावा, अब बतावा खेते काम हम लोग कई के आवर वाली। हाँ। फिर ओकरे बाद घरे खाना बनावल। हाँ। सब कम वही करे पड़ा था, आदमी का है वो तो बस नौकरी कई के यही घर पे तो वो और चार बात हम लोग के सुनाई दी ही। कहीं तुम लोग घर में बैठी तो रहा थो।
0: अच्छा,
3: उनके नजर में तो बैठा नहीं है ना, लेकिन हम लोग का कितना काम करना पड़ता है।
0: श्रोता गण, ये बात ध्यान रखने वाली है कि गांव में जो है काम बहुत है और लोग बिना थके काम करते हैं, तो शहर में रहने वाले जो हमारे आसपास के लोग हैं, बाकी लोग हैं, उनका दिमाग में अगर थकान ना होए तो बहुत काम हो जाए, है कि नहीं? निर्मला जी, आप हमका लागत है कि 60 के आसपास की हैं?
1: हाँ,
0: हम?
1: हाँ, हाँ,
0: तो इतना आप काम करत हैं तो जैसे आजकल तो 40 होए में लोगन के घुटना दुखाए लागत है, कमर बैठा जात है, तो आपका आप एकदम फिट लागत है, कैसे?
1: देखा बहनी हम बताई था, हमार नियम ही है सुबह कभी हम मंजन नहीं करा आज तक।
0: अरे
1: का करी थे? दातून वाला करी थे, जो नीम का पेड़ हो तो होकर दातून करी थे डेली, और दांत हमार कुल बराबर है, अभी हम गन्नो चूस ले थे, एकर मतलब कि जवाइन जो होता है ओका डेली हम यूज करी थे, कभी कभी जवाइन यूज करा सूखा, कभी मेथी यूज कर लिया, कभी अदरक यूज कर लिया, उसमें मतलब कारे जो देसी चीज है ना ओका जरूर हम यूज करें तो जवाइन वाइन बोए है।

0: पहिनी। और देखा जैसे मक्का का रोटी बा बजरी का रोटी को चाहे समय ओका जरूर डेली खावा का डेली ओका पोउ और खा भाई और देसी घी लगाई ले भाई तबियत मस्त हो जाए जान लगे।
1: अरे तो थी खाना के जो है ना स्वाद ही बदल जाए बहनी।
2: श्वेता गड़ हमको तो ई लागत है कि ई लोग खावत ही इतना बढ़िया बढ़िया तब काम इतना दमदार होए थे। हाँ। नहीं तो इंसान के कमर पिराए लागे कबो घुटना धैले है कि नहीं मंजू देवी जी।
3: हाँ बहनी सही कहीं आप। जैसे अभी हमारे बहनी कहीं कि हम आजकल बजरी का कोचा बनावत है।
2: कोचा मतलब
3: यानी बजरी का मोटे मोटे जो
1: मोटे मोटे कोचा
0: मोटे मोटे।
2: अच्छा
1: हाँ चूल्हा पे
3: ठंडी का समय है तो बजरी का जो रोटी होता है ये बहुत ही स्वाद देत है। आजकल जैसे अभी बताएं कि थोड़ा हम लोग
2: बजरी का रोटी जो है हाँ मतलब सिर्फ रोटी खाया था कि कुछ और चटनी चाहे गुड़ घी भी
3: उसमें बताइए ना जैसे गुड़ है घी है और चटनी भी बनाई ले
1: बजरी के आटा के जो है बहनी
0: लड़ुआ
1: कुछ बना था
0: लड़ुआ बना था लड़ुआ अच्छा से घी डाल के आटा भूंज दो का भूंज के धैल
1: ओकरे
0: बाद तिल भूंज के धैल सोठ भूंज के धैल हमें जरा से इलायची तब ओका गरमाई ल दूध थोड़ से खोवा तब बांध के वो लड्डू का मजा देख कितना अच्छा लागत है खावे में न खावे रहे तब वो खवाई जाए।
2: तो हम चाहित है कि एक ठो गवनही आप लोग सुनाए एक ठो और सुनाए तनी जीरा जो है हरियर हो जाए
0: जैसे गंग।

0: बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगन की बात और गवनई दोनों अच्छा लगता है। अब एक बात मंजू यादव जी, आप बताई कि मोबाइल वोबाइल भी चलावे जानत हैं?
1: आए बिल्कुल चलावे जाना थे।
0: हाँ, और
1: हाँ
0: निर्मला जी आप चलावे जानत हैं?
2: देखो बहनी, हम तो खेती में बिजी रही थे। हमारा लड़का आदमी जो है वो मोबाइल लिए है ना, को सकता पड़े पन वहीं से बात हो जाता। बहनी हम मेहनत में लगी रही था कि अपने लड़के बच्चे की सेवा करब। अब मोबाइल ज्यादा लिए तो ज्यादा पैसा डलाए पड़ा था। देखिए बहनी, हम तो बुजुर्ग है, जब हम बचत सोचब तब हमारे लड़के सोचे। हम कहे अम्मा तू तो हर चीज में सोचे, हम कहा नहीं बेटा, बचाए रहे तो आगे चल के काम दे। काहे पुरजोवन कही गए हैं कि जो हमार धरोहर बा ओका बचाए रहे, अगर बन सके तो और बनाई लहे, ओका बिगाड़े न।
3: गुंजा, देखा कितनी अच्छी परिचर्चा रही ना, बढ़िया, कितना बढ़िया बढ़िया गीत भी सुनूं। अब हम सोचे थे तो का एक ठे बढ़िया सा लोकगीत सुना दी, तो का चला सुहाग सुनाई दे थी, बरसो सुहाग बदरिया, चला सुन
0: सावित्री
3: लीन
0: बहनी
3: जाए।
0: से।
3: हाँ

0: गुंजा दिखा कितना बढ़िया गीत रहा ना।
1: हाँ
0: अब चला देखा नवरात्र के व्रत चलत बा तो हम सब तरह तरह के पकवान बनावत ही कि देखा का खाई व्रत में कि जो नहा ऐसे बढ़िया फलाहार कैले ताकि जो नहा पेट भरा भरा सा रहे। तो चला रसोई घर में तो का आज ले चल के बतावा थी मूंगफली गुड़ के टिक्की। जाना तू कैसे बना था?
1: हाँ मैंने
0: हाँ देखा जो मूंगफलिया है ओका बढ़िया से भून लियो। भून के ओका थोड़ा ठंडा हो वेदा। जब वो ठंडा हो जाए तो अपने दोनों हाथों से ओका छिलका निकाल दे और सुपवा जो होता है सुपवा में ओका फटक ले ताकि अच्छा। छिलका एकदम उड़ के दूर चला जाए तो अपने पजरी मूंगफली मूंगफली बची। जब मूंगफली की छिलका उतर जाए अच्छे से तो आप एक तरफ अपने मूंगफली के रख दे। अब कढ़ाइया चढ़ाई के ऊपर जोन गुड़ है ओका डाल देवा जाए।
1: अच्छा।

0: गुड़ जोन है ओकर चासनी बना लेवा जाए, ठीक है। और फिर ए में ध्यान रखे के बाटे, देखा चासनी खराब ना होए, अगर चासनी अगर टाइट हो जाए, कड़ी हो जाए तो दिक्कत होए बने में,
1: है ना। कि तब जो ने मूंगफली है ओका जो है तो
0: मिलावे में दिक्कत हाँ। होई, है ना। तो का ओका एक ठे तार बन जाए के चाहिए। अच्छा, जब देखे कि गुड़े के तार बने लगा बाटे तो अपने चूल्हा के बंद कर दे, मतलब आपका चासनी
1: बनके तैयार बाटे।
0: आप जो मूंगफली है तोहार ओका गुड़े के चासनी में
1: डाल दे
0: और ओका दोनों के अच्छे से पलटा से मिलाए
1: मिलाए ले,
0: ठीक है। अब एक थरिया ले ले बड़ा सा, ओमा घी लगाए दे नीचे नीचे नीचे, घी लगा के अपन जो नहीं तो मिश्रण बाटे गुड़ और
1: गुड़ के टिक्की के
0: मूंगफली के ओका ओमे पलट दे और ओका थोड़ा सा
1: फैलाए दे अच्छे से,
0: हाँ, सूखे दे और थोड़ी देर में तो गुड़ के टिक्की जोन बन के
1: तैयार
0: हो जाए। तो चला अब कैसन लगी तो के
1: देखा बहनी, इतनी मीठी मीठी तू जो बताए व्यंजन, अब चला एक तो बढ़िया से गौनाई सुन ली जाए मोहे पनघट पे लता मंगेशकर बहनी की आवाज में।

0: से कि पता लगे कि हमार बहनी अरे अपन कौन मन के बात हम तक पहुंचावे चाहती।
1: जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी के खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
2: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
3: हमार ईमेल एड्रेस है
4: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com।

0: बहनी हरिन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी हैं।
1: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़ा चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
2: हमार ईमेल एड्रेस है
3: panghatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है PANGHATPROGRAMME@gmail.com। panghatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
2: हमार व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-250। तो सखियन देर कोने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
4: बेसब्री से इंतजार रही।
5: इंतजार रहेगा बहनी अरे।
6: बिल्कुल, तो बहनी अरे अपन बढ़िया बढ़िया संदेश हम सब के भेजे और हमारे मनोबल के
5: बढ़ावे।
6: तो गुंजा देखा, अब चले के बेला हो गई है, बहनी अरे से फिर मिला जाए। तब तक बदे राम राम
5: राम बहनी अरे।

अभी बहनें पनघट कार्यक्रम सुन रही थी। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: तैयार रही।
1: यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन मेट द यूके चांसलर ऑफ द एक्सचेकर जॉन हीली ऑन द साइडलाइंस ऑफ द एनुअल मीटिंग्स इन बैंकॉक टुडे। ड्यूरिंग द मीटिंग द फाइनेंस मिनिस्टर रीअफर्म्ड इंडियाज कमिटमेंट टू वर्किंग क्लोजली विद यूके टुवर्ड्स शेयर्ड प्रायोरिटीज एंड अ कंस्ट्रक्टिव इंक्लूसिव G20 प्रोसेस। Nirmala Sitharaman arrived in Bangkok today to attend the annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank. She will also participate in the G20 and G7 finance ministers and central bank governors meetings. Prime Minister Narendra Modi will interact with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 in New Delhi this evening. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. Indian wrestler Vishwajit Ramchandra More has created history by clinching a historic silver medal in the Greco-Roman finals at the Under-23 World Championships in Las Vegas today. Competing in the men's 55-kilogram category, More narrowly lost 12-13 to Georgia's Koba Karumidze in the final seconds of the bout. The Indian Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall expected over Haryana, Chandigarh, Punjab and Delhi today. The Met Department also said heavy rainfall over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till the 21st of this month. The higher reaches of Doda district in Jammu and Kashmir experienced the season's first snowfall. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh. Hindus converting to Islam and other religions cannot claim backward class reservation, says Supreme Court, upholds Madras High Court order. Home Minister Amit Shah says government is committed for betterment of tribals affected by Naxalism, distributes assistive devices to persons with disabilities. India's defence exports surge to 38,000 crore from 686 crore rupees in the last 13 years, says Defence Minister Rajnath Singh. Upper reaches of Himalayan region receive season's first snowfall. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Punjab and Delhi today. And Indian wrestler Vishwajit Ramchandra More creates history by clinching silver medal in Greco-Roman finals at Under-23 World Championships in Las Vegas. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। श्री शाह ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रूपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रूपए हुआ। हिमालय क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में आयोजित अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
3: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
2: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालतसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ

0: संरक्षण पार्क और हिमसरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसके विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से संवारने, उन्हें सहायता देने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार

0: पांच दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ये बैठक हाइब्रिड कार्यशाला के रूप में हुई जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने की। श्रीमती चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भाषा के महत्व पर जोर दिया। बैठक में देशभर के प्रमुख भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जनजातीय समुदायों के भाषा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।
3: न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती

0: से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
1: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन एंड ऑफ वॉर। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के राष्ट्र के दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव को दर्शाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के हर स्रोत तक पहुंचकर उसका खात्मा करना है। श्री सिंह ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक के कारवार स्थित कदम नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत समर्थक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला पहला स्वदेशी बहुद्देशीय पोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: भारत सरकार के एक प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फी विद डॉटर के जनक जींद जिले के बीबीपुर गाँव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से बेटियों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।
3: अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार घट रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात जो 879 हरियाणा का होता था वो 920 925 930 तक आज के समय चला जाता है। और खास बात ये रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
2: उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा से देश सेवा की भावना के साथ शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान का बेटियों के प्रति नजरिया बदलने में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल दिया। दूरदराज क्षेत्र से निकला यह अभियान अब एक वैश्विक अभियान बन चुका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
4: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं।

0: रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ. जयशंकर ने ये बात कही। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 21 तारीख तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आइची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारुमित्ज़े से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र मोर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी,
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं, उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुनीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग NCERT का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा, इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञान

वर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ सीआईटी एनसीईआरटी की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमधा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने। और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। What a coincidence it is that I read this poem in my childhood in the textbook and got it listened to it in a musical form. I liked this poem and song very much. Thank you very much. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर, जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे, है ना? जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 मेगाबाइट यानी MB। यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओं, इसका आविष्कार हुआ था एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इसराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था डोब मोरान। उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबरा कर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा। मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो? बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी। यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन ये हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी USB पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और USB कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया। ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी

0: चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओं उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी, अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे, लेकिन श्रोताओं आपको बताना चाहता हूं उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 MB। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे USB फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में CD और DVD के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओं, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है, यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओं, अगर 1998 की उस शाम डोब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक CD के जंजाल में ही उलझे होते। जी हां श्रोताओं, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं, तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया

0: खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
1: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
0: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब आए, दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो सात की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
2: क्या आप में से किसी ने एक आम खाया है?
0: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
1: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
0: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
1: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
0: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
3: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे, अगर आप में से किसी ने एक आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थी। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
0: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
1: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
0: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
4: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
5: तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज, पत्ती, फूल और फल, इनके आने की सही तरतीब क्या है? आपने कौन कौन से आम खाए हैं, उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन, दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
7: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
8: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
9: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है, हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
10: वीर जोरावर की
11: जय।
10: वीर

0: राजा जोरावर सिंह। हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत, जीरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
1: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
0: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
1: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
2: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
3: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
2: जी।
3: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
2: जी महाराज। महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
3: बिल्कुल,
2: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
3: जी मंत्री जी।
2: जी महाराज।
0: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
5: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह।
6: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
6: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
3: देखिए निजाम साहब।
6: जी फरमाइए।
3: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
6: जी।
3: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
6: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
3: जी।
6: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
7: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
0: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
1: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
2: ए सुनो।

0: सारी तैयारियां पूरी है ना?
1: बिल्कुल।
0: देखो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साए की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
2: हुजूर आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
0: लेकिन जरा होशियारी से।
2: जो हुकुम सरकार।

0: John Armand!
1: Good
0: home! तुम चारों तरफ से गिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ। आओ सामने।
0: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियो,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
3: छोड़ो मुझे। हाथ मत लगाओ मुझे। मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सारल जंग, मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
4: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: फौजियो, ले चलो इसको।
3: छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
6: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
7: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
7: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
7: व्हाई?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
7: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे।

0: जरा भी नहीं।
1: एक्चुअली यू आर अ फूल।
2: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
3: काला पानी की सजा?
2: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
3: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
2: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।

0: जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
2: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
3: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे उमंग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। 4 बजे हैं, हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में आप संदेश टू सोल्जर्स प्रोग्राम सुनेंगे।

0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और आज आप हमारे शो में शामिल हुए हैं। हम अपने लिसनर्स को बता दें कि आप हमारा शो लाइव सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में, और आप हमें मैसेज करके कर्नल कंवर भारद्वाज से सवाल कर सकते हैं, कुछ बात करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और हमारे साथ आज के बहुत ही विशेष अतिथि जिन्होंने देश को देश की सेवा में दो पीढ़ियों से ज़्यादा की सर्विस दी है डिफेंस सर्विसेज में, कमीशन किए गए कर्नल कंवर भारद्वाज इंडियन आर्मी में 11 जून 1967 को राजपुताना राइफल्स इन्फेंट्री में। 1971 वॉर वेटरन हैं कर्नल कंवर भारद्वाज। 1971 वॉर में उन्होंने कंपनी कमांडर के तौर पर लड़ाई लड़ी, उसके बाद उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, और किस तरह से शुरुआत हुई वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बातचीत शुरू करते हैं हमारे आज के खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज से। सर, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से हुई शुरुआत आपका, या परिवार में कोई बैकग्राउंड नहीं था आर्मी से, आप किस तरह से जुड़े, कैसे वो जज्बा आपके दिल में आया?
1: मैं अपने बारे में बताने से साथ ये भी कहूँगा कि मैं एक बहुत ही जमींदार फैमिली का तीसरे नंबर का बेटा था
0: जी,
1: और मेरे पिताजी जो थे वो एक फार्मर थे, और उसमें जो मैंने मैट्रिकुलेशन किया वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके
0: ओके,
1: और आर्मी ज्वाइन की एज ए जॉन।
0: अच्छा।
1: और टेक्निकल रेजिमेंट सिग्नल्स के अंदर मेरा इंट्री हुआ व्हेन मेरी उम्र केवल 17 साल 216 दिन की थी।
0: अच्छा।
1: और उस समय हम सिग्नल्स के अंदर रिक्रूट भर्ती किए गए थे
0: जी,
1: और वहाँ भर्ती होने के बाद में ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म किया, और उसके बाद में हम जालंधर पोस्टिंग हो गए एज ए जॉन।
0: अच्छा।
1: ये फौज के बारे में मोटिवेशन इतना कुछ नहीं था
0: जी,
1: एक जमींदार फैमिली से
0: जी
1: होने के नाते कॉलेज से भागकर,
0: अच्छा,
1: फर्स्ट ईयर कॉलेज से भागकर हम आर्मी के अंदर ज्वाइन किया
0: जी,
1: और अपना मोटिवेशन यही था कि हम आर्मी के अंदर किस प्रकार से नौकरी करें
0: जी। सर, आप एक जमींदार, एक किसान परिवार से आते हैं, आपके पिताजी किसान थे, तो आपका किस तरीके से वो परिवेश रहा, और अचानक फिर ऐसे आपके दिल में जो जज्बा आया फौज ज्वाइन करने के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए, तो ये कहाँ से मोटिवेशन, जैसे आपने बताया कि हमें
1: ये बहुत ही एक अजीब सी बात है
0: जी,
1: कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इतनी जल्दी नौकरी करूं।
0: अच्छा।
1: बट जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ी रहा था गवर्नमेंट स्कूल गढ़ी अरसरू में
0: जी,
1: उस समय मेरा इंगेजमेंट हो गया।
0: अच्छा।
1: और इंगेजमेंट से डर के शादी नहीं करें। अच्छा। अभी कॉलेज से भाग करके और बगैर बताए पेरेंट्स को हमने आर्मी ज्वाइन कर ली।
0: अरे वाह।
1: और आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब पता पड़ा हमारे पिताजी को कि हम फौज में जा रहे हैं, तो पूरा परिवार बहुत नाराज था, और पिताजी ने आकर के काफ़ी कुछ कोशिश की, क्योंकि जो मेरी वाइफ जो शिक्षा भारद्वाज जो अभी नहीं है, तो उनके ताऊ जी वहाँ पे हेड क्लर्क पोस्टेड थे।
0: अच्छा।
1: सोल्जर बोर्ड में, और गुड़गांव में जब भर्ती हुआ तो मेरे फादर जो है वो उनके ताऊ जी के पास पहुंच गए और मेरी कंप्लेंट की कि भर्ती होके जा रहा है, इसकी शादी वगैरह अरेंज कर रहे थे तो इसको रोको। तो मैंने बड़े रौब से बगैर ज़्यादा कुछ बोलते हुए अपने फादर का बहुत रिस्पेक्ट करता था, और गर्दन नीचे करके और अपने जो वुड बी फादर इन लॉ को भी ये बोल दिया कि जी फौज में जाना मेरे को अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू गो एंड ज्वाइन द आर्मी ओनली
0: जी। तो आप डिटरमिन्ड रहे, आप मजबूत रहे कि मुझे तो आर्मी ज्वाइन करनी ही है।
1: एक्चुअली ये था कि टेंथ करके अगर कॉलेज में आगे नहीं पढ़ना है
0: जी,
1: और जोश था कि आर्मी ज्वाइन करें, क्योंकि आर्मी उस टाइम पे नंबर वन प्रोफेशन होता था आज के जमाने को ना कहते हुए, एंड आई हैड द इंसिस्टिंग टू माई सेल्फ इन दैट फीलिंग कि इससे बढ़िया नौकरी कुछ नहीं हो सकती।
0: अच्छा। सर, वो कौन सा साल था जब आपने ज्वाइन किया?
1: इट वॉज 1961। और वहाँ पे इतना ज्यादा लगड़ा हुआ।
0: अच्छा।
1: और जो मेरे वुड बी फादर इन लॉ थे उसने जाते समय वार्निंग दे दी थी कि अगर जा ही रहे हो बगैर हमारे बताए
0: मर्जी के
1: तो वहाँ जाकर के फिर ये मत बोलना कि आप हमारा नाम कटवा।
0: अच्छा, अच्छा,

0: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। आज का प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद। और आज के हमारे संदेश टू सोल्जर्स के बहुत ही विशेष अतिथि हैं कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन, और हम उनका स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारे इस खास शो में। कर्नल कंवर भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: मतलब ऐसा नहीं कि आप पीछे हट जाएं।
1: और जिस काम से मैं भागा था,
0: जी
1: जैसे शादी ना करने के डिले डिले करने
0: जी
1: की शादी से भागा था, जब मैं रिक्रूट की ट्रेनिंग कर रहा था
0: जी
1: तो मेरे को 10 दिन की छुट्टी ला बुला करके और मेरी शादी भी हो गई।
0: अच्छा
1: व्हेन शी वॉज 14 ईयर्स एंड आई वॉज 18 ईयर्स ओनली,
0: ओके
1: बिकॉज आई ज्वाइन द आर्मी व्हेन माई एज वॉज ओनली 17 ईयर 216 डेज।
0: अच्छा आप पूरे 18 के भी तब तक नहीं हुए थे
1: जी
0: और आपने अपनी सर्विस जो है नेशन के लिए, आर्मी के लिए, फोर्स के लिए देना शुरू कर दिया था।
1: जी
0: जी तो सर शुरुआत किस तरह से हुई? आप इन्फेंट्री में रहे, राजपूताना राइफल्स में रहे, तो यही शुरुआत थी या इससे पहले भी आपने किसी और जगह भी काम किया आर्मी में?
1: एक्चुअली जब सिग्नल्स के अंदर
0: सिग्नल
1: हम जवान थे
0: जी
1: तो वहाँ हमारी पोस्टिंग हो गई ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म करने के बाद में,
0: अच्छा
1: जालंधर,
0: ठीक है
1: जालंधर 11 कोर सिग्नल रेजिमेंट, उसके अंदर पोस्टिंग हो गई।
0: जी
1: एंड व्हेन आई वाज देयर 1962 का चाइना के साथ वार
0: अच्छा
1: हुआ,
0: जी
1: सो
0: जी
1: दैट टाइम हम जवान थे तो
0: अच्छा
1: पूरी रेजिमेंट के अंदर काफ़ी
0: जी
1: तहलका मचा हुआ रहा और हम एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग जवान बन गए थे वहाँ पे। और 62 का ऑपरेशन के बाद में
0: जी
1: इमरजेंसी कमीशन स्टार्ट हुआ,
0: अच्छा
1: तो इमरजेंसी कमीशन के दौरान
0: जी
1: मेरे को स्पेशली एक अच्छा जवान सेलेक्ट करके
0: अच्छा
1: और कमांडिंग ऑफिसर के साथ में कुछ एक कैंडिडेट से जिनका
0: जी
1: इंटरव्यू कैंडिडेट करके, और कर्नल साहब को जो हमारे सीओ थे उस समय,
0: जी
1: उनको स्क्रीन आउट करना था कि इनको हम आगे एसएसबी के लिए रिकमेंड करें।
0: अच्छा
1: सो वो बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट है विच यू वुड लाइक टू नो,
0: जरूर सर जरूर हमारे
1: कि
0: लिसनर्स।
1: मेरे को ये ड्यूटी दी गई कि सबको बारी बारी कमांडिंग ऑफिसर साहब के अंदर ऑफिस में
0: ऑफिस
1: भेजते
0: में भेजा
1: रहिए
0: जाए
1: और इनके
0: जी
1: डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके एंड डू दैट फुल।
0: जी
1: सो सीओ साहब 1:30 बजे लंच ब्रेक के लिए घर चले गए और जाते समय बोल गए कि मैं 3 बजे वापस आऊँगा और 3 बजे के बाद में बाकी कैंडिडेट्स का हम इंटरव्यू करेंगे।
0: अच्छा
1: 3 बजे वो सही डॉट 3 वापस आ गए तो
0: जी
1: फर्स्ट कैंडिडेट को हमने बोला कि आप अंदर जाइए, तो वो अंदर गए तो उन्होंने जाते ही अंदर जाते ही बोला गुड मॉर्निंग सर।
0: अच्छा
1: तो सीओ आस्क्ड हिम कि व्हाट इज द टाइम, 3:05 सर,
0: अच्छा
1: तो व्हाई आर यू विशिंग मी गुड मॉर्निंग सर, तो ही सेड के सर वी हैव बीन टोल्ड इन द सिविल इफ यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम यू मस्ट
0: अच्छा
1: विश हिम गुड मॉर्निंग। बोलता इफ देर इज एनी हार्म इफ यू विश मी गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग,
0: जी
1: बट सर वी हैव बीन टोल्ड द सिविल लाइक दैट। ही पुट अप सन अदर क्वेश्चन टू हिम ऑल्सो,
0: जी
1: सो ही वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई इट प्रॉपरली। देन ही कॉल्ड फॉर मी,
0: जी
1: आई इंटर्ड सलूटेड हेम एंड ही पुट अप ऑल दोज क्वेश्चन टू मी एंड स्ट्रेट वे जो ही वो जैसे सवाल सारे मैं
0: जी
1: फटाफट जवाब दिया
0: जी
1: तो कर्नल साहब ने मेरे को तो चेयर ऑफर कर दिया और उसको बोला थैंक यू
0: अच्छा
1: कैरी ऑन।
0: और आपको
1: एंड
0: सिलेक्ट कर लिया
1: ही इंसिस्टेड मी और रादर मोटिवेटेड मी,
0: जी
1: यू ट्राई फॉर कमीशन, वाई डोंट यू ट्राई फॉर कमीशन। आई सेड सर आई एम नॉट ग्रेजुएट, आई एम मेट्रिकुलेट ओनली, आई एम नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन टू अप्लाई फॉर द
0: फुलफिल द
1: इमरजेंसी
0: जी
1: कमीशन।
0: क्राइटेरिया
1: एंड
0: जी
1: ही टोल्ड मी दैट ओके क्राइटेरिया नहीं है अभी, तो आप ACC अप्लाई करिए,
0: जी
1: यू अप्लाई फॉर आर्मी कैडेट कॉलेज एंड आई सी दैट यू गेट सेलेक्टेड। एंड माइंड यू आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक, देयर
0: अच्छा
1: वॉज 63 कैंडिडेट्स फ्रॉम माई रेजिमेंट दोज हु अपियर फॉर इनिशियल आर्मी कैडेट कॉलेज,
0: जी
1: ऑल द टेस्ट एंड ऑल दैट, आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट सेलेक्टेड आउट ऑफ 3
0: अच्छा
1: कैंडिडेट्स आउट ऑफ
0: 63 में
1: सिक्सटी
0: से
1: थ्री
0: आप जी,
1: जो कि SSB तक पहुँचे।
0: तो ये मोटिवेशन सर आपको
1: ये
0: सीओ साहब से
1: मोटिवेशन
0: मिला
1: मोटिवेशन दैट
0: जी
1: वे आई गॉट मोटिवेटेड
0: जी
1: एंड आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक, आई हैड वेरी गुड कैरियर
0: बिल्कुल
1: थ्रू आउट माई आर्मी कैडेट कॉलेज देन IMA एंड व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम देयर यू यू आस्क्ड मी दैट हाउ यू गॉट इन टू यू इन्फेंट्री
0: बिल्कुल
1: दैट टू
0: जी
1: राजपूताना राइफल।
0: जी
1: सो ऑन दैट आई जस्ट टेल यू कि वहाँ पे जो मेरे कंपनी कमांडर थे
0: जी
1: IMA के अंदर,
0: जी
1: वो राजपूताना राइफल से मेजर शर्मा साहब थे जो
0: अच्छा
1: कि वार वेटरन थे और VRC डेकोरेट थे।
0: अच्छा
1: सो आई वॉज वेरी आउटस्टैंडिंग, माइंड यू आई मस्ट बी प्राउड ऑफ टेलिंग यू ऑल्सो
0: बिल्कुल
1: कि
0: सर
1: आई हैव प्लेड वॉलीबॉल नेशनल लेवल एंड
0: नेशनल लेवल पर
1: बास्केटबॉल स्टेप डाउन एंड
0: अच्छा
1: आई वॉज गुड बॉक्सर एंड क्रॉस कंट्री रनर ऑफ द टॉप क्लास
0: क्या बात है
1: इन
0: सर,
1: अकेडमी।
0: वॉलीबॉल,
1: सो
0: बॉक्सिंग और रनिंग,
1: और रनिंग
0: क्या बात है,
1: एंड वॉलीबॉल नेशनल लेवल इज
0: नेशनल लेवल पर
1: समथिंग
0: आपने
1: वेरी,
0: वॉलीबॉल वॉलीबॉल भी खेली।
1: सो ही वॉज सो इम्प्रेस्ड एंड ही वॉन्टेड मी टू गो टू हिज रेजिमेंट ओनली एंड
0: अच्छा
1: दैट्स वाई वेयर इज माई CO दैट टाइम हु गॉट मी सेलेक्टेड फॉर ACC,
0: जी
1: ही
0: जी
1: वॉन्टेड मी दैट आई शुड ज्वाइन सिग्नल्स। बट आई गॉट इनटू

0: तो सर आपको ज्यादा मजा किसमें आया, मतलब आपको लगता है कि राजपूताना राइफल्स ही आपके लिए जो है एक ड्रीम था?
1: देखिए ऐसा मैं बताएं कि आर्मी ज्वाइन करना एज ए मैटर ऑफ प्राइड एंड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर एज ए डबल मैटर ऑफ प्राइड एंड इफ यू गेट इन टू इन्फेंट्री नथिंग लाइक दैट एंड अमोंग इन्फेंट्री राजपूताना राइफल्स इज अ टॉप.
0: अच्छा.
1: एंड आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ दिस दैट आई गॉट इन टू राजपूताना राइफल्स.
0: क्या बात है सर.
1: यू नो माई एल्डर सन इज ऑल्सो फ्रॉम राजपूताना राइफल्स.
0: यस सर.
1: एंड
0: जी
1: दैट बॉय ऑल्सो बिकॉज राजपूताना राइफल इज वन ऑफ द वेरी गुड रेजिमेंट.
0: जी
1: एंड ही इज द वन.
0: जी क्या बात है सर. हम आगे सर आपसे बात करेंगे और हम 62 जैसे आपने बताया हम 71 की बात करेंगे क्योंकि आप वॉर वेटरन रहे 1971 वॉर के, तो हम उस पर भी बात करेंगे और कुछ आपसे इंटरेस्टिंग कहानियां भी जानना चाहेंगे. तो आगे बढ़ेंगे हम और अपने लिसनर से बताना चाहेंगे आप हमें मैसेज कर सकते हैं. 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमारे आज के हमारे खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं और 1971 वॉर वेटरन हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं और हमें आप सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर. बने रहे हमारे साथ, यह देश का नंबर 1 रेडियो आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ.

0: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं। मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और आज हमारे हैं खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे इस शो में।
1: वेलकम, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया आज हमारे साथ। आप जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बता रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही अनोखी भी हैं और बहुत ही खुशी देने वाली भी हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आपने बचपन से ही किस तरीके से आपके मन में था कि आपको फौज में भर्ती होना है और आपने किसी की परवाह नहीं की और आपने वो मकाम बनाया जो हर इंसान के लिए सर मैं समझता हूँ कि आसान नहीं होता, जाहिर है बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, तो वही आपने अपनी लाइफ में वो किया, अपने करियर में आपने जो अचीवमेंट्स हासिल की, वो जो मकाम आपने बनाया, तो इसके बारे में आपके कुछ सर कुछ शब्द मैं चाहूँगा कि आप कहना चाहेंगे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में। आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं?
1: आई थिंक ऊपर वाले ने जो दिया है
0: जी,
1: जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे भी बहुत अच्छा मिला है। और जो 71 वॉर के बारे में
0: जी
1: मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं बड़ा यंग ऑफिसर था एंड आई वाज मेजर रैंक था मेरे पास में
0: जी।
1: आई वाज कमांडिंग वन ऑफ द कंपनी ऑफ 9th बटालियन राजपूतान राइफल
0: जी
1: इन पुंछ सेक्टर,
0: पुंछ सेक्टर में जी। तो सर 1971 वॉर वेटरन हैं आप, तो उसके सर हम उस वॉर के बारे में जानना चाहेंगे जिसका आप हिस्सा रहे हैं, तो वो किस तरीके का सर दौर था, वो क्या हालात थे और जब वो जंग थी तो उस पर आपका और जो जो नेशन उस वक्त जो देश पर में चल रहा था उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: देखिए उस समय जो हालात थी
0: जी,
1: मुक्ति वाहिनी वगैरह बहुत पहले से मूवमेंट शुरू हो चुके थे
0: जी
1: ईस्टर्न सेक्टर में, बट नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर पुंछ एरिया स्पेशली उस साइड के अंदर कोई ज़्यादा इतनी चहल पहल नहीं थी, लड़ाई की तैयारियां नहीं थी। लेकिन लकली वी हैड ए जनरल ड्यू कमांडर मेजर जनरल कुंदन सिंह
0: जी,
1: ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम राजपूतान राइफल्स एंड ही हैपन टू बी ए वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग जनरल हु रिटायर्ड एज MS लेफ्टिनेंट जनरल। ही वॉज द वन हु पुल्ड अप द कंप्लीट डिवीजन एंड वी वर प्रिपेयर्ड फॉर एनी एवेंचुअलिटी और एनी वॉर टाइप थिंग एट दैट टाइम
0: जी।
1: सो ही वॉज द वन एंड आई वॉज विद द ब्रावो कंपनी कमांडर इन पुंछ सेक्टर वेयर पुंछ इज अदर साइड ऑफ द पुंछ रिवर एंड वी वर द अदर साइड ऑफ द दिस साइड ऑफ द पुंछ रिवर एंड अदर साइड हम इस साइड में थे।
0: अच्छा।
1: और पुंछ के थोड़ा सा आगे चलने के बाद में पाकिस्तान बॉर्डर स्टार्ट होता है एंड आई वॉज फेसिंग द पाकिस्तानीज अपोजिट माई पोस्ट अक्रॉस द रिवर पुंछ रिवर,
0: मतलब आमने सामने की
1: आमने सामने थे
0: बिल्कुल।
1: और उनके पास में वहां पे RCL गन लगी हुई थी और MMG लगी हुई थी, वो डायरेक्टली हमारे अंडर व्यू थी, दे कुड फायर एट अस एंड वी कुड फायर एट देम।
0: अच्छा, बिल्कुल आमने सामने,
1: आमने सामने फ्रॉम दैट टॉप एंड आई हैड यू नो कंपनी वाज डिप्लॉयड ऑन 3 पोस्ट।
0: अच्छा।
1: एंड आई वाज ऑन द मिडिल पोस्ट, फ्रॉम मिडिल पोस्ट जो पहाड़ी का था
0: जी
1: उससे हम पूरी कंपनी को अपना कंट्रोल करते थे,
0: ठीक है,
1: और सामने से फायर वगैरह आते थे। 4 तारीख December 4
0: जी
1: फायरिंग स्टार्ट हो गया, तो फायरिंग स्टार्ट होने के बाद में पूरी रात हम लगभग लड़ाई लड़ते रहे और जो ही फायरिंग स्टार्ट हुआ तो माई एक्शन वॉज कि मैंने पूरे जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाना है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली व्हेन

0: firing was going on. I never bothered. First I went to other pahadi, other jo ke zameer picket thi, almost about a kilometer other side, on the uphill of the mountain. And I met all the personnel. And jawanon ka hausla badhate badhate. Then I went to the other picket and then to my own picket. And complete night I was active with that, meeting the people.
1: Puri
0: raat rahi.
1: And when I wait karte rahe, hausla badhate rahe.
0: You know, we have the command post.
1: Achha.
0: And command post is sort of a very, very solid bunker.
1: Bilkul.
0: From where you could observe and then direct the firing and other thing also, and command your company also.
1: Bilkul.
0: So from the command post, early in the morning, it was going to be daylight, I got out from my command post and was going for a pee place, to a toilet. And the toilet was, you know, all temporary.
1: जी बिल्कुल
0: तीन से तीन के टार्मिक के टिन होते हैं ड्रम उसको कट करके एक बड़े से पत्थर के साथ में
1: उसको बनाया जाता है
0: बनाया गया
1: ठीक है
0: टेम्परेरी टाइप सो आई वाज गोइंग टू दैट वन सो बंकर टू बंकर और वी हैव द कम्युनिकेशन ट्रेंचेस कम्युनिकेशन ट्रेंचेस आर द यू नो सॉर्ट ऑफ अबाउट 5.5-6 feet डीप थ्रू विच यू कैन
1: उसके बीच में से आपको गुजर के जाना होता है
0: चल के जाना होता है
1: जी
0: सो व्हेन आई वाज वॉकिंग टू टॉयलेट एंड देन क्लाइम अप एंड गेट आउट फ्रॉम दैट वन
1: जी
0: दैट टाइम देयर वाज अ साउंड ऑफ ए आरसीएल फायर
1: अच्छा
0: व्हेन द आरसीएल फायर केम तो माय ऑपरेटर वाज विद मी
1: जी
0: एंड ही वाज कमिंग आउट विद मी कि मेजर साहब कहाँ जा रहे हैं
1: जी
0: तो वो मेरे साथ जो ही निकला उसने सुना कि अब फायर हो गया आरसीएल
1: जी
0: और इसने मेरा हाथ पकड़ के और पीछे गिरा दिया
1: अच्छा
0: और बोला अरे सब मरोगे एंड इन द मीन टाइम द आरसीएल बम हिट दैट टॉयलेट वाज इट वाज थ्रोन अप इन पीसेस एंड द बिग द रॉक ओवर देयर इट वाज ऑल ब्लोन अप एंड वी वर रियली इन डेंजर एंड इट वाज ए गुड लक ऑफ माइन
1: कुछ सेकंड्स थैंक कहीं सिर्फ
0: यस
1: आप मतलब वो जो सामना होने वाला था
0: इट वुड हैव बीन एंटायर डिफरेंट थिंग आई वुड हैव बीन पीसेस नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टुडे
1: बिल्कुल
0: सो दैट वाज द वन देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट डे अर्ली आफ्टरनून वी गॉट ए ऑर्डर दैट यू हैव टू मूव आउट टू अनदर बटालियन दैट इज बनवट सेक्टर एंड डिफेंड ए कंपनी ऑफ अदर छेसिक which was in danger which was attacked that night
1: acha to aapko unki madad
0: next next night they were to be attacked
1: ji
0: so that one of the fdl behind that is numbered fdls were numbered at 405 406
1: acha
0: so 406 was in danger it was in encircled by the enemy
1: acha
0: so I was told that your company will go and reinforce that 405 picket so that you we could fight back the enemies So I moved my company before last light to the that side towards Punch. We had to go across the Punch River. Then Punch township is there. Pass through that place and they climb up almost about 2,000 square feet, I say. And the brigade headquarters was at the Punch River. Punch headquarters, the brigade one. So there was a Jhula Bridge which was to be crossed. झूला ब्रिज ऑन पुंछ वॉज द वन विच वॉज अ वुडन टाइप एंड यू नो ओनली इट वॉज ओनली फॉर टू व्हीलर्स पैदल चल के जाने के लिए सो आई वॉज कॉल्ड बाई द बटालियन कमांडर फॉर द ब्रीफिंग सो विद माई स्कॉट टू स्कॉट एंड ऑपरेटर्स वी वेंट टू द बटालियन कमांडर And he briefed me that you have to go and do this work. Chesik was the battalion which was deployed that side at 405, 406. And you have to go and clear the saddle between Black Rock, between these two FDLs.
1: Achha.
0: And then join the company which is fighting, which is likely to fight this night or next
1: day. जैसे आपने बताया कि उधर से अटैक हो चुका था और
0: हाँ जी उनको जाके आपने
1: reinforce करना है.
0: So after briefing, I had to I got a RCL Jeep. I with my Scott and all that got into RCL Jeep while moving down towards that bridge. The traffic was too much.

0: because that time they were all convoys loaded with the ammunition, all that artillery convoys. Those were the all lined up on the road, and my jeep was not able to get through. So I got on my feet with my escort and all that, and I went around say 3 to 5 kilometers walking. When I reached to the Jhula Bridge, I found my company was stuck over there. They were all in position, and firing was going on from both the sides.
1: अच्छा जिस वक्त आप पहुंचे उस वक्त भी ये सब फायरिंग
0: मेरी बाइक मेरी जो कंपनी थी वो पुंच रिवर के इस तरफ झूला ब्रिज के इस तरफ
1: अदर झूले के उस तरफ झूला ब्रिज के तरफ जी
0: पुंच के परली तरफ से भी फायर आ रहा था और इधर से ये लोग भी फायर कर रहे थे सो आई हैड टू रादर टू सबाल्टर्न टू यंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट वार्डने एंड लेफ्टिनेंट मल्होत्रा
1: जी
0: एंड जेसीओज वर देयर कंपनी जैसे से मैंने पूछा कि रंजीत साहब पे फायर क्यों हो रहा है
1: जी
0: रंजीत साहब ये फायर क्यों हो रहा है
1: जी
0: तो उन्होंने बताया सर उधर सामने से फायर आ रहा है मैं क्या फायर क्यों किया बोल सर ऐसा है झूला ब्रिज के ऊपर से 3-4 लोग आए थे
1: अच्छा
0: और जब वो आने लगे उतर रहे थे तो हमने उनको चैलेंज किया तो उन्होंने पासवर्ड नहीं दिया और वो भागने लगे तो भागने लगे तो हमारे जवान ने फायर कर दिया मैंने बोला तुम्हारे को बताया था ऐसे तो मरकत नहीं करना वहां जाके कंपनी को पोजीशन दे देना मैं आके ज्वाइन करूंगा आपको तुमने फायर क्यों खोला बोले सर हमने सोचा एनिमी है तो जवानों ने फायर खोल दिया मैं क्या ऑर्डर किसने दिया बोले साहब मैंने दिया था मैं चलो कोई बात नहीं है देन आई कॉन्टेक्टेड द ब्रिगेड BM आई सेड माई कंपनी टू क्रॉस झूला ब्रिज एंड गो टू बनवट सेक्टर टू हेल्प आउट सेसिक एंड हु इज फायरिंग फ्रॉम अदर साइड देयर वॉज 80 कंपनी 80 company, those who are, you know, with the animals, mules and all that. So they thought okay, there is an enemy to other side. And they were firing this, towards us and we were firing that side.
1: जी सर एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा जब ये सिचुएशन आप देख रहे थे अपने सामने तो वो क्या फीलिंग्स होती हैं आप फायरिंग के बीच में जब जा रहे हैं दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और वो वॉर का समय है तो क्या वो जो सिचुएशन होती है उसको किस तरह से फेस करते हैं
0: जो फीलिंग होती है जो फीलिंग होती है
1: जी
0: वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है हम तो इतने जोश में होते हैं कि कुछ हमको लगता ही नहीं है हम तो को पता है हम जीतेंगे हम मारेंगे हम अपने जो भी हमको ऑब्जेक्टिव मिला है जो टास्क मिला है उसको पूरा करेंगे अभी बताता हूँ आगे क्या क्या हुआ तो BM साहब ने बोला और AT वाले मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपना कंपनी को लेके क्रॉस करिए और आप पहुँचिए जल्दी से सो You know, climb was quite big. When the firing stopped, I moved my company, crossed the Jhula Bridge, then started climbing up. So climbing up all that, toward that Malhotra platoon was leading. And we come in single line. Track ke upar jaise pahadon ke chadte hain, to single line pe ja rahe the. Everybody was tired. And it was going to be early morning. But before first light, I was to reach...
1: Puri raat ko aapko chadhai chadhi thi.
0: Before first light, I was to do the operation also. That was my task. Because if it was the daylight, then I wouldn't be able to do the needful.
1: बिल्कुल. तो इतनी tough climbing के बाद आपको operation भी अपना शुरू करना
0: है. Complete करना था.
1: बिल्कुल.
0: So when we are nearing that objective, before I mean the 405, the 405 was the headquarter of CSIC, and the CO was there. And all those people, those who have the tail men, those control करते हैं. तो मेरे को उनको जाके ब्रीफिंग लेना था उनसे ब्रीफिंग लेने के बाद मेरे को ऑपरेशन करना था सो टाइम वाज रनिंग शॉर्ट तो व्हेन आई फाउंड के आगे से वो बैठ गए सारे
1: जी
0: तो मैंने जाके जवानों से पूछा क्या हुआ मोल साहब मल्होत्रा साहब आगे बैठ गए आई कॉट ऑल ऑफ मल्होत्रा फ्रॉम हिज नेक एंड आई टोल्ड हिम व्हाट्स द रॉन्ग विद यू व्हाई यू स्टॉप्ड बोले सर टायर्ड मैं कह यू गेट बैक एंड आई वॉज द वन टू लीड द कंपनी टीच टू द 405 FDL and I met the CO. CO briefed me. I requested CO, okay, sir, give me 2 escort, those who can tell me from where the fire is coming, so that my jawans can attack that one and I don't suffer casualties. So when he told me that, okay, Major Swain is the company commander and you take two jawans from him, they will tell you from where the fire is coming. So when I went to him, Major Swain said, no, I am already under the attack. I will not be able to give anything. So I walked back to command.

0: Running officer
1: जी
0: of Chesik, and I said, sir, your company commander is not giving me escort. Then he said, okay, the task is given to you. Make a well, Colonel so and so. You are talking to the company commander of 9th Battalion Bravo Company, and I'll see that my task is completed before the first light, and I'm going. So his adjutant came running with me, and he asked that Major Swain to give me escort, and I put up an attack sort of thing, I should say.
1: Okay,
0: we had to go down. We had to go down in the valley, and climb up again, and then there was a black rock. From there, the MMG and LMG of Pakistanis, they were firing. There were a number of mules, those were killed, and one of the casualty was there. Other people were also injured in that valley.
1: Ji.
0: But before the first light, I was able to climb up, and that the enemy left his that location,
1: leaving
0: some ammunition in one of the... They ran away from there.
1: Ji.
0: And I joined Major Punjab and Major Padda over there, and there were 36 Pakistanis, those were killed by that company that night itself. So next morning we picked up all those dead bodies of them. I had breakfast, a hot breakfast with the Major Punjab and all. And then next task was given to me to go to help out other company, because I was one of the outstanding company commander and outstanding company in the complete division.
1: Ji.
0: With my young Jose and all that. And I had stood first in one of the competition which was conducted at the DIV level, at the DIV headquarters at Rajouri. And the DIV commander himself has given this praise of mine that Bravo Company commander, Major K.S. Kamar Bhardwaj, is one of the outstanding officer in this competition training we had in the DIV battle school.
1: जी,
0: सो दैट वाज द रेपुटेशन ऑफ दैट थिंग.
1: बिल्कुल सर, आपकी आपकी वो जोश और जज्बे से भरा हुआ वो जो मोमेंट रहा, उसमें आपने इतना बड़ा उसमें जो है कंट्रीब्यूशन दिया, रोल प्ले किया, तो वो वाकई यादगार है. और जैसे कि आपने बताया कि वो आपकी यादों में जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए, और वो आपके कहीं ना कहीं मस्तिष्क में हमेशा के लिए वो जुड़ा हुआ
0: जो
1: है.
0: अभी आप बात कर रहे हैं, अभी वैसा जोश आ रहा है,
1: जोश
0: अभी भी मैं उसी लड़ाई, उसी पहाड़ और
1: जी,
0: उसी
1: जी.
0: ब्लैक रॉक जिसको मैंने जाके कैप्चर किया
1: था,
0: और वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि सामने अभी से मैं फिर से जवान हो जाऊं.
1: आप उन यादों में पहुंच गए, और मैं आपके साथ उन यादों के साथ ही वहां पर पहुंच गया आपकी बातों में. मुझे महसूस हो रहा था कि मैं वहीं आपके साथ पीछे पीछे चल रहा हूँ आपकी बातों में और आपकी यादों में, जहाँ आप वॉर फ्रंट पर थे और आप दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे.
0: Say it's very nice to talk on that line.
1: जी, और सर इसके बाद भी हम आगे आपसे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि हम और भी चीज़ें आपसे जानें. जैसे आपने 1971 वॉर की, आपने जो इंसिडेंट बताए यादगार कुछ लम्हे आपने शेयर किया हमारे साथ. सर, आर्मी सोल्जर्स ने सिर्फ वॉर फ्रंट पर ही नहीं, उसके अलावा अलग अलग स्ट्रीम्स में भी, स्पोर्ट्स में भी गोल्ड और अदर मेडल्स भी जीते हैं, तो आर्मी का कितना बड़ा रोल रहता है वो हर तरह से. जैसे कि आपने भी कहा, आप नेशनल लेवल चैंपियन भी रहे वॉलीबॉल के, बॉक्सर भी आप रहे, आप एक बेहतरीन रनर भी थे, तो आर्मी इन सब चीज़ों में भी आगे रहती है हमेशा, वो वहाँ भी कीर्तिमान स्थापित
0: well,
1: करती है.
0: राइट फ्रॉम द डे वन
1: जी,
0: फिजिकल साइड हैड बीन माय द बेस्ट आई से माय स्ट्रेंथ एंड देन माय मोटिवेशन,
1: बिल्कुल
0: माय
1: फिजिकल स्ट्रेंथ
0: एंड डिटरमिनेशन, ऑल दोस थिंग्स. Today I can say again that I am self-made man is
1: जी,
0: in front of you. ठीक है, from that background of a farmer family, at my own, without any sipares or without any recommendation or bribe or anything, I was the one to do all these things.
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल grassroots level से शुरुआत की, और आपने जो achievement हासिल करी वो आपकी अपनी earn की हुई है, अपनी मेहनत से आपने वो जो एक मकाम हासिल किया.
0: You will be proud to tell you that मैंने जब बटालियन में कदम रखा तो अपने आप को बटालियन में किसी जवान से कम नहीं समझा. मेरे फिजिकल में इतना दम था कि जवान भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, ऑफिसर की तो बात ही छोड़ दी.
1: क्या बात है सर.
0: और मैंने जब बटालियन जामनगर आ गई तो उस समय मैंने बटालियन में बॉक्सिंग टीम रेज की, वॉलीबॉल टीम रेज की, और वो वॉलीबॉल नेशनल लेवल के प्लेयर बनाए, और जो बॉक्सर सेलेक्ट किए थे उसमें फर्स्ट टाइम 4 बॉक्सर कमांड लेवल तक बॉक्सिंग किया.
1: क्या बात.
0: एंड माय क्रॉस कंट्री रनिंग

0: or the lot of other competition. I used to carry even the heavy load of RCL. और
1: आरसीएल सर बहुत भारी
0: उसको कैरी करना पड़ता है.
1: अच्छा
0: एमएमजी कैरी करनी पड़ती है, तीन पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं.
1: अच्छा उसको
0: तो उसको लेकर के हमको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो ऐसे लंबी दौड़ें लगानी पड़ती है.
1: अच्छा
0: सो आई यूज्ड टू बी लीडिंग अमंग द जवान्स आल्सो विद ऑल दैट एंड माय सीओ एंड माय 2IC एंड माय बटालियन यूज्ड टू कॉल मी रनिंग हॉर्स.
1: रनिंग हॉर्स,
0: रनिंग हॉर्स,
1: क्या बात है सर.
0: सो दैट वाज द And mind you, that time I was also married and father of one daughter then.
1: जी.
0: Then son was also born there only, Jamnagar.
1: क्या बात है सर.
0: And after that I had gone to the war.
1: जी. कर्नल कमर भारद्वाज की बात सुनकर के हम भी जोश से पूरी तरीके से भर गए हैं. और यहाँ पर मैं जरूर कर्नल कमर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं 1971 वॉर वेटरन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं संदेश टू सोल्जर्स में, उनको सर मैं आपको ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ जो आपकी पसंद से मैंने गाया था. ब्यूटीफुल ट्रैक घर से निकलते ही आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर शाहिद के साथ. आप हमें संदेश टू सोल्जर्स में कर्नल कंवर भरद्वाज से आप बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107007 पर. और जो मैसेजेस सर आ चुके हैं मैं उनको आपको पढ़कर सुनाऊंगा इस गाने के बाद.

0: आज के शो में कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित वॉर वेटरन हमारे साथ आज मौजूद हैं और हम उनकी कहानी सुनकर के खुद भी जोश से अपने आप को भरपूर महसूस कर रहे हैं। सर, यहाँ पर मैं आपसे जो भी अभी अब तक मैंने बात की, आपके बारे में बात की, लेकिन सर एक ऐसी एक शहीद की बात भी मैं यहाँ पर करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी देश के लिए बलिदान दिया, जान की आहुति दी, और वो थे कैप्टन उमंग भारद्वाज, आपके सुपुत्र, जिनको उनके साथी प्यार से टाइगर बुलाया करते थे। तीन सक्सेसफुल ऑपरेशंस उन्होंने किए, जिन तीन ऑपरेशंस में उन्होंने 15 ड्रेडेड टेररिस्ट को मार गिराया था। उसके बाद चौथा ऑपरेशन था, वो एम्बुश था 18 और 19 नवंबर 2002 की मिडिल नाइट में। उस दौरान सर 6 टेररिस्ट मार गिराए गए, जिनमें से 2 को अकेले उमंग भारद्वाज ने ही मौत के घाट उतारा। और सर उसी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बलिदान दिया, शहीद हुए वो, और उनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी नवाजा गया था। सर वो मोमेंट था, एक प्राउड मोमेंट भी था, लेकिन बहुत ही यंग एज थी उनकी जब उन्होंने शहादत पाई और टेररिस्ट का मुकाबला करते हुए उनको मार गिराया और अपनी भी जान की आहुति दी देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे याद करते हैं आप?
1: ओह माय गॉड, कैसे याद करते हैं। जैसे उसका नाम था ना उमंग
0: जी,
1: ही वाज ऑलवेज ए लाइव वायर, आई टेल यू, हे मेरे लाइफ का वो इतना चाहता बेटा था
0: जी।
1: ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड, ही वाज माय बेस्ट गाइड, ही वाज माय बेस्ट फादर, एडवाइजर, व्हाट सो यू कॉल, बिकॉज इट हैपन्ड सो कि वो बड़े भाई से 7 साल छोटा था।
0: अच्छा।
1: जो उस समय मेजर थे और एनएसजी में इंस्ट्रक्टर थे, मेजर राजेश भारद्वाज
0: जी,
1: और सबसे बड़ी सिस्टर जो है उनकी वो डॉक्टर सविता है।
0: अच्छा।
1: सो उमंग वाज फुल ऑफ जोश ऑल द टाइम एंड वी नेवर वांटेड टू सेंड हिम टू आर्मी, बट ही गॉट सिलेक्टेड इन रिटर्न एंड देन ही वाज टू गो फॉर एसएसबी। दैट टाइम आल्सो माई सेल्फ और मेरी और उसकी मम्मी शिक्षा भारद्वाज ने काफ़ी कोशिश की है कि हम इसको नहीं भेजें, बट उसने हमारे को परस्यू करके और उस लाइन पे ले आए कि नहीं, मेरे को फौज में जाना है और मैं पहले जाता हूँ, एसएसबी में अभी हम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, देखते हैं कितना दम है हमारे अंदर। तो वहाँ एसएसबी में गया एंड ही गॉट सिलेक्टेड बिकॉज पहले तो बोला था मैं ठीक है 5 साल के लगाऊंगा, जाएंगे तो शॉर्ट सर्विस में चले जाएंगे, एंड ही गॉट इन मेरिट एंड ही गॉट रेगुलर टू ज्वाइन सीएसडी, आईएमए ज्वाइन करके।
0: अच्छा।
1: तो कमांड डिफेंस सर्विस ज्वाइन क्लियर करके
0: जी,
1: और एसएसबी वगैरह क्लियर करके आईएमए से पास आउट हो गया। दैट टाइम आई ट्राई टू गेट हिम इन द एएससी और एओसी।
0: अच्छा।
1: सो दैट टाइम आई वेंट टू आर्मी हेडक्वार्टर, वन ऑफ द ऑफिसर ओवर देयर विद माई फ्रेंड, आई हैड गॉन टू हिम एंड आई सेड कि भाई बेटा पास हो रहा है, तो मेजर हुड्डा वाज देयर
0: जी,
1: ही सेड कि सर उसको हम आर्मर्ड कोर तो और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री नहीं दे पाएंगे, राजदेव दे देते हैं। आई टोल्ड हिम, मैं कह रहा वो मेरे पे एहसान नहीं कर रहे आप,
0: बिल्कुल
1: ठीक है। तो उसको मैं क्या, हमने राजीव नहीं चाहिए उसको, तो राजीव तो उसका बाप है, उसका भाई है, तो उसका पेरेंटल हक है, वो तो मिलेगा, बट वी वांट हिम टू गो टू नेवी, व्हाट यू कॉल, एएससी और एओसी, बिकॉज दैट टाइम देर वाज सम हिच इन माय माइंड एंड माय वाइफ माइंड कि इसको कहीं खतरा है, पता नहीं क्यों ऐसा ही पहले ही लग रहा था।
0: लेकिन सर उस उमंग में आपका वाला ही वो जोश था, अपने पिताजी का वो जोश और जज्बा, इसीलिए उनके साथ उनको टाइगर कहकर पुकारते थे।
1: आई एम कमिंग टू दैट वन। तो उसको व्हेन ही पास्ड आउट एंड व्हेन ही केम टू नो कि ये मेरे को एसी मिली है
0: जी,
1: तो मैंने वो उसको वो फोन पे बड़ी मुश्किल से बातचीत किया एंड ही वाज क्राइंग ऑन फोन कि डैड मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया, व्हाई यू गॉट मी इन एसी। आई सेड बेटे आपको 3 साल मिलेंगे अटैचमेंट के लिए, उसमें आप हमारी राजरीफ मेरी पलटन के साथ या भैया की पलटन के साथ में आप अटैचमेंट पे आना, अगर आपको राजरीफ ही चाहिए तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, अदरवाइज मैं क्या राजरीफ पे अगर मिल जाती है या इन्फेंट्री मिल जाती है उससे बाहर निकलना मुश्किल होगा, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट फ्रॉम देयर एंड वी वॉन्ट टू यू जज अबाउट यूर सेल्फ
0: जी।
1: ही सेड नथिंग डूइंग एंड मेरे ऊपर कोई मेहरबानी मत करना भी, जहाँ मेरी पोस्टिंग आती है मेरे को जाने दीजिए।

0: ही ज्वाइंट सेवन जाट, एंड सेवन जाट के अंदर गया
1: जी
0: तो ही वॉज पोस्टेड इन मेंढर सेक्टर एंड नाउ कमिंग टू द ऑपरेशंस. ही
1: अच्छा
0: वॉज सच ए जॉली फेलो एंड फुल ऑफ जोश ऑल द टाइम. ही
1: बिल्कुल
0: कंडक्टेड थ्री ऑपरेशन विच यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट,
1: जी
0: और थ्री ऑपरेशन के अंदर उसने 5 मार दिए थे.
1: जी
0: इसमें एक इंसिडेंट और बताऊंगा,
1: जी
0: एक डी के शाह उसी ए कोर्समेट, ही वॉज ऑल्सो विद द सेवन जाट एंड देर इज ए घातक प्लाटून.
1: जी जी
0: तो दिस बॉय उमंग वॉज डूइंग घातक प्लाटून कमांडर फॉर 1 ईयर एंड ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन ही हैज किल्ड 15 टेररिस्ट
1: जी
0: एंड दीज फोर ऑफिसर दोज ज्वाइंट टुगेदर सेवन जाट दे हैड टेकन ए सॉर्ट ऑफ प्लेज दैट जब तक हमारी पलटन यहाँ है और हम यहाँ पर हैं
1: जी
0: कोई टेररिस्ट हमारे एरिया से
1: जिंदा नहीं जा सकेगा,
0: जिंदा नहीं जा सकेगा, अंदर घुस नहीं
1: घुस
0: सकेगा.
1: नहीं सकेगा।
0: एंड दैट ही डिड. कैप्टन डी के झा सेक्रीफाइस्ड अबाउट 2.5 मंथ्स अर्लियर देन दैट इन दैट सेम एरिया
1: अच्छा
0: एंड उमंग वॉज डूइंग एडजुटेंट. उमंग टोल्ड मी इन द नाइट अराउंड मिड नाइट
1: जी
0: ही टोल्ड मी दैट डैड डी के इज नो मोर. आई से व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, बोलते वो तो छोड़ो मेरे से ऊपर क्या गुजर रही है. वट उसके ब्रदर हैं दिल्ली के अंदर एंड हिज बॉडी विल बी कमिंग टू एयरपोर्ट एंड उसके ब्रदर को आपके उसके साथ भेजना पटना एंड नेक्स्ट नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 आई विल कॉल यू एंड गिव मी रिपोर्ट. दैट वॉज अ सॉर्ट ऑफ ऑर्डर फॉर माई यंगर सन एंड द ब्रेव बॉय. एंड नेक्स्ट आई डिड ऑल द थिंग्स बिकॉज ही टोल्ड मी कि उसके पास पैसा नहीं होगा, उसकी टिकट वगैरह कर दीजिए और डेड बॉडी के साथ वो उधर से लेके जाएंगे उसे. सो दैट वॉज डन. देन
1: जी
0: उमंग का जो बताया ऑपरेशन,
1: जी
0: ही वॉज डूइंग एडजुटेंट फॉर 2 ईयर्स. ही वॉज पोस्टेड आउट, पोस्टिंग आ चुका था. ही केम ऑन
1: जी
0: 10 डेज लीव एंड 10 डेज लीव के वापस जब वापस गया सो ही रीच देयर ऑन द 17th इवनिंग
1: जी
0: रादर 18th इवनिंग
1: जी 18th और 19th
0: 18th इवनिंग ही रीच देयर
1: जी
0: एंड ही वॉज देयर टू टू हैव हिज फेयरवेल पार्टीज एंड ऑल दैट एंड पिकअप ए ट्रॉफी एंड गेट आउट फ्रॉम द बटालियन डूइंग गुड जॉब. दैट टाइम देर वॉज सम इंफॉर्मेशन ऑन न्यूज एंड ऑल दैट दैट देर आर सम टेररिस्ट दोज हुआ क्रॉसिंग द बॉर्डर. सो ही वेंट टू द सी ओ एंड रिक्वेस्टेड हिम दैट आई वॉन्ट टू गो फॉर द ऑपरेशन. तो सी ओ टोल्ड हिम नो यू सेंड समबडी यू विल नॉट
1: अच्छा
0: गो यू आर ऑलरेडी पोस्टेड आउट एंड यू आर यू हैव टू गो दैट इज इनफ फॉर यू. सो दिस बॉय इंसिस्ट ऑन हिम एंड थर्ड टाइम ही गॉट रेडी टुक सम पीपल विद हिम एंड वेंट फॉर द ऑपरेशन हिमसेल्फ. देन सी ओ वार्न्ड हिम दैट गो अप टू सो एंड सो लोकेशन एंड कंडक्ट द ऑपरेशन, टेक
1: जी
0: केयर, अपना ध्यान रखो.
1: जी
0: बट दिस बॉय फुल ऑफ जोश एंड
1: और
0: वेन
1: ये
0: ही वेंट विद द एम्बुस पार्टी एज एम्बुस कमांडर
1: जी
0: ही पुट द एम्बुस ओवर देयर एंड अलाउड द 6 टेररिस्ट टू गेट इन टू द एम्बुस एंड देन ही ओपन द फायर. फर्स्ट टेररिस्ट वॉज किल्ड बाई हिज फायर देन अदर पर्सन एंगेज द एम्बुस टेररिस्ट. वन टेररिस्ट वॉज रनिंग बैक टूवर्ड्स द
1: अच्छा
0: ढारा, वन ऑफ द जो ढारा इज द यूनोखंड टाइप ऑफ मकान इन
1: जी
0: द
1: जी जी
0: पहाड़ों में
1: जी
0: जिनमें डंगर वंगर बांधते हैं, तो उसमें वो शेल्टर लेने के लिए भाग रहा था. उमंग रेन पैरल टू हेम एंड शॉट एट हेम ऑल्सो. उमंग ऑल्सो गॉट ए शॉट फ्रॉम साइड फ्रॉम दिस फेलो और एनी टेररिस्ट दोज हु आर स्टिल अलाइव एंड
1: अभी
0: दिस
1: आमने सामने की लड़ाई थी उस
0: आमने
1: टेररिस्ट के
0: सामने
1: साथ।
0: फ्रॉम 6 मीटर इटसेल्फ
1: अच्छा
0: ईच अदर शाउटेड एट ईच अदर एंड
1: जी
0: ही सेड
1: जी
0: काफिर एंड ऑल दैट. ही सेड ब्लडी फुल आई विल किल यू एंड ही शॉट हिम डाउन ओवर देयर एंड ही टोल्ड हिज ऑपरेटर के रामकिशन अपने सी ओ साहब को बोलो मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, जवानों को फायर जारी रखे, कोई बच के नहीं जाना चाहिए और मेरे सियात कहीं लग गई है. तो बाई
1: अच्छा
0: दैट टाइम द ऑपरेटर अप्रोच देम उमंग वॉज नो मोर.
1: अच्छा
0: सो
1: तो उस मोमेंट पर उमंग भारद्वाज ने शहादत पाई उस ऑपरेशन के दौरान।
0: जी
1: 6 टेररिस्ट जो मारे गए,
0: जिस
1: जिसमें
0: टाइम
1: दो को
0: पंद्रह पंद्रह पहले मार चुके थे, छह से
1: जी
0: मारे,
1: छह
0: टोटल
1: इस ऑपरेशन में
0: ट्वेंटी वन
1: मार
0: टेररिस्ट.
1: जी आज हम शौर्य चक्र से सम्मानित

0: मरणोपरांत कैप्टन उमंग भारद्वाज को याद करते हैं उनकी बहादुरी, उनकी वीरता, उनके शौर्य के लिए, अदम्य साहस के लिए। सर, हम यहाँ पर, समय बहुत कम बचा है, मैं चाहूँगा कि जो मैसेजेस हमारे पास बहुत समय से आ गए थे उनको मैं आपको पढ़ करके बताऊँ।
1: जी।
0: गुड आफ्टरनून का मैसेज है हितेंद्र दास का असम से आपके लिए, और उसके बाद ये मैसेज है, गुड आफ्टरनून टू कर्नल रिस्पेक्टेड सर एनआरजे सर, आई एम राइटिंग फ्यू वर्ड्स टू आर इंडियन आर्मी, आई बो माय हेड विद इमेंस रिस्पेक्ट एंड प्राइड फॉर आवर बिलव्ड इंडियन आर्मी। यू प्रोटेक्टेड आवर बॉर्डर्स विद अनवेवरिंग करेज, यू सर्व द नेशन विद सेल्फलेस डेडिकेशन एंड यू इंस्पायर एवरी इंडियन विद योर सैक्रीफाइसेस, बिकॉज ऑफ यू वी लिव इन फ्रीडम एंड पीस, सो एंटायर नेशन इज फॉर एवर इंडेबटेड टू यू इंडियन आर्मी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये हैं सर शंकर लोध फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: और आर्मी ऑफिसर को और आरजे सर को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। यशवंत आडमुटे धाराशिव हैं सर, ये महाराष्ट्र से, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। भारद्वाज साहब से मिलने में बहुत खुशी है जी, वेलकम टू द शो। श्रीकांत हैं सर, ये टोल गेट त्रिची तमिलनाडु से। चरण कुमार हैं सर, ये सन ऑफ श्री ब्रिजेश कुमार, विलेज बरकतपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, स्टेट यूपी से। और कर्नल भारद्वाज जी को मेरी ओर से जय हिंद जय भारत ये कह रहे हैं आपको सर।
1: हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत सबको, हमारे साथियों को, सबको, आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारक
0: जी। और सर हैं ये शांताचारा बादीगर कोकानूर हरिहार से, देवनागरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। रिस्पेक्टेड सर, संदेश टू सोल्जर्स इज अ वेरी मीनिंगफुल एंड हार्ट टचिंग प्रोग्राम, यू प्रेजेंट इट ब्यूटीफुली, रिमाइंडिंग अस ऑफ द सैक्रिफाइसेस, सर्विसेज, करेज एंड पैट्रियोटिज्म ऑफ ब्रेव सोल्जर्स हू प्रोटेक्ट आवर नेशन डे एंड नाइट एट द बॉर्डर्स। सोल्जर्स स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्रीमैन, देयर डेडिकेशन एंड सेल्फलेस सर्विसेज आर ट्रूली कमेंडेबल सर ये कह रहे हैं। हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू फॉर ब्रिंग सच अ मीनिंगफुल प्रोग्राम टू अस, थैंक यू सो मच, आपने हमें सुना और आपने हमें मैसेज किया। और हैं सर ये कर्नल कमर भारद्वाज जी, जय हिंद, 71 आमने सामने के वार का विवरण सुनकर मन उत्साह से भर गया है। कमर जी का आज भी वही जज्बा महसूस हो रहा है सर, आपकी बात सुनकर के ये कह रहे हैं।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। और नाम शुभ संध्या, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, शायद राजेश भल्ला एडवोकेट कंकर खेड़ा मेरठ से हैं ये। और ये है मैसेज, नमस्कार मेरठ से वीरू बख्शी, आपके टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी मेहनत करी आपने, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। और भी सर बहुत सारे मैसेजेस हैं और समय बहुत कम हमारे पास बचा
1: अभी,
0: है
1: ये अभी कुछ एक बार पूछ लो और ना
0: जी सर। अब हम मैसेजेस बहुत सारे, मैं सब नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि समय है बहुत कम हमारे पास। मैं सर बस चलते चलते आपसे जानना चाहूँगा रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आपकी और आपके जो फैमिली है उसका किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, अब आप किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं सर रिटायरमेंट के बाद।
1: इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद में हमने एक स्कूल खोला था
0: जी,
1: बाय द नेम ऑफ कर्नल पब्लिक स्कूल, माना हुआ पब्लिक स्कूल है
0: जी,
1: CBSE 10+2
0: जी।
1: एंड आवर वॉलीबॉल टीम हैव बीन अंडर 19 अंडर 17
0: जी,
1: नॉट ओनली नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल चैंपियन
0: जी।
1: एंड आई हैड ए होस्टल आल्सो इन द स्कूल इटसेल्फ फॉर द बॉयज।
0: आज सब आप सोशल सर्विसेज में भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, और आप जो लोग होते हैं जिनको मदद चाहिए सोशल सर्विसेज में, आप भी और आपका परिवार भी इसमें
1: सोशल सर्विस के, उमंग के जाने के बाद में
0: जी
1: हमने अपना ध्यान लगाया सोशल सर्विस एंड अदर थिंग्स के अंदर, जिसके अंदर के
0: जी
1: वन रैंक वन पेंशन, ये
0: अच्छा
1: हमारा पूरा फाइट था
0: जी।
1: और आज हमारे पुराने फौजियों को, खास करके वार वीडियोस एंड वीडियोस को
0: जी,
1: जो फायदा मिला है और हम सबको, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: और सर उसमें आपने पूरी मेहनत की,
1: उसमें सारा जो प्रोटेस्ट था बहुत, आई वाज लीडिंग वन एंड ऑल द प्रोटेस्ट वाज मी माय वाइफ एंड मिस जाखड़ इज वाइफ। एंड दूसरा एक मैंने बहुत बड़ा ये टोल का यहाँ पे होता था बिटवीन दिल्ली एंड गुड़गांव, MBS मॉल के पास में, जहाँ दो दो ढाई ढाई घंटे ट्रैफिक जैम होता था और इवन एम्बुलेंस और प्रेग्नेंट वुमेन वर नॉट एबल टू गेट थ्रू, एंड इन दैट वी आई वाज एबल टू गेट इट रिमूव्ड परमानेंटली फ्रॉम दैट।
0: आपने ये सब काम किए और
1: बिकॉज ऑफ,
0: अब भी आप लगे रहते हैं कुछ ना कुछ,
1: बिकॉज ऑफ मोटिवेशन ऑफ उमंग एंड माई सेल्फ is fully I've been involved in all these things and devoted to whatsoever

0: मैक्सिमम आई कैन डू, आई मस्ट डू टिल आई एम एबल टू डू समथिंग।
1: बिल्कुल सर, बहुत ही जोश भरी आपसे हमने बातें की आज, और हमने याद भी किया कैप्टन उमंग भारद्वाज को भी, जिनको शौर्य चक्र से नवाजा गया मरणोपरांत उनकी बहादुरी के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए, कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल सम्मानित, 1971 वॉर वेटरन। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे
0: आपका
1: शो में
0: भी
1: शामिल
0: बहुत
1: होने
0: बहुत
1: के लिए।
0: धन्यवाद, आपको और पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय,
1: भारत माता की जय। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, आपने हमें अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे, और

0: को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।
1: भारत माता की जय। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, आपने हमें अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे। और 102.6 देश के नंबर वन रेडियो पर प्रोग्राम जारी रहेंगे। आगे है सैटेलाइट्स, मीना के साथ शायद को दें इजाजत।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में, अर्थ फिल्म से। संगीत दिया है जगजीत सिंह ने, शब्द रचना कैफी आजमी की।

श्रोताओं लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में अभिनेत्री फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है मजरूह ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जा तू लगा मेरे साथ क्या।
1: दोस्तों, फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आंधी फिल्म से। संगीत है आर डी बर्मन का, शब्द रचना गुलजार की।

0: श्रोताओं, इसी गाने के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है कार्यक्रम युव वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, शाम का सुहाना वक्त, रेडियो पर आपके पसंदीदा गीत और साथ में कुछ ऐसी बातें जो कभी चेहरे पर मुस्कान लाए तो कभी कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दें। इसी खूबसूरत अंदाज के साथ आकाशवाणी प्रयागराज के युववाणी कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि श्रीवास्तव।
1: और मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश। दोस्तों, चाहे आप पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेकर रेडियो सुन रहे हो, काम से घर लौट रहे हो, या परिवार के साथ शाम का आनंद ले रहे हो, अगले कुछ पल हमारे साथ बिताइए, क्योंकि आज की इस महफिल में दिलचस्प बातें भी होंगी, नई जानकारियां भी और संगीत का मजा भी।
0: बिल्कुल मिथिलेश, और आज की शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जिसका जवाब शायद हम सभी जानते हैं लेकिन कभी उस पर गौर नहीं करते।
1: अच्छा, ऐसा कौन सा सवाल है अंजलि?
0: बताइए, आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया?
1: अरे, ये तो कोई सवाल हुआ? सुबह पराठे खाए और साथ में चाय पी, लेकिन अचानक मेरे नाश्ते पे इतनी दिलचस्पी क्यों?
0: अच्छा, तो अब ये बताइए कि पराठे के लिए आटा कहाँ से आया, चाय में दूध कहाँ से आया, और अगर साथ में सब्जी खाई होती तो वो कहाँ से आती?
1: अरे वाह, अब समझा। ये सब तो खेतों और गांवों से ही आता है, लेकिन आप बात को कहाँ ले जा रही हैं?
0: बस वहीं जहाँ से हमारी रोजमर्रा की बहुत सारी जरूरतें पूरी होती हैं। दोस्तों, हम रोज दूध पीते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, अनाज खाते हैं, लेकिन क्या कभी उन हाथों के बारे में सोचते हैं जो इन्हें तैयार करने में दिन रात मेहनत करते हैं?
1: सही कहा अंजलि, और इन हाथों में बड़ी संख्या उन महिलाओं को भी है जो सुबह घर की जिम्मेदारियां संभालती है, फिर खेतों में काम करती हैं, पशुओं को देखभाल करती हैं और लौटकर दोबारा घर के काम में लग जाती हैं।
0: बिल्कुल, और मिथिलेश, मुझे तो एक बात बड़ी हैरान करती है।

0: कई बार जब किसी ग्रामीण महिला से पूछा जाता है कि आप क्या काम करती हैं, तो उनका जवाब होता है, अरे हम तो कुछ नहीं करते, बस घर गृहस्थी संभालते हैं।
1: जबकि उसी घर गृहस्थी में कितना काम छिपा होता है, खेतों में बुआई हो, फसल की कटाई हो, पशुओं को चारा देना हो, या घर के लिए अनाज तैयार करना हो, हर जगह उनकी मेहनत शामिल रहती है।
0: और दोस्तों एक बात तो आपने कभी देखी ही होगी, गांव में जब फसल तैयार होती है तो पूरा परिवार उसकी खुशी मनाता है, लेकिन उस फसल को तैयार करने में महिलाओं ने कितने घंटे मेहनत की, इसकी चर्चा अक्सर कम ही होती है।
1: बिल्कुल, हम किसान की बात तो करते हैं, लेकिन किसान सुनते ही अक्सर हमारे मन में किसी पुरुष की तस्वीर आती है, जबकि खेती में महिलाओं का भी बहुत बड़ी भूमिका है।
0: और यही तो आज की हमारी बात है दोस्तों, चर्चा का विषय है, जिन महिलाओं का योगदान हमारी रसोई से लेकर खेतों तक दिखाई देता है, उनके सम्मान और अधिकारों के लिए दुनिया भर में एक विशेष दिन मनाया जाता है।
1: और वो दिन है यानी 15 अक्टूबर विश्व ग्रामीण महिला दिवस।
0: बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई और वर्ष 2026 में इसका क्या विशेष चिन्ह है।
1: दोस्तों, हर साल 15 अक्टूबर को विश्व ग्रामीण महिला दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के योगदान को पहचान देना और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आर्थिक अवसरों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है।
0: मिथिलेश, इस दिवस के इतिहास की बात करें तो ग्रामीण महिलाओं के सम्मान में एक विशेष दिन मनाने का विचार साल 1995 में बीजिंग में आयोजित चौथे विश्व महिला सम्मेलन के दौरान सामने आया था। इसका उद्देश्य खेती, खाद्य उत्पादन और ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका को पहचान दिलाना था।
1: इसके बाद 18 दिसंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव रखा 62/136 पारित करके प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर पहली बार ये दिवस 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया।
0: और दोस्तों एक दिलचस्प बात ये भी है कि आज विश्व ग्रामीण महिला दिवस है और कल यानी 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाएगा। ये दोनों दिन हमें याद दिलाते हैं कि हमारे भोजन और खाद्य सुरक्षा में ग्रामीण महिलाओं का योगदान कितना महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल, अब बात करते हैं 2026 की थीम है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने इसका विषय रखा है रूरल वीमेन फार्मर्स केयरिंग फॉर मदर नेचर, जिसका अर्थ है प्रकृति की देखभाल करती ग्रामीण महिला किसान।
0: यानी इस वर्ष विशेष ध्यान उन महिला किसानों पर है जो खेती के साथ साथ बीजों का संरक्षण करती हैं, पानी का सही उपयोग करती हैं और मिट्टी की उर्वरता तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में योगदान देती हैं।
1: दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष भी घोषित किया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर की महिला किसानों के योगदान को पहचान दिलाना और उन्हें संसाधनों, तकनीक तथा आर्थिक अवसरों से जोड़ना है।
0: अब अगर भारत की बात करें तो ग्रामीण महिलाएं खेती के लगभग हर चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बुवाई, रोपाई, निराई, कटाई, पशुपालन और बीजों के संरक्षण से लेकर कृषि उत्पादों को तैयार करने तक उनकी मेहनत शामिल रहती है।
1: और दोस्तों, आज भारत में महिला किसान दिवस भी मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए भारत सरकार ने इसका विषय रखा है विकसित कृषि और विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं किसानों की भूमिका।
0: बिल्कुल, भारत सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार दोस्तों वर्ष 2025 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में कृषि गतिविधियों में कार्यरत कुल श्रमिकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 59.8% दर्ज की गई है। इससे पता चलता है कि भारतीय कृषि में महिलाओं की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है।
1: लेकिन दोस्तों, इतनी मेहनत के बावजूद कई ग्रामीण महिलाओं के सामने चुनौतियां भी हैं। कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, तो कहीं जमीन के स्वामित्व, आधुनिक तकनीकी और बाजार तक पहुंच की परेशानी है।
0: सही कहा मिथिलेश, और कई बार उनकी मेहनत को उचित पहचान भी नहीं मिलती, इसीलिए जरूरी है कि ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण, आर्थिक संसाधन और अपने फैसले लेने के समान अवसर मिले।
1: बिल्कुल, आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी अनेक ग्रामीण महिलाएं छोटे व्यवसायों, बचत, हस्तशिल्प और खाद्य उत्पादों के काम से जुड़ी रही हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है।
0: और दोस्तों, इसमें युवाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। आज मोबाइल और इंटरनेट की मदद से गाँव में तैयार होने वाले अचार, पापड़, हस्तशिल्प और दूसरे स्थानीय उत्पादों को नए ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, यानी गांवों में भी रोजगार और नए व्यवसाय की बहुत सी संभावनाएं। जरूरत है सही जानकारी, प्रशिक्षण और अवसरों की।
0: दोस्तों, विश्व ग्रामीण महिला दिवस हमें यही संदेश देता है कि ग्रामीण महिलाओं का सशक्ति

0: करण केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के विकास से जुड़ा हुआ है।
1: क्योंकि जब ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं तो परिवार मजबूत होते हैं, गांवों को विकास होता है और देश की प्रगति को भी नई दिशा मिलती है।
0: तो दोस्तों, आज के दिन उन सभी महिलाओं के योगदान को सम्मान दीजिए जिनकी मेहनत हमारे खेतों, घरों और रोजमर्रा के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: हमारी ओर से सभी ग्रामीण माताओं, बहनों और महिला किसानों को विश्व ग्रामीण महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: और इसी खूबसूरत संदेश के साथ आज की पहली चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अब समय है एक शानदार गीत का।

0: कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और इसी सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर करोड़ों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
1: एक साधारण परिवार से निकलकर भारत के महान वैज्ञानिक और देश के 11वें राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर अपने आप में एक मिसाल है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम ने न सिर्फ विज्ञान की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, बल्कि युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला भी दिया।
0: तो दोस्तों, आज उनकी जयंती पे हम सुनेंगे एक विशेष रूपक, मगर उसके पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
5: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही, खेती का तरीका समझदार।
4: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
5: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
4: किसान वही, खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
5: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
5: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही, खेती का तरीका समझदार।
4: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
5: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
4: किसान वही, खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
5: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
0: तो दोस्तों, आइए सुनते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन, विचारों और प्रेरणादायक सफर पर आधारित एक विशेष लघु रूपक, जिसका शीर्षक है मिसाइल मैन कलाम, मेरे यानी अंजलि श्रीवास्तव और दिव्या द्विवेदी के साथ।

0: अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम पावर लैंडर मॉड्यूल
1: People are applauding. Lander Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath.
0: Lander module पूरी तरह से safely और softly चंद्रमा के सतह पे land हो चुका है. ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है.
2: Wow, Papa, we finally reached the moon.
3: हाँ बेटा, आज भारत चांद पर पहुँच गया. और ये केवल उन साइंटिस्ट की उपलब्धि नहीं है बल्कि ये पूरे भारत की और उन सभी लोगों की उपलब्धि है जिन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया.
2: पापा पापा, मैं भी बड़ा होकर स्पेस साइंटिस्ट बनूंगा और सिर्फ चांद ही नहीं, सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स

0: को जानने में भारत की मदद करूंगा।
1: बिल्कुल बन्ना, लेकिन इतने बड़े सपने को अचीव करने के लिए मेहनत भी उन महान लोगों के जैसी करनी पड़ेगी।
0: हाँ हाँ करूँ ना पापा, मगर ये आप किन लोगों की बात कर रहे हैं और कौन हैं ये लोग?
1: बेटा ओम, यूं तो कई लोगों ने भारत के विज्ञान को यहाँ तक पहुँचाने में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर को पावरफुल बनाने में अपना जीवन खर्च कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम स्पेस को जानने से पहले लिया जाता है।
0: कौन पापा?
1: बेटा ये हैं हिंदुस्तान के हर दिल अजीज, इंडिया के मिसाइल मैन, द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज मैं तुम्हें इनके बारे में बताऊंगा कि कैसे रामेश्वरम के छोटे से गांव में जन्मा एक नाविक का लड़का रॉकेट्स उड़ाने का ख्वाब देखने लगा और बन गया द ग्रेट कलाम।
2: कहते हैं सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। इस बात को कहने वाले व्यक्तित्व अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने न केवल ये बात कही बल्कि इसको अपने जीवन में बखूबी उतारा भी। ये बातें वास्तविकता से परे हैं। रोज़मर्रा की मुश्किलों से जूझता हुआ जीव शायद ऐसे दार्शनिक विचारों को नकार दे, मगर इसी विचार को अपने जीवन के मूल सिद्धांत के रूप में लेकर सन 1931 में रामेश्वरम के धनुषकोडी में जन्मे अब्दुल कलाम को संभवतः भविष्य का जन प्रतिनिधि बनना था।
3: कलाम, तो ये कलाम होने का मतलब क्या होता है?
2: बच्चे बच्चे की जुबान पर जिस वैज्ञानिक का नाम हो, कलाम यानी भारत का मिसाइल मैन।
3: कलाम यानी भारत का रत्न, कलाम यानी भारत को अंतरिक्षी दुनिया का सपना दिखाने वाले,
2: कलाम यानी जनता के राष्ट्रपति, कलाम यानी भारत का विज्ञान।
4: फ्रेंड्स, इट्स लाइक दिस, व्हाट आई विजुअलाइज इन नेक्स्ट 5 years, दैट इज बाय द ईयर 2020, we have in our country 600,000 villages. How many villages? 600,000 villages where 70% of our people live there, 700 million people live there. How do you bring prosperity to our village people? That is, you have to give them physical connectivity, you have to give them electronic connectivity, you have to give them knowledge. You have to give them knowledge connectivity. You give physical, electronic knowledge connectivity so that economic connectivity and employment generation will come.
3: साल 1969 से 1979 तक 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद SLV-3 की लॉन्चिंग जब असफल हुई, तब डॉक्टर सतीश धवन ने कहा कि
1: मेरी ये टीम बेमिसाल है। आज मेरे नेतृत्व में भले ही ये मिशन फेल हुआ है, मगर एक साल बाद कलाम के नेतृत्व में ये मिशन सक्सेसफुल होगा।
2: अपने वरिष्ठ का ऐसा विश्वास देख कलाम ने अपनी असफलता को मात्र एक वर्ष में सफलता में परिवर्तित कर दिया और दिखा दिया कि वैज्ञानिक कोई भी हो सकता है, मगर विज्ञान के फलक पर कलाम नाम का सितारा केवल एक ही है।
3: द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अपने भविष्य के लिए संभावनाएं हम सभी व्यक्त करते हैं, मगर अपने भविष्य को सटीक रूप से निर्धारित कर देने का नाम ही कलाम है।
2: जब शिक्षक के उड़ती हुई चिड़िया के उदाहरण को समझकर कलाम ने एरोनॉटिक्स का सपना देखा था, शायद तभी से उन्होंने अपने भविष्य के एक एक पाय

0: दान को सुनिश्चित कर दिया था। वर्ष 1939 जब द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल हर तरफ था, तब धनुषकोटि उससे अछूता कैसे रहता? इसका प्रभाव कुछ इस प्रकार हुआ कि रामेश्वरम से चलने वाली मालगाड़ी धनुषकोटि में नहीं रुकती थी और अखबार के बंडल को फेंक कर चली जाती थी। 8 वर्षीय कलाम, जो शिक्षा के लिए रोजगार तलाश रहा था, उसने उन फेंके हुए अखबारों को बेचकर शिक्षा के लिए रास्ता खोजा। स्टेशन से लोगों के घर पहुंचाते वक्त कलाम पूरा अखबार पढ़ लिया करते थे, ताकि पैसे और ज्ञान दोनों का लाभ लिया जा सके।
1: कभी लालटेन की रोशनी में पढ़ना, कभी 4 बजे उठकर एक शिक्षक से मुफ्त की शिक्षा के लिए मीलों चलकर जाना, और एरोनॉटिक्स कॉलेज में छात्रवृत्ति पर पढ़ने के लिए 3 दिन में एयरक्राफ्ट की प्रति तैयार करना, कलाम ने जीवन के हर असंभव को संभव में परिवर्तित कर दिया।
0: अपनी आत्मकथा अग्नि की उड़ान में ये बताते हैं कि
2: जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनकर कॉलेज से निकला, तो जिंदगी ने 2 मौके मेरे सामने रख दिए और दोनों ही मेरे ख्वाब को पूरा कर सकते थे। एक था एयरफोर्स और दूसरा DRDO डिफेंस का। पायलट बनना मेरा ख्वाब था, लेकिन मैंने दोनों में अपनी अर्जियां भेज दी। दिल्ली और देहरादून से मेरी जिंदगी के रास्ते तय होने वाले थे, लेकिन देहरादून से मुझे निराशा हाथ लगी। मैं पायलट की परीक्षा में असफल रह गया।
1: अपने ख्वाबों को टूटते देखा था कलाम ने, लेकिन अंतिम क्षण तक लड़ते रहने की तालीम इन्हें जिंदगी से पहले ही मिल चुकी थी।
0: DRDO से इसरो की टीम तक का सफर आसान था। कठिनाई तो इसरो के सफर के साथ शुरू होने जा रही थी। देश भले ही आजाद था, मगर आर्थिक संकट अभी टला नहीं था। ऐसे में सरकारी खजाने से इसरो सैटेलाइट के लिए फंड मिलना लगभग नामुमकिन सा था।
2: ये मेरा पहला चरण था, जिसमें मैंने 3 महान शिक्षकों विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और ब्रह्म प्रकाश से नेतृत्व सीखा। मेरे लिए ये सीखने और ज्ञान के अधिग्रहण का समय है।
0: गौशाला को प्रयोगशाला बनाकर सागर की दहलीज से अपने सैटेलाइट का पहला तीर चलाने वाले अब्दुल कलाम ने मिसाइल की श्रेणियों को कुछ इस रूप से विस्तृत किया कि उस भारतीय काल के विज्ञान नामक सूखे कुएं से अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मोस और त्रिशूल जैसी 5 लक्ष्यभेदी मिसाइल निकालकर कलाम ने भारतीय शक्ति को शीर्ष 6 पर लाकर खड़ा कर दिया
1: और बन गए भारत के मिसाइल मैन। कलाम का जीवन समस्याओं की हर संभावनाओं से लैस था, लेकिन उन्हें उनकी जीवन रूपी किताब का हर एक हर्फ खुद गढ़ना आता था।
0: मिसाइल से चंद्रयान और मंगलयान तक का ख्वाब देखने वाले कलाम ने वैज्ञानिक का किरदार निभाने के बाद एक शिक्षक का किरदार अपना लिया, मगर जीवन को उन्हें अभी एक तोहफा और देना था, भारत के राष्ट्रपति के पद के रूप में।
1: एक बार ऋषिकेश के गुरु स्वामी शिवानंद ने इन्हें भगवत गीता देते हुए कहा था कि यदि स्वप्न को पाने की लगन तुम्हारे मन में है, तो उससे एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करवाती है।
0: तब कलाम को कहाँ पता था कि जिस पायलट की परीक्षा में वे असफल हुए हैं, एक दिन वे उसी सेना के सर्वोच्च अधिनायक बन जाएंगे। रामेश्वरम के धनुषकोटि के समुद्र के किनारे एक नाव में बैठकर पढ़ने वाले कलाम को देश का महामहिम बनना था। कलाम ने

0: स्वयं की अग्नि की उड़ान से लेकर भारत 2020 तक का ख्वाब देखने वाले कलाम ने युवाओं के इग्नाइटेड माइंड्स को रास्ता दिखाया।
1: और जिस प्रकार एक योद्धा युद्ध भूमि में सदैव अपने देह को त्यागने की इच्छा रखता है, ठीक उसी प्रकार डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन को अलविदा शिक्षा की दहलीज पर ही कहा।
0: IIM शिलोंग में 27 जुलाई 2015 को भाषण संबोधन के दौरान कलाम ने हमें पूर्ण रूप से अनुभव कराए बिना कि वो अब हमारे बीच नहीं है, हम सबको नम आंखों के साथ छोड़कर चले गए।
1: जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, वैसे ही ब्रह्मांड में दूसरा कलाम नहीं होगा।

0: तो बेटा ये थे द ग्रेट कलाम। पता है बेटा, वो कभी टायर्ड नहीं थे, वो इंस्पायर्ड थे। जब तक भारत का इसरो रहेगा तब तक उसकी आत्मा डॉक्टर कलाम हमारे हृदय में जिंदा रहेंगे।
1: पापा मैं भी बनूंगा कलाम, शायद वैसे नहीं जैसे आपने देखा है, मगर वैसे जैसे इस दुनिया को जरूरत है। पापा मैं बन सकता हूँ ना कलाम?
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं।
2: दोस्तों ये था लघु रूपक मिसाइल मैन कलाम, दिव्या द्विवेदी और मेरे यानी अंजलि श्रीवास्तव के साथ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हमें यही सिखाता है कि सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम अपने प्रोग्राम में, मगर उसके पहले सुनते हैं ये संदेश और उसके बाद सुनेंगे एक प्यारा सा गीत।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
7: 8700001-4242।
8: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
2: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही खेती का तरीका समझदार।
1: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
2: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
1: किसान वही खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
2: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत की यादें गूंज रही हैं जिसने करोड़ों दिलों को सपना देखना सिखाया।
1: बिल्कुल अंजनी, हम बात कर रहे हैं भारत के उस प्रेरणापुंज की जिनकी सादगी में ही उनकी महानता छिपी थी। एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान और दिल में गर्व भर देता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
0: कलाम साहब का नाम लेते ही आंखों के सामने वो सफ़ेद घुंघराले लहराते बाल, वो मासूम और संजीदा मुस्कान तैर जाती है। एक ऐसे इंसान जिसके लिए देश की सुरक्षा ही सबसे बड़ी इबादत थी। लेकिन मिथिलेश, इस मिसाइल मैन के बनने की कहानी मिसाइलों से नहीं बल्कि समुद्र की लहरों और अखबार के पन्नों से शुरू होती है। जब भी कलाम साहब का नाम आता है, भारत के राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, लेकिन सबसे पहले वो एक अच्छे इंसान थे।
1: तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप शहर रामेश्वरम में से। 15 अक्टूबर 1931 को एक साधारण नाविक जनुलाब्दीन और आश्यम्पा के घर एक बालक ने जन्म लिया, जिसे दुनिया ने अबुल पाकिर जनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के नाम से जाना।
0: हाँ, और बचपन इतना आसान नहीं था उनका। मिथिलेश, मैंने पढ़ा है कि कलाम साहब बचपन में सुबह 4 बजे उठ जाते थे। सुबह 4 बजे उठकर गणित की ट्यूशन जाना, फिर नमाज पढ़ना, उसके बाद रामेश्वरम रेलवे स्टेशन जाकर धनुषकोड़ी से आने वाले अखबारों को इकट्ठा करना। उन अखबारों को पूरे शहर में बांटने के बाद ही वो स्कूल जाते थे।
1: कलाम साहब हमेशा कहते थे कि उनके जीवन पर उनके पिता की सादगी और उनकी माँ के संस्कारों का गहरा असर था। रामेश्वरम के शिव मंदिर के मुख्य पुजारी लक्ष्मण शास्त्री उनके पिता के गहरे मित्र थे। देश की साझा संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर का पाठ उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था।
0: बचपन की इन गलियों से निकलकर कलाम साहब ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उनका सपना था पायलट बनना।
1: हाँ, वो पायलट बनना चाहते थे। वायुसेना की परीक्षा में कुल 8 सीटें थी और कलाम साहब 9वें स्थान पर आए। वो केवल एक रैंक से चूक गए। वो बहुत निराश हुए, ऋषिकेश गए, स्वामी शिवानंद से मिले। स्वामी जी ने उनसे कहा था, इस असफलता को

0: स्वीकार करो क्योंकि तुम्हारी नियति कुछ और है।
1: और वो नियति थी भारत को विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। पहले इसरो और फिर डीआरडीओ में उनका योगदान ऐतिहासिक रहा।
0: बिल्कुल, इसरो में रहते हुए उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SLV-3 के निर्माण में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया। इसी यान ने 1980 में रोहिणी उपग्रह का अंतरिक्ष में भेजा गया
1: और इसके बाद तो उन्होंने मिसाइल तकनीक में देश की कायापलट ही कर दी। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग, इन मिसाइलों ने भारत को दुनिया की महाशक्तियों के कतार में ला खड़ा किया। इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। मिथिलेश कलाम साहब के जीवन का वो किस्सा तो हर भारतीय को रोमांचित कर देता है जब 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुआ था।
0: कलाम साहब का मानना था कि शक्ति ही शक्ति एक सम्मान करती है। वे शांति चाहते थे लेकिन देश की सुरक्षा की कीमत पर नहीं।
1: साल 2002 आया, देश का सबसे बड़ा पद महामहिम राष्ट्रपति कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति भवन में रहने के बाद भी उनकी सादगी नहीं बदली। मैंने सुना है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को राष्ट्रपति भवन में रुकवाने का पूरा खर्च अपनी जेब से दिया था और सरकारी खजाने से एक भी रुपये नहीं लिया था।
0: दोस्तों, लगभग 3.5 लाख रुपये का बिल उन्होंने अपनी पेंशन से चुकाया था। वो राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता, खासकर बच्चे और युवाओं के लिए हमेशा खुले रहते थे, इसलिए उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट यानी जनता का राष्ट्रपति कहा गया।
1: कलाम साहब सिर्फ दोस्तों बातें नहीं करते थे, वो खुद एक कर्मयोगी थे। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। वो देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाकर छात्रों को पढ़ाते रहे और पढ़ाते पढ़ाते नियति ने उन्हें हमसे छीन लिया। 27 जुलाई 2015 का वो काला दिन जब शिलोंग IIM में छात्रों को रहने योग्य पृथ्वी पर लेक्चर देते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो गिर पड़े।
0: दोस्तों, एक शिक्षक का जीवन छात्रों के बीच ही थमा। वे हमेशा कहते थे कि मुझे एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी।
1: तो दोस्तों, ये था हमारा प्रेरणापुंज सेगमेंट और आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में Q&A सेशन लेके आते हैं। तो कल का हमारा प्रश्न था, भारत की अधिकतर खदानें किस राज्य में स्थित हैं? और उसका उत्तर है आंध्र प्रदेश में। आज का हमारा प्रश्न है,
0: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया?
1: आप हमें इसका उत्तर भेज सकते हैं 8004926250 पर और इसी नंबर पर हमें आप आज के प्रोग्राम का रिव्यू भी दे सकते हैं। तो चलते चलते बाय बाय करने से पहले मिथिलेश, हमारे श्रोताओं के लिए एक गीत और।

0: तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। मिलेंगे फिर आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी अंजलि श्रीवास्तव
1: मुझे यानी मिथिलेश को
0: दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

26 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की है। नई दिल्ली में आज एशियाई खेल में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।
1: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की है। नई दिल्ली में आज एशियाई खेल में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।
1: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद आज ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 से पहले विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली के बाहर पहली बार विजयवाड़ा में आयोजित हो रहा सरस मेला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो ब्रह्मास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 की मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के उत्तर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधी की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए। अमेरिका के लास वेगस में विश्वजीत रामचंद्र मोर ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय पहलवान ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। 6:00

कर 30 मिनट पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे पन्नालाल यादव और साथियों से लोकगीत, और किसान चर्चा में सुनिएगा इंद्र बहादुर सिंह और राजेंद्र कुमार की बातचीत। 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे श्रीकांत वैश्य। रात 8 आप सुनेंगे साहित्यपति महाप्राण निराला पर आधारित विशेषांक संगम की रेत पर शब्द कोलाज का 10वां भाग। 8:30 सबरस। 9:30 पर सुनिएगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। रात 10 फिल्म संगीत। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:20 पर सुनिएगा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर आर के यादव की वार्ता, बच्चों में वायरल फीवर कारण और उपचार। सुबह 7:00 सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर विदुषी सुलोचना बृहस्पति का ख्याल गायन, दिन में 12:15 पर सिद्धेश्वरी देवी का ख्याल गायन और रात 10:30 पर किशोरी अमोनकर का ख्याल गायन। 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति अभय कांत तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे भजन और गीत, सुबह 9:50 पर आशुतोष श्रीवास्तव के स्वर में और शाम 7:45 पर बच्चा बाबू वर्मा के स्वर में। दिन में 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की। 10:30 पर लोकगीत सुनिएगा प्रीति मिश्रा, धर्मशंकर दीक्षित और मल्लिका चटर्जी के स्वर में। 11:00 एक ही कलाकार कार्यक्रम आधारित होगा अभिनेत्री हेमा मालिनी पर। 11:30 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस। दिन में 12:30 पर हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की। 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी डॉक्टर शिवेंद्र ओझा से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत, एनेस्थेसिया स्वास्थ्य विज्ञान की अदृश्य ढाल। 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कल शाम 5:00 नन्ही दुनिया कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने सुनेंगे आओ जाने क्या होता है दूध का फटना, इसकी जानकारी। 5:15 युवाणी। कल शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे शैलेश कुमार शर्मा से लोकगीत और डॉक्टर शैलेंद्र दुबे से घनश्याम सिंह की बातचीत, विषय होगा बांस के व्यावसायिक उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत जनार्दन प्रसाद पांडेय मणि का काव्य पाठ सुनिएगा। रात 8:00 फिल्म संगीत। 8:30 पर अक्षयवट कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे राकेश मेहरोत्रा की वार्ता, भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रमुख पर्व विजयादशमी। 9:30 पर कहकशा और कल रात 10:00 फिल्म संगीत। ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

राजकुमार पुत्र स्वर्गीय श्यामलाल सूचित करते हैं कि इनकी पुत्री पायल परवा, उम्र 18 वर्ष 18 माह, लंबाई 4 फीट 6 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, आंखें काली हैं। ये 24 सितंबर 2026 से पुरानी बाजार भरवारी थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी से लापता हैं। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर कृपया पुरानी बाजार भरवारी थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी को सूचित करें। एक और सूचना सुनिए। आशीष कुमार पुत्र कैलाश कुमार सूचित करते हैं, इनकी पत्नी सुंदर लाल सरोज, उम्र 70 वर्ष, ग्राम सालेपुर थाना करारी जनपद कौशाम्बी, ये 22 सितंबर 2026 से दोपहर 12 बजे से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने कत्थई रंग की साड़ी पहन रखी थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 6390513376। नंबर एक बार फिर से सुन लें 6395513376। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ग्रामीण भाई सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम। सबसे पहले आप सभी के शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सबके घर परिवार पर बनी रहे और नवरात्रि के इस पावन दिन में हम शक्ति के स्वरूप माता रानी की आराधना करते हैं। तो पंचों, जब हम माता शक्ति के आराधना करते हैं तो अपन घर परिवार के, अपन गांव के उन शक्ति के, उ देवी के कैसे भूल सकते हैं, जौन हर दिन अपने परिवार और खेत खलियान के लिए पूरी मेहनत में जुटी रहते हैं। पंचो, हम बात कर रहे थे अपन सभी के घर के महिलाओं के बारे में, कहे से कि आज ना अपने पंचायती में हम चर्चा करब बहुत खास दिवस पर। आज है किसान महिला दिवस और ई पर चर्चा करे के पहले सभी किसान महिलन के, हमार यानी राधा बहन की ओर से आप सभी के सम्मान में प्रणाम। कहे से ना कि जौन हमार सभी के महिला शक्ति है ना, हमार सभी के घर में, हमार सभी के गांव में, वो घर के जिम्मेदारी ही नहीं संभालती बल्कि खेती के हर पड़ाव पर उनकर महत्वपूर्ण योगदान है। बीज बोए से लेकर फसल की देखभाल तक, निराई गुड़ाई से लेकर कटाई तक, अनाज के सुरक्षित रखे से लेकर पशुपालन तक, महिलाओं के मेहनत खेती किसानी से गहराई से जुड़ी है। तो आज के दिन बहुत खास है, काहे कि आज है किसान के लिए महिला किसान दिवस। तो अपने पंचायती में और भी बात बात कही तो होते रही, उससे पहले जब तक अपने पंचायती में ढोल नगाड़ा नहीं बाजत कुछ नीक नहीं लागत। लेकिन पंच भैया, ढोल नगाड़ा तो बजबे करी। आज पन्ना लाल यादव और संघातिन से हम सब नवरात्र माँ देवी गीत सुनम, लेकिन उसे पहले सुना जाए ये संदेश।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
4: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही, खेती का तरीका समझदार।
3: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
4: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: देखा पंच भैया, आज देवी गीत सुनागवा पन्नालाल यादव और संघाती सेन, साथे साथे संदेशों सुनागवा। और पंच भैया, आज बृहस्पतिवार के दिन बा, तो अपने पंचायती में प्रगतिशील किसान इंद्र बहादुर सिंह और राजेंद्र कुमार भैया के बातचीत बा तेजभान सिंह से, तो आवा हम सब किसान चर्चा सुना जाए।
2: देखा हो किसान भैया, अपने पंचायती में तमाम तरह के कृषि वैज्ञानिक भैया, अनुभवशील किसान भैया लोग आवत हैं और अपन अनुभव से हमका सबके कुछ न कुछ नई जानकारी देते हैं। ऐसे में ही आज अपने किसान चर्चा के तहत दो किसान भैया हमरे सबके बीच में आए हैं, जिनसे हम लोग बातचीत करब। एक किसान भैया है इंद्र बहादुर सिंह, गोड़े गाँव आंवला नगर सदर प्रतापगढ़ से है, और दूसरे किसान भैया है राजेंद्र कुमार यादव, चिल्ला गौहान जसरा ब्लॉक प्रयागराज से। सबसे पहले भैया, आप दोनों जने के अपने पंचायती में बहुत बहुत स्वागत बा। तो इन बहादुर सिंह भैया, आप बतावाए, आप खेती किसानी में का का करता है ए समय, और कितने बीघा के खेती आप करता है?
3: 10 बीघा कुल खेती है। 10 बीघा में हम 5 बीघा तो आंवला लगाए ही। आंवला से जो है हम उसके जो है उत्पाद बनाते हैं, जैसे आंवले का लड्डू हुआ, बर्फी हुई, और आपका अचार हुआ, कैंडी हुई, पाउडर हुआ, ये सब बना करके हम बेचते हैं। और खेती में भैया हम जो है नकदी खेती ज्यादा करी। नकदी का मतलब कि जिससे पैसा आता रहे, जिसमें आप सब्जी मान सकते हैं। तो इस समय हम गोभी 2 बीघा लगाए हुए हैं।
2: अच्छा, 2 बीघा खेती आप गोभी करे हैं।
3: हाँ, बाकी में जो भैया 2 बीघा सरसों लगा।
2: अच्छा,
3: और 1 बीघा में आलू लगावे चाहत ही।
2: तो भैया, जैसे कि आप

0: बताएं कि आप आंवला के खेती जो नहाए मुख्य रूप से करत हैं, तो आंवला से आप जो नहा उत्पाद तैयार कई के ओका बाजार में बेचत हैं। कृषि में अगर जो है ना व्यावसायिक रूप से कृषि आप करत हैं, ये तो और भी अच्छी बात यह है। जो भी किसान भैया लोग इस तरह से व्यावसायिक कृषि करे चाहत हुई, आपसे जरूर जो नहा उनका प्रेरणा मिली। इंद्र बहादुर भैया ये बताओ कि जैसे आंवला के आप जो नहाए जितना खेती आप करता हैं ओका आप तरह तरह के सामान बनावत हैं, तो ऐसा भी होते कि दूसरों भी किसान भैया से आप आंवला खरीदा थे कि सिर्फ अपने ही जो है उत्पादन होता है उसी ही अपन उत्पाद बनाए के बेचता है।
1: भैया पहले हम अपन सब बनाए डाई थी। जब हमारे पास और ग्राहक रहा थे ले वाले, तो हम अपने पास पड़ोस वाले के भी ले ली थी।
0: तो ऐसे है कि मतलब कि और दिन छोटे किसान हुए जे काते बिघा
1: हाँ,
0: आंवला
1: जिक्रे एक
0: लगाए हैं।
1: बीघा है, जिक्रे 10 पेड़ है, केहू भैया दुइये चार पेड़ है, तो तोड़ के हमारे यहाँ दई जाते हैं, तो हम उनके ले ली थी।
0: अच्छा, तो
1: हाँ
0: ये उन आपके उत्पादन होते जो भी आप बनावा थी आंवला से बना सामान, तो एक अपने आसपास के बाजार में बेचा थी कि और दूर दूर तक भी आपके सामान के मांग है कैसे?
1: भैया दूर दूर तक तो सामान को मांगा है। और इस समय भैया हमारे यहाँ जो नी प्रयागराज अयोध्या मार्ग हो गया है, जब से राम मंदिर बना है, तो इसमें प्रतिदिन जो है मतलब रोजाना 1000-2000 आदमी आवत जात रहा थे। तो दुकानिया हमारे सड़किए पे है,
0: अच्छा,
1: तो सड़किए पे जो है रोजाना अगर एक गाड़ी खड़ी हुई है तो 1 क्विंटल माल बिक जाएगा। तो घरा में बनत रहा था और सड़किया पे बेचत रहा था।
0: ये बताओ कि जैसे कि अब आजकल तो बहुत सारा माध्यम हो गया है कि लोग जो नहाए ऑनलाइन भी मांग कर रहे, तो ऐसा भी कुछ अपन जो नहाए माध्यम बनाए हैं कि खाली बस दुकान के ही माध्यम से?
1: नहीं भैया, केवल दुकान वाला माध्यम है, या फिर जो पहले समा ग्राहक कहाँ मांगते हैं तो उनका हम भेज दे थी।
0: तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप ये बताएं कि पशुपालन में भी कुछ आप करें यहाँ?
1: हाँ भैया, 2 गाय रखे ही हम, और 2 गाय से जो ना एक गाय तो हम अपने पूरे परिवार में अपन के दूध माठा दही जो बनत है सबों का खर्च करी थी। और एक गाय जो ना दूध हम शाम वाला डेयरी में दे दी थी, जिससे ओके जो ना है खरी भूसा या इसमें।
0: तो बहुत बढ़िया देखा इन बहादुर भैया, आप जो नहाए अपन नकदी खेती करता है आंवला खेती करता है और साथ ही साथ जो नहाए अपन पशुपालन से भी आमदनी बनावाता है। तो राजेंद्र कुमार भैया आप ही बताएं
1: हाँ
0: कि
1: भैया,
0: आप खेती में का करता है और कितने बीघा की खेती है, कितनी आप जो नहाए खेती में उपयोग करता है?
2: भैया हो हम 30 बीघा खेती करी थे, जेमे से 10 बीघा जौन बा धान लगाई दे है, 5 बीघा जौन बा सरसों खातिर रख दे है, 5 बीघा जौन बा आलू हम बोआई, आलू बोए के खेत खातिर पलटौआ खेत से पलटाई दे है। अब ओकर तैयारी चलती बा, यही लास्ट अक्टूबर में आलू हम हमें लगवाओ।
0: तो बाकी 10 बीघा हम क्या करता है?
2: 10 बीघा में परती छाड़ दे है, परती छाड़ दीना ऐसे हम कि खेत जब परती रहे हर साल बोआत बोआत खेते के पैदावार कमजोर हो जाए, तो जब हम परती छाड़ दे भाई तो वो हमें पैदावार कुछ ज्यादा हो जाए, खेते के भैया रेस्ट मिल जाए, जब रेस्ट मिल जाते है तो उपज वो हमें बढ़िया पैदा होती।
0: कहा है कि मतलब कि जो भी ओके उर्वरा शक्ति है वो जो है और मजबूत हो जाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। तो भैया इस समय 10 बीघा धान जो आप लगाए हैं, तो धान तो अब एकदम तैयार हो गया हुई।
2: भैया धान तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन बरसात के पानी से जौन बाटे धान में पीलापन हो गया और सफेद सफेद जौन बा डंकी बोला थी वो रोग हो गया बाबा, बक्का जेका बोला थी बक्का रोग हो गया, तो वो जौन बा सारी पाती जौन बा सफेद पड़ी गई। ओके साथ साथ जौन बा कीटाणु बहुत ज्यादा हो गए, तो ऐसे कौनो खास खेती धान में यह साल नहीं बा, पूरे इलाका के हमारे यहाँ खेती धान के गड़बड़ाई गई बा। ओके खातिर हम जुराई खातिर छिड़काव करे है, लेकिन 25% काम करती बा, ओके आगे काम नहीं हो पावत, ऐसे नहीं हो पावत कि जौन शाखा में जौन बा जुराई भैया उलियाए जाती तो ओके अंदर दवा प्रवेश नहीं कर पावत।
0: अच्छा, तो
2: हाँ
0: कहे कि मतलब कि एक बार आपके धान के खेती में तनी के नुकसान होए के संभावना होएगी बटे,
2: हाँ हाँ भैया,
0: जिसे कहा गया खेती किसानी देखा समय के मौसम पे तो आधारित है ये है, कभो सूखा पड़ा थे कभो बारिश ज्यादा होते, तो कुछ ना कुछ हमें अच्छा बुरा होत रहा थे। यही लिए कहा गया है कि जो नहाए आप तमाम अन्य जो नहाए खेती किसानी से जुड़ा व्यवसाय करें, ताकि जो नहाए अगर कहूं पे कोनो तरह से नुकसान होता है तो दूसरे तरफ होकर कुछ लाभ हम दूसरे माध्यम से ले सके। तो ऐसे में भैया आप भी जो नहाए कुछ कृषि से संबंधित व्यवसाय भी करें यहाँ की?
2: भैया हम कृषि से जुड़ा है, ओके साथ साथ वा पशुपालक रखे है,
0: अच्छा अच्छा
2: आ दूध के काम करी थे, तो अपने पास

0: जौन बा तिष्ठ भाई साई पांठ गैया तो स्वयं के जौन बाटे हम दूध दुहाई थे आ दूध दुहाई के मार्केट में अपन दुकान डाले है आ दुकान डाल के कुछ लोग दूध आई के ले जाती ठोस दूध जौन बाटे 60 रुपया लीटर ले जाती आ पेरा दूध जौन बा दुकान दुकान हम डाल दे थे जैसे तो वो जौन बा आधे रेट में चला जाते तो वो हमारा पैसा खड़ा हो जाते है आ क्रीम जौन निकाल ले थे ओकर अलग से पैसा मिल जाते है ऐसे जौन बा ई हम व्यवसाय डाले है।
1: तो ये तो बहुत बढ़िया भैया देखा कि दुग्ध उत्पादन आप करता है साथ ही साथ जौन है उसका बाजार में जौन है बेचता है तो औरों भी जो छोटे मोटे किसान भैया हैं उन्हों से आप दूध वगैरह लेते हो ही कि
0: हाँ
1: खाली
0: भैया
1: अपने
0: गांव
1: से?
0: से दूध लीना हम गांव से उन जौन बा अपन ले आवा हियाँ ते हियाँ व्यवसाय डाल दे है ओके साथ साथ जौन बाटे जैसे गैया भैंसिया हैं ले आए लीना खरीद के तो गाय भैंस आवत रहा थी मौका मिल गए को भाई आई गए कि भैया हमका भैंस अच्छी चाहिए ओका भैंस हम दे दीना दूसर भैंस ले आए लीना ऐसे कुछ न कुछ नगद आवत रहे तब भैया हम खेती में लगाए कि अच्छे से खेती कर ले आ जब नगद नहीं आवत रहे तब खेती कहाँ से बढ़िया हो पाए ऐसे एक व्यवसाय हम सोचे भैया हमारी हमेशा धंधा है।
1: अच्छा अच्छा तो
0: हाँ
1: मतलब कि पशुअन के भी जो ना है आप बिक्री करा थी?
0: हाँ बेचत ही खरीदत ही और दूध हमार जौन बाटे 250-300 लीटर बराबर बना रहा जब इतना हमार बना रहे उससे हमार पैसा जौन बाटे आवत जात रहे यहाँ कहीं हम किसानी में लगावत रहा यहाँ कहीं भैंस गाय में अपन आवत रहे अगर एक ही चीज से हम रह जा भैया तो किसानी न हो पाए हमार
1: नहीं
0: और
1: नहीं
0: जब
1: सही।
0: वो कहते किसानी वाला पैसा जब आ जाए तो यहाँ कहीं हम गाय भैंस में अपन लगाए के भैया इसी तरह से खेती किसानी अपन हम करत है। हम ई कहब किसान भाई के की खेती किसानी के साथ साथ गाय भैंस के सहारा लें और रोजी रोजगार के सहारा लें बीच बीच में जैसे है गाजर बोए दें तो उसे का होए गाजर निकलत रहे रोज के रोज 2000-3000 मिलत रहे वहाँ कई पशुपालक अपन रखेन है वहाँ कई चूनी चोकर आ जाए यहाँ कई गजरों काम चलते रहे भैया हो कि बड़ा परिवार है तो हम मनैन से काम नहीं कराए अपने घरे वालन के सबके लपेट के अच्छे से काम धंधा कराए थे एक ही काम यही दुई काम हमार भैया है।
1: ये तो बहुत बढ़िया बात भैया कि देखा आप पूरा परिवार मिलके जब आप रोजगार करते हैं तो जो उन 4 पैसा दूसरे जगह खर्चा हो क्या है वो के बचत होते हैं तो अपन जो ना आमदनी यहाँ घरे में बनी रहते हैं। किसान भैया आप सब जो ना है अपन अनुभव से जो खेती किसानी करता है ये बताओ कि जैसे अब आवे वाली खेती यहाँ गेहूँ के तो गेहूँ के लिए भी अब इनसे कुछ तैयारी करता है
0: हाँ
1: कि
0: भैया गेहूं
1: नहीं?
0: खातिर ही तैयारी करते है जैसे यह समय खेत बढ़िया से आप जुताई एक बार पलटाई दें ओके बाद खेत खूब झुराई जाए झुराए के बाद जौन बाटे नौ फरवा चलवाए दें नौ फरवा चलवाए के बाद गोबर के देसी खाद जितना हो सके वो हमें डाल के फिट कर दें और फिर जुताई दें और जब समय आ जाए भैया तो ओका पानी भर दें तो खाद जौन बा खूब बढ़िया मिक्सचर हो जाए तब जौन बा पलेवा कई के ओकर जुताई कराए के आ नवंबर से अपन बढ़िया से गेहूं
1: अच्छा।
0: बो चालू कई दें।
2: देखा भैया इंद्र बहादुर सिंह और राजेंद्र कुमार से तेज भानु भैया सिंह के बातचीत रही और भैया अब समय हो चला था पंच भैया से विदा लेके तो पंचों राम राम।
3: ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम किसानवाड़ी लखनऊ केंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन मीडियम वेव के मीडियम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं

0: पंचो जय हिंद।
1: रामजीत भैया।
0: हाँ अनुराधा बहनी।
1: देखो अपने सबके खेती पाती में काम बहुत जोरों पर है, तो हमहू बंचे अपने खेती पाती की तैयारी कर लेन इके खातिन, कटाई पिटाई के खातिन अपन हसिया खुरपा सब देखो भैया बिल्कुल तैयार कर लेन है, पिटाई रख लेन है। देखो अपन काम चाहे घर का हो चाहे बाहर हो, दोनों का मिल के करे चाहिए। तो अब देखो चाहे वो दुकान हो या कोई व्यवसाय हो या कहूँ बाहर कोनो काम काज शुरू करे के, तो वो देखो सब निकी तरह ते कई रही है।
0: बिल्कुल बहने, जो उनका महिलाएं हैं ये अब कौनो क्षेत्र में पीछे नहीं है और यही बदे इनके सम्मान किताएं आज के दिन का राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनावा जा रहा है। और यही किताएं देखो जो उन अपने आसपास हो रहा है वही के जानकारी उन्हें मिल जात है।
1: हाँ।
0: और ये सब जानकारी मिलत है आज की खबरें में।
2: उत्तर प्रदेश में किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान पाने का अवसर मिल रहा है। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र किसान ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों, कृषि रक्षा उपकरणों और फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू हुई है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक किसान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर किसान कॉर्नर में जाकर यंत्र बुकिंग प्रारंभ विकल्प चुनें, इसके बाद अपनी जरूरत के अनुसार कृषि यंत्र का चयन करें और मांगी गई जानकारी भरकर टोकन बुकिंग की प्रक्रिया पूरी करें। टोकन मिलने के बाद विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकृत विक्रेता से यंत्र खरीदें और जरूरी दस्तावेज जमा करें। विभागीय सत्यापन के बाद पात्र किसानों को नियमानुसार अनुदान दिया जाएगा। किसान आवेदन से पहले अनुदान की दर और पात्रता की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जांच लें।
1: रामजीत भैया।
0: हाँ राधा बहनी।
1: देखो जहाँ पर हम पंचे बात अपनी खेती पाती की सब चीजन की कर चुकी हैं, वहीं पर यहाँ अब हम पंचे रवि की फसल की देखो तैयारी कर रही हैं, तो अब बात कर लीन जाए सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में।
0: बिल्कुल बहनी, और ये बात हम करी है आज की बातें में।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ सब्जियों का व्यवसायिक उत्पादन आप कर रहे हैं तो खास करके रबी मौसम में कौन कौन सी सब्जियां पैदा करें, इनकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेकेंड कटिया सीतापुर से वैज्ञानिक उद्यान डॉक्टर शुभम सिंह राठौर। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस समय जो रबी की सब्जियाँ पैदा करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो उनको क्या सलाह है आपकी?
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, उद्यान विभाग की और कृषि विज्ञान केंद्र की या विश्वविद्यालय के जितने भी समस्त हाईटेक नर्सरी हैं उनसे पौध प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसान, जैसे कि टमाटर हो गया, मटर के बीज प्राप्त कर सकते हैं, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अगर उनको लगाना है तो उसके बीज और उसके पौध आप अभी प्राप्त करके और अपने खेत में डायरेक्ट रोपाई भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें जल निकासी पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मौसम का अभी प्रतिकूल व्यवहार देखने को मिला है, तो हमें रिज पे अगर हम करें जैसे कि आलू में हम करते हैं ट्रेंच और रिज और फरो मेथड से, तो उस प्रकार से करेंगे तो हमारा जो निकासी है जल की वो अच्छी बनी रहेगी।
3: जहां रबी में सब्जी मटर की खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो कौन कौन सी उन्नत प्रजातियाँ हैं, बीज की मात्रा कितना लगेगी, अंतरण क्या होगा और बुआई का समय क्या?
4: सामान्यतः जो उन्नत प्रजातियां जैसे आज़ाद मटर हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी से ये चलती है, काशी नंदिनी अच्छी वैरायटी है, अगर कोई पछेती खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए काशी समृद्धि इस टाइम पे उचित रहेगी क्योंकि अभी सीजन अक्टूबर का आधा निकल चुका है, तो काशी समृद्धि जो है लेट वैरायटी है तो उसके लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगी। साथ ही साथ जो 30 से 40 किलोग्राम तक का प्रति एकड़ जो है हमारा सीड रेट रहता है, और स्पेसिंग जो है आप अगर लाइन सोइंग कर रहे हैं तो पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए जिससे कि पौध का विकास बेहतर होता है।
3: एकड़ में पैदावार कितनी मिल जाती है सब्जी मटर की?
4: कम से कम 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार हम ले सकते हैं अगर हमने अच्छी तकनीक फॉलो की है तो।

0: आलू की बुआई का भी समय चल रहा है।
1: जी, आलू की भी बुआई का समय चल रहा है, तो कुफरी पुखराज हो गया और कुफरी बहार अच्छी एक वैरायटी आई है, तो कम से कम इसका 10 से 16 कुंटल प्रति एकड़ हमें बीज की मात्रा लगती है। स्पेसिंग की अगर हम ध्यान रखें तो इसको जिस प्रकार बताया रिज और फरो मेथड से हमें करना चाहिए, तो जो हमारी पंक्ति है उसकी 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें और
0: यानी
1: पॉट
0: लाइन
1: से,
0: से लाइन की दूरी
1: जी
0: 2 फीट।
1: 2 फीट के लगभग लगभग रखें, और पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं। इससे क्या कंद का विकास बढ़िया होता है। अगर हम बात करें इसकी उपज की, तो 120 से लेकर के 150 कुंटल प्रति एकड़ हम अगर उन्नत कृषि तकनीक का करते हैं तो मिल जाएगी।
0: जहाँ टमाटर पैदा करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या अभी भी नर्सरी डाल सकते हैं या
1: जी,
0: हाईटेक नर्सरियों से पौध लेकर के रोपाई कर दें?
1: अगर किसान अपनी नर्सरी में अगर टमाटर लगाना चाहते हैं तो अभी भी वक्त है, नर्सरी लगा सकते हैं, और सबसे उपयुक्त रहेगा कि वो हाईटेक नर्सरी से पौध अपने लिए अपने खेत के लिए ले लें और डायरेक्ट रोपाई कर दें। अगर किसी को अच्छी खेती या टमाटर की अच्छी किस्म के बारे में जानना है तो मैं कहूँगा कि काशी अमन एक अच्छी वैरायटी, एक ओवरऑल जो है साबित हो रही है। काशी अभिमान का भी एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है, लेकिन काशी अमन जो है काफ़ी अच्छी वैरायटी है, जिसका लगभग लगभग 160 ग्राम प्रति एकड़ बीज हम लगा करके उसका पौध तैयार कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर दूरी की बात की जाए तो 45 सेंटीमीटर पौध से पौध रहती है और 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति दूरी हमें बरकरार रखनी चाहिए। जी
0: यानी 2 × 1.5 फीट
1: जी
0: की दूरी
1: दो
0: हो।
1: फीट की दूरी और 2 फीट की पंक्ति से पंक्ति दूरी और 1.5 फीट की जो है पौध से पौध की दूरी हमें रखनी चाहिए।
0: जहाँ गोभी वर्गीय सब्जियाँ लगाना चाहते हैं किसान भाई बहन, खास करके फूल गोभी, पत्ता गोभी,
1: फूल गोभी और पत्ता गोभी लगभग लगभग अभी वक्त है, आप लगा सकते हैं, नर्सरी भी लगा सकते हैं, चाहे तो अपने पौध हाईटेक नर्सरी से ले लें ताकि अगेती हो जाए। इसके अगर उन्नत किस्म की बात करें तो फूल गोभी की जैसे पूसा दीपाली अच्छी एक किस्म है, पंत शुभ्रा भी बहुत अच्छी किस्म है, जो कि उत्तर प्रदेश की जलवायु के हिसाब से काफ़ी अच्छी फलित होती है।
0: और पूसा कत्की भी।
1: पूसा कत्की भी बहुत अच्छी उन्नत किस्म है। अगर इसका बीज दर की बात करी जाए तो 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ तक का बीज लगता है
0: यानी नर्सरी,
1: नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए। अगर हम बीज बुआई करें तो 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ बीज हमको लगता है।
0: और अगर पौध तैयार है या हाईटेक नर्सरी से ले रहे हैं तो रोपण दूरी लाइन से लाइन की दूरी।
1: पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों में ही हमको जो है 2 फीट से 1.5 फीट की दूरी हमें लगानी चाहिए, लाइन से लाइन 2 फीट और पौध से पौध 1.5 फीट की दूरी हमें बरकरार रखनी चाहिए।
0: पत्ता गोभी की उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं डॉक्टर साहब?
1: पूसा ड्रम हेड है, प्राइड ऑफ इंडिया है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, और मैं सलाह दूंगा कि लोकल जो अवेलेबल पौध जो हाईटेक नर्सरी से उपलब्ध हैं वो भी लेकर के किसान अगर लगाएंगे तो एक बढ़िया उनको किस्म मिल जाएगी।
0: यानी 1 महीना पहले फसल तैयार हो जाएगी और उस समय बाजार भाव अच्छा रहेगा।
1: जी बिल्कुल।
0: डॉक्टर साहब, जहां गाजर, मूली और धनिया पैदा करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो बुआई का समय चल रहा है,
1: जी,
0: कौन कौन सी प्रजातियां चुने?
1: गाजर की अगर बात करें तो काशी अरुण और काशी कृष्णा किस्म है। मूली की अगर बात करें तो काशी मूली 40 एक अच्छी किस्म है, अगर हम मध्य और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें। और धनिया में पंत हरीथीमा और हिसार सुगंध अच्छी किस्म है। अगर बीज दर की बात करें तो गाजर में 2.5 से 3 किलोग्राम बीज दर लगता है,
0: प्रति एकड़।
1: जी प्रति एकड़ लगता है, और उसी प्रकार से मूली में भी 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर होता है। धनिया की बात करें तो 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर है।
0: और लाइन में बुआई अगर करनी है तो
1: सीधी सी बात है कि अगर लाइन से बुआई करनी है तो पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर लगभग होनी चाहिए, और लाइन से लाइन जो है 1 फिट की अमूमन होनी चाहिए।
0: जितना जल्दी से जल्दी हो सके किसान भाई बहन बुआई करें। जहां मेथी की बुआई करनी है तो उसके लिए क्या सलाह है?
1: पूसा अर्ली बंचिंग एक काफ़ी उन्नत किस्म है, तो वो किस्म लगा सकते हैं। इसका जो 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर है और 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति, लाइन से लाइन और 10 सेंटीमीटर पौध से पौध दूरी रखें तो बेहतर उपज मिलेगी। कम से कम 40 से 50 पत्तियां का जो कुंटल प्रति एकड़ है, पत्तियों का जो हमें उपज मिलती है वो हमें मिल जाएगी।
0: डॉक्टर साहब, जहाँ भी पौध लेकर के रोपाई करनी है या नर्सरी तैयार करके रोपाई करनी है या सीधी बुआई करनी है, तो बीज शोधन और भूमि शोधन भी तो आवश्यक है।
1: बिल्कुल, बीज शोधन और भूमि शोधन अति आवश्यक है। अगर हमें फफूंद नाशक या कवक नाशक से अगर हमें बीज को बचा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आगे चल

0: के रोग नहीं आएगा। उसी प्रकार से अगर हम बीज शोधन करते हैं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हार्जियनम जो है आपका, 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके 10 से 15 मिनट आप बीज को उसमें शोधित कर दें और फिर रोपाई करें, तो जो आपका
1: यानी पौध जड़ उपचार करें,
0: जी पौध जड़ उपचार भी करें और बीज उपचार भी करें दोनों।
1: बीज उपचार तो सूखा भी कर सकते हैं।
0: जी सूखा भी कर सकते हैं अगर आप पाउडर से कर रहे हैं, लेकिन क्या है अगर हम द्रव्य में कर रहे हैं तो वो अच्छे से लेप जो है बीज पे
1: यानी
0: कोटिंग हो
1: कोटिंग
0: जाती
1: हो
0: है।
1: जाएगी अच्छी।
0: जी
1: और अगर भूमि शोधन करना है तो

0: जिए 3 4 दिन के लिए या 48 घंटे के लिए कम से कम, और फिर उसके बाद आप जो है इसको सीधा
1: अंतिम
0: खेत में
1: जुताई के समय खेत
0: अंतिम
1: में।
0: जुताई के समय लगा दीजिए, जिससे कि आपका जो है प्रचुर मात्रा में आपके लाभकारी जो सूक्ष्म जीव हैं उनका वहाँ पे फैलाव हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे रबी सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी, मेरा मोबाइल नंबर 88 27 57 82 53, 8827 57 82 53, 88 27 57 82 53।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का रबी सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में डॉक्टर साहब?
0: मेरा ये आह्वान है कि उर्वरक संतुलित मात्रा में उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा जैव उर्वरकों का उपयोग करें, और 30 से 45 दिन के बाद आप चाहें तो नैनो DAP और नैनो यूरिया का पन्नी छिड़काव कर सकते हैं। 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके पन्नी छिड़काव करें, तो इससे जो आपकी मुख्य यूरिया और DAP की जो दानेदार होता है उसकी आधी मात्रा ही आपको लगेगी। तो यही मेरा सबसे बड़ा सुझाव है
1: और
0: इस।
1: आजकल जल विलेय उर्वरक भी आ गए हैं।
0: जी, अगर किसी के पास ड्रिप इरिगेशन है या टपक सिंचाई विधि का पूरा सिस्टम है तो वो फर्टिगेशन के माध्यम से भी जो है द्रव्य में मिला करके सिंचाई के माध्यम से पोषक तत्व तो दे सकते हैं।
1: डॉक्टर शुभम सिंह राठौर, आज आप कार्यक्रम में आए और रबी सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रामजीत भैया।
4: हाँ राधा बहनी।
3: देखो और सब चीजों के देखो बातचीत तो हुई गया है, अब कुछ बात अपनी गीत गुने की हुई जाए।
4: यह समय देवी माँ के निवरता चल रहा है तो सुन लीन जाए एक पचरा अंजू भारती बहनी की आवाज में।

0: अनुराधा बहनी।
1: हाँ रामजीत भैया।
0: देखो खेती पाती तो हम सब पंचकरित है,
1: बिल्कुल।
0: बहुत से किसान ऐसा है
1: हाँ?
0: जो धीरे धीरे अपने खेती में इतना निपुण हो जाते
1: हाँ?
0: और इतना आगे बढ़ जाते कि वह पूरे गांव घर में एक मिसाल बन जाते, और
1: बिल्कुल
0: वह सिर्फ ना अपन खेती बढ़िया करे थे बल्कि सब पंच का बतौबो करे थे और वह आगे बढ़ावे थे।
1: बिल्कुल
0: और वही का हम पंच बात करी थे आज के किसान में।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं सीतापुर जनपद के बिसवा ब्लॉक के तेंदुआ गांव, जहां की महिला किसान सुधा रानी तोमर टेलीफोन लाइन पर हैं। सुधा रानी बहन नमस्ते।
3: नमस्ते भैया।
2: ये बताएं कि आप एक महिला किसान हैं
3: जी,
2: आपकी पढ़ाई लिखाई कहां तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: मेरी पढ़ाई इंटर पास हूँ और मेरे पति सर्विस करते थे, मेरे पास खेती पहले से ही थी तो मुझमें मतलब कोई देखने वाला नहीं था, मेरे ससुर बुजुर्ग थे, तभी से मेरा लगा हुआ कि मैंने निकल के अपनी खेती खुद संभाली।
2: यानी कितने साल पुरानी बात है
3: ये? लमसम 35 साल से कम मैं खुद देख रही हूँ।
2: कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: मेरे पास 12 एकड़ से कुछ ज्यादा है।
2: तो 12 एकड़ में इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
3: 12 एकड़ मेरे पास धान भी है, मेरे पास गन्ना भी है और कुछ खाली उसमें तो मैंने पेड़ पौधे सब लगा रखे हैं।
2: तो कितना कितना रकबा धान और गन्ने का है?
3: लमसम करीब 2 एकड़ तो मेरे पास बाग है
2: जी,
3: और बांस भी मैंने जो धनिया बोलते हैं वो भी मैंने लगा रखी है, और 3 एकड़ के करीब मेरी गन्ना ना है और काला नमक धान भी लगाया हुआ है।
2: तो धान की कौन कौन सी वैरायटी है काला नमक के अलावा?
3: बासमती धान है और जो बिक्री के लिए अच्छा पैसा मिलता है वो मोटा धान लगा रखा है, बाकी मैंने लमसम 1.5 एकड़ काले नमक लगा रखा है।
2: गन्ने की कोई खास वैरायटी लगाती हैं?
3: गन्ने की वैरायटी हमने फैक्ट्री से लिया था।
2: अच्छा।
3: हाँ उन्होंने ही दिया था, अपने फैक्ट्री से ही लेते हैं, 20 फैक्ट्री में ही लगती है।
2: तो जो लेटेस्ट वैरायटी है वो आपके खेत में है?
3: हाँ वो है मेरे उसमें। हम
2: क्या खासियत महसूस कर रही हैं जो नई वैरायटी का गन्ना लगाई है?
3: वो इसमें उत्पादन अच्छा होता है, फैक्ट्री हमारी जल्दी ले लेती है, ये नहीं कि हमारा आज हमारा गन्ना खड़ा है उसका 6 महीने रिजेक्ट वैरायटी में लगाएंगे तो उसके अच्छे पैसे भी नहीं मिलते, ये हमारे आ गए। और उसमें अगौड़ा जो होता है वो भी जानवरों के लिए छीलने वाले होते हैं, वो भी अच्छे लोग छील लेते हैं, और जो वैसी रिजेक्ट वैरायटी में लगाते हैं उसमें अगौड़ा नहीं होता, गन्ना सूखता भी बहुत है और वो गिरता भी बहुत है, उसमें चीनी भी कम निकलती है, उसको फैक्ट्री वाले लेते बहुत कम है।
2: जो पैदा करती है उसको बेचती कहाँ है?
3: बेचते क्या, हम अपने मंडी भेज देते हैं, बाकी हम अपना ऐसा रखते हैं कि चावल जैसे हमको खाने हैं कम से कम 5-6 साल पुराने हम चावल खाते हैं।
2: जो 12 एकड़ की आपकी खेती है तो पूरे साल में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेती हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
3: हाँ मुनाफा क्या 25 क्विंटल एकड़ धान।
2: और बचत कितना होती है?
3: बचत इसमें मान लीजिए हमको 60% बचत हो जाती है सब लागत निकालने के बाद।
2: और गन्ने में?
3: गन्ने में तो 70-75 हो जाती है, गन्ने में ज्यादा लागत नहीं क्योंकि एक ही बार लगाना पड़ता है, दोबारा से केवल गुड़ाई करवानी पड़ती है, उसका औसत अच्छा आता है।
2: कुल मिला जुला करके आप खेती करके खुशहाल हैं?
3: बहुत खुशहाल हैं।
2: आज राष्ट्रीय महिला किसान दिवस है, जो किसान बहनें खेती में जुड़ी

0: उनको क्या कहना चाहेंगी?
1: उनको हम यही कहेंगे, घर से निकलें, किसी के सहारे ना रहें, ये शर्म ना करें कि हम खेत जा रहे हैं या खेत में हमारे पास पैसा है सब कुछ, हम खेती ना देखें, जो करने वाला खुद करें, नहीं करने वाला हम अपने लेबरों से करवा लेंगे, मतलब खुद अगर देख रेख नहीं करेंगे तो कभी भी खेती में कुछ नहीं हो पाएगा। अपने आप देखेंगे तो उसमें बहुत प्रॉफिट है, अपना अच्छा खाएंगे, अपना अच्छा पहनेंगे और खुद सक्षम रहेंगी।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मेरा मोबाइल नंबर है 7905185080, 7905185080, 7905185080।
0: सुधा रानी तोमर बहन, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान भाइयों बहनों, आइए अब आपको ले चलते हैं सीतापुर जनपद के मछरेहटा ब्लॉक के गोड़ा गांव, जहां ड्रोन दीदी सुनीता वर्मा टेलीफोन लाइन पर हैं। सुनीता बहन नमस्ते।
7: नमस्ते डॉक्टर साहब।
6: सुनीता बहन, ये बताएं कि आपका खेती से जुड़ाव हुआ कब से और ये ड्रोन दीदी कब बनी?
7: हमारा डॉक्टर साहब खेती से जुड़ाव हुआ था 2011 से और ड्रोन दीदी बने थे 2023 में, और इसके बीच में हम मतलब कुछ महिलाओं के साथ में भी काम करते थे, जैसे पंचगव्य से दिया वगैरह बनवाते थे, हर्बल गुलाल है, जैसे अभी दीपावली आ रही है तो गाय के गोबर से दीपक वगैरह भी बनवाते हैं।
6: अच्छा
7: जी,
6: तो क्या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला किसानों को जोड़ी है क्या?
7: जी जोड़ रखे हैं डॉक्टर साहब, बहुत सारी महिलाएं को मतलब वही कृषि विज्ञान केंद्र कटिया ले जाके हमने प्रशिक्षण दिलाए हैं, और इसके साथ में मतलब हम खुद अपना बनाते हैं और सेल भी करवाते हैं।
6: तो इसका कहीं से प्रशिक्षण आपको मिला होगा?
7: प्रशिक्षण वही कृषि विज्ञान केंद्र कटिया से मिला था।
6: ये ड्रोन की शुरुआत कब से हुई कि खेती में ड्रोन का प्रयोग करें, इसके लिए कहीं से प्रशिक्षण आपको मिला होगा?
7: जी ये ड्रोन की जानकारी वही कृषि विज्ञान केंद्र में जो हमारे डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी ने बताया था, फिर वो फार्म डाले थे, फिर हमारी ट्रेनिंग अक्टूबर 2023 में हुई थी इलाहाबाद फूलपुर, 15 दिन की एक बार हुई थी, फिर एक हफ्ता फिर बुलाए थे, वो प्रधानमंत्री जी का इवेंट था तब।
6: तो अब आप ड्रोन के माध्यम से खेती की सेवा और किसान भाइयों बहनों की सेवा कर रही हैं?
7: जी, जैसे अभी इस समय धान है, बहुत सारा रोग इस समय जो धान पक गए हैं या कोई पकने वाले हैं उनमें गंधी की दवा अभी डाल के कल ही आए हैं, तो जैसे किसानों को ये लगता है कि हम अगर पीठ पे मशीन लाद के स्प्रे करते हैं तो हमारा समय भी बर्बाद होता है और पानी भी ज्यादा लगता है, और एक ड्रोन से है कि जो एक एकड़ में उनका पूरा दिन जाता है, 2 लेबर एक एकड़ में पूरे दिन में काम करते हैं, वो हम 20 मिनट में काम करके मतलब खत्म कर देते हैं।
6: तो आपकी दिनचर्या है क्या रोज की रोज?
7: सीजन पे तो हमारा पर डे का काम रहता है, और अगर अभी दीपावली आ रही है उसका काम करेंगे, अपना दीपावली का सामान अपना बनाना शुरू करेंगे।
6: जो खेती में आप ड्रोन दीदी के रूप में काम कर रही हैं और पंचगव्य से दिया बना रही हैं, तो इससे पूरे साल में कितनी आमदनी हो जाती है आपकी?
7: सब दोनों का मिला के 1,00,000 रुपया हो जाता है आमदनी, इससे हमारी आजीविका भी चल रही है, हमारे बच्चे मतलब अच्छे एजुकेशन पा रहे हैं, और किसी के आगे मतलब ये नहीं है हमें जरूरत है तो हाथ फैलाना पड़े।
6: जो अब तक का आपका तजुर्बा है ड्रोन दीदी के रूप में, उसके आधार पर और किसान बहनों भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगी?
7: यही चाहते हैं कि अगर हम ड्रोन दीदी हैं तो हमारी और भी बहनें बन सकती हैं ड्रोन दीदी।
6: आज राष्ट्रीय महिला किसान दिवस है
7: जी,
6: इस अवसर पर जो किसान बहनें हैं उनको क्या कहना चाहेंगी?
7: हमारी पहचान ड्रोन दीदी के नाम से है, पूरे पटल पे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बात की गई, मन की बात में 110वां एपिसोड है, उसमें हमारी बात हुई, तो अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो हमारी अन्य

0: महिलाएं भी बढ़ सकती है, बस उनके अंदर हौसला होना चाहिए कि हमें कुछ करना है अपने लिए।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 7460079761 7460079761 7460079761।
1: सुनीता वर्मा बहन, आज के किसान क्रम में आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई। आप 15 साल पहले खेती से जुड़ी और आज ड्रोन दीदी बनकर के अन्य किसान भाइयों बहनों के खेतों पर कृषि रक्षा रसायन और जल विलेय उर्वरक का छिड़काव कर रही हैं। कुल मिला जुला करके खुशहाल हैं और किसान भाई बहनों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अनुराधा बहनी।
3: हाँ रामजीत भैया,
2: देखो अपने खेती पाती में मौसम के हाल चाल जौन है वो जानब बहुत जरूरी है, तो तनी मौसम की जानकारी दे दीन जाए।
3: भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार अगले 7 दिनन का वर्षा पूर्वानुमान पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तारीख यानी आज 15 और 16 तारीख का कहूं कहूं पर गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की संभावना है। 17, 18 और 19, 20 और 21 तारीख का संभाग में मौसम शुष्क रहे की संभावना है। चेतावनी में भी 15 तारीख यानी आज और 16 तारीख का कहूं कहूं पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ झोंकेदार हवा चले की संभावना है। 17, 18 और 19, 20 और 21 तारीख का कोनू चेतावनी नहीं है। तो ई रहा भैया मौसम का हाल।
2: देखो बहनी, अपने पंच भाई आपन अगर कुछ बात कहे चाहत है तो ओकरी ताए लिख लिए पता।
3: कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ, पिन कोड है 226001। तो युरा भैया पता।
2: और यही के साथ है, जे पंच भाई मेल लिखे चाहे वे मेल लिखे farmandhomeairlko@gmail.com। और देखो अब अपने बैठकी का समय हो रहा है तो पंचन से लीन जाए आज्ञा।
3: जय हिंद, हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले प्रदेश के 24 खिलाड़ियों समेत भारतीय दल से किया संवाद, कहा खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मुहैया करा रही है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में स्वच्छता कार्मिकों को सुरक्षा बीमा और भविष्य निधि देने का किया ऐलान। प्रयागराज में गरीबों के लिए 602 आवासों का किया भूमि पूजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय लखनऊ दौरे के पहले दिन फैजुल्लागंज में बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री, कहा पीड़ितों को हर संभव मदद करेगी सरकार। और प्रदेश में आज से मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखना हुआ अनिवार्य, पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया फैसला।

0: नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से संवाद किया। इस दल में उत्तर प्रदेश के 24 खिलाड़ी भी शामिल थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में खेल सुविधाओं के लिए पारदर्शी सिस्टम बनाया है। खेलो इंडिया नीति के तहत बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों को हर तरह की खेल सुविधा दी जा रही है।
1: खेलों के लिए एक पारदर्शी और आधुनिक इकोसिस्टम बनाया। हमने खेलो इंडिया स्कीम शुरू की, समय के साथ इसका दायरा और व्यापक बनाया। आज देश में 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर बनाए गए हैं। एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, स्विमिंग पूल, हजारों ऐसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे बड़े शहरों में बन रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में नगर निगम व जल निगम के स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ काशी मिशन को धरातल पर उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्मिकों को न्यूनतम 16,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा।
2: कॉर्पोरेशन कार्य कर रहा है, न्यूनतम मानदेय की घोषणा भी कर दी, 16,000 रुपये न्यूनतम मानदेय उनको मिलना ही चाहिए। ESI के तहत उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल की सुविधा भी मिलनी चाहिए और साथ साथ ये भी व्यवस्था कर दी गई है कि उन सभी कार्मिकों को सुरक्षा बीमा का भी एक कवर मिलेगा।
0: मुख्यमंत्री ने आज मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए और गंगा घाटों पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व सांसद महाशय मसूरियादीन पासी की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकास व विरासत पर विश्वास करने वाली सरकार महापुरुषों को विस्मृत नहीं करती।
3: महापुरुषों को सम्मान देकर के ही कोई समाज आगे बढ़ सकता है।
4: भूत को सम्मान देकर के ही हमारा वर्तमान संवर सकता है और वर्तमान संवरेगा तो अपने आप ही भविष्य अच्छा उज्ज्वल हो जाएगा। और उसी भूतकाल की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने यहां माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर 602 आवासों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को आवास की चाबियां भी वितरित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। श्री सिंह ने फैजुल्लागंज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस कठिन समय में पीड़ितों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवश्यक तटबंध के निर्माण के लिए 182 करोड़ रुपए की घोषणा की है।
5: माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत 182 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी बंदी के निर्माण करने के लिए। जल्दी से जल्दी इसका शिलान्यास भी होगा। आप आश्वस्त रहिए, हम लोगों के रहते बाढ़ के संकट से इस फैजुल्ला गंज को उबारने में धन की कमी नहीं आने पाएगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिला, जहां तक हो सकेगा, जितना बन सकेगा, इस संकट की घड़ी में हम लोग पूरी तरह से आप सबकी सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं।
0: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी केंद्र वाराणसी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कार्यक्रमों की गुणवत्ता, श्रोताओं की संख्या में वृद्धि और राजस्व बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। समीक्षा बैठक में महानिदेशक ने काशी की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 और 24 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में आयोजित होने वाली क्षमता विकास आयोग की क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे। इस दो दिवसीय आयोजन में उत्तरी क्षेत्र के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक दक्षता आधारित क्षमता विकास संस्थानों के रूप में विकसित करने पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि देश में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए लोगों को सुलभ और त्वरित न्याय मिलने की राह आसान हुई है।
1: 1 जुलाई 2024 से देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुरानी न्याय व्यवस्था की जगह ली है। नए कानून समय सीमा के अंदर पीड़ितों को न्याय दिलाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कानून जनता का जनता द्वारा जनता के लिए की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करते हैं।
2: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं।
1: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता विपिन शुक्ला ने नए कानूनों को आम जनमानस के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि इससे न्यायिक प्रक्रिया आसान हुई है।
3: ये जो नए संशोधित कानून है इसमें आम जनमानस को राहत मिल रही है। जो पुलिस की प्रक्रियाओं में लेट लतीफी थी उसमें भी बहुत ज्यादा सुधार हुआ है।
1: नए आपराधिक कानून नागरिक केंद्रित अधिक सुलभ और कुशल न्याय प्रणाली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
0: प्रदेश में आज से मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य हो गया है। यह नियम सिर्फ पैक्ड मिठाइयों तक सीमित नहीं है बल्कि बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित खुली मिठाइयों पर भी उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने 27 सितंबर को इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया था। शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन आज माता के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। सोनभद्र में प्रसिद्ध ज्वाला देवी मंदिर में नवरात्र में बड़ी संख्या में स्थानीय और आसपास के जिलों से भक्त पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: जनपद सोनभद्र में शारदीय नवरात्र बड़े ही धूमधाम से भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। जनपद की ज्वालामुखी मंदिर, वैष्णो मंदिर, कुंडवासिनी धाम, अमिला धाम समेत देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जनपद की सीमाएं 4 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ से मिलती हैं, लिहाजा पड़ोसी राज्यों के भी श्रद्धालु जनपद की विभिन्न देवी मंदिरों में पूजन अर्चना के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मनोज कुमार सिंह, आकाशवाणी समाचार, सोनभद्र।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले प्रदेश के 24 खिलाड़ियों समेत भारतीय दल से किया संवाद। कहा, खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मुहैया करा रही है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में स्वच्छता कार्मिकों को सुरक्षा बीमा और भविष्य निधि देने का किया ऐलान। प्रयागराज में गरीबों के लिए 602 आवासों का किया भूमि पूजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय लखनऊ दौरे के पहले दिन फैजुल्लागंज में बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। कहा, पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी सरकार। और प्रदेश में आज से मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखना हुआ अनिवार्य। पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया फैसला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए डॉक्टर रमाकांत राय की वार्ता आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रदूत निराला जी।
1: हिंदी साहित्य के सर्वाधिक चर्चित साहित्यकारों में से एक, छायावाद के आधार स्तंभ और क्रांतिधर्मी कवि रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल की रियासत महिषादल जिला मेदिनीपुर में माघ शुक्ल एकादशी संवत 1953 तदनुसार 21 फरवरी 1896 को हुआ था। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे और महिषादल में एक सिपाही की नौकरी करते थे। उनका जन्म रविवार को हुआ था, अतः उनका नाम सूरज कुमार तिवारी रखा गया। चूंकि वह स्वयं को सरस्वती का वरद पुत्र मानते थे, अतः सन 1930 से उन्होंने बसंत पंचमी के दिन अपना जन्मदिन मनाना शुरू किया। उसके बाद से बसंत पंचमी के दिन ही उनका जन्मदिन मनाया जाने लगा। निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। उन्होंने हिंदी, बंगला और संस्कृत का स्वतंत्र अध्ययन किया। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा महिषादल में होने की वजह से उन पर बंगला संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ा। निराला स्वच्छंद प्रकृति के थे और स्कूल में पढ़ने से अधिक उनकी रुचि घूमने, खेलने, तैरने और कुश्ती लड़ने में अधिक थी। संगीत में उनकी विशेष रुचि थी। अध्ययन में उनका मन विशेष नहीं लगता था। इस कारण उनके पिता कभी कभी उनसे कठोर व्यवहार करते थे, जबकि उनके हृदय में अपने एकमात्र पुत्र के लिए विशेष स्नेह था। 15 वर्ष की आयु में निराला का विवाह मनोहरा देवी से हुआ। निराला का पारिवारिक जीवन बहुत संघर्षों में बीता। उनकी माता का निधन तो उनके बाल्यावस्था में ही हो चुका था। पिता निराला के 20 वर्ष की आयु में और घर के कुछ दूसरे सदस्य इन्फ्लुएंजा के प्रभाव में कालकवलित हो गए। इनकी पत्नी मनोहरा देवी का निधन भी इसी महामारी के दौरान हो गया। निराला के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। कालांतर में निराला की पुत्री सरोज का निधन भी जब धनाभाव के कारण हो गया तो निराला के दुख का पारावार न रहा। सरोज की स्मृति में लिखित कविता सरोज स्मृति हिंदी की सर्वाधिक प्रशंसित कविताओं में से एक है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में निराला इलाहाबाद में रहने लगे थे। उन्होंने संपादन, स्वतंत्र लेखन और अनुवाद का कार्य किया और कविता, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में बहुत ख्याति अर्जित की। उनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्र में जून 1920 में, पहला कविता संग्रह 1923 में अनामिका नाम से तथा पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण अक्टूबर 1920 में मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। उनके अन्य चर्चित कविता संग्रह हैं परिमल, गीतिका, द्वितीय अनामिका जिसमें सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा सरीखी कविताएं हैं, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते आदि। उन्होंने अलका, प्रभावती, अप्सरा, कुल्ली भाट और बिल्ले सुर बकरिहा आदि उपन्यास लिखे। चतुरी चमार, शुक्ल की बीबी, सखी उनकी कहानियों के चर्चित संग्रह हैं। निराला की कविताओं को प्रवृत्ति के आधार पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। कालक्रम में यह 1940 से पूर्व और पश्चात की रचना में देखी जा सकती है। पूर्ववर्ती काव्यकृतियों परिमल, गीतिका, अनामिका और तुलसीदास, इसमें प्रकृति, संस्कृति, देश प्रेम, श्रृंगार और समाज दर्शन आदि विषय से संबद्ध रचनाएं हैं। भाव और शैली दोनों ही दृष्टि से यह निराला की रचनाओं का उत्कर्ष काल है। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और सरोज स्मृति जैसी प्रसिद्ध कविताएं इसी अवधि में लिखी गईं। परवर्ती काव्यकृतियों में निराला की संघर्ष चेतना उनके जीवन संघर्षों से बहुत प्रभावित दिखाई देती है। उनकी कविताओं में समाज के प्रति दृष्टिकोण बहुत व्यंग्यात्मक हो गया है और कवि कल्पना के भावभूमि से उतरकर यथार्थ की कठोर भूमि पर आ गया है। निराला ने अपने समकालीन अन्य कवियों से इतर अपनी कविता में कल्पना का कम सहारा लिया है और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया है। वह काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। उन्होंने कविता के प्रति व्यक्त दृष्टिकोण में स्पष्ट किया है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह

कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र, इसी तरह कविता का भी हाल है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कला की सबसे बड़ी विशेषता है चित्रण कौशल। आंतरिक रूप भाव हो या बाह्य जगत के दृश्य, संगीतात्मक ध्वनियाँ हों या रंग और गंध, सजीव चरित्र हों या प्राकृतिक दृश्य, सभी मिलाकर निराला ऐसा जीवंत चित्र उपस्थित करते हैं कि पढ़ने वाला उन चित्रों के माध्यम से ही निराला के मर्म तक पहुँच सकता है। निराला के चित्रों में उनका भावबोध ही नहीं, उनका चिंतन भी समाहित रहता है। निराला की शक्ति यह है कि वे चमत्कार के भरोसे अकर्मण्य नहीं बैठ जाते और संघर्ष की वास्तविक चुनौती से आंखें नहीं चुराते। निराला की कविता जिस अंतर्द्वंद से निर्मित हुई है, उसमें संस्कारों का मूल्यों से टकराहट तो है ही, वर्तमान का अतीत से द्वंद्व भी है। उन पर एक तरफ धर्म अध्यात्म का गहरा असर है तो दूसरी तरफ नवजागरणवादी विवेक युक्त आधुनिक मन है। राम की शक्ति पूजा के राम महज एक मिथकीय चरित्र नहीं है। राम की शक्ति पूजा निराला की श्रेष्ठ महाकाव्यात्मक कविता है। इस कविता में भावात्मक श्रेष्ठता के साथ कलात्मक उत्कृष्टता के दर्शन होते हैं। इसमें प्रतीकों के माध्यम से वेदना, पौरुष और ओज अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देता है। कविता में राम एक आधुनिक मनुष्य हैं जो संशयग्रस्त है। इस कविता में राम को जो संशय विचलित कर रहा है, वह न सिर्फ मिथकीय चरित्र राम की पीड़ा है, बल्कि आधुनिक मनुष्य की महागाथा भी है। निराला राम को पारंपरिक रामत्व की अवधारणा से उतार कर सामान्य मनुष्य की श्रेणी में ला खड़ा करते हैं। जब निराला इस कविता में शक्ति की मौलिक कल्पना के अवधारणा की प्रस्तावना करते हैं, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सर्वथा नवीन रणनीति की प्रस्तावना करते जान पड़ते हैं। जब जाम्बवान राम को शक्ति की आराधना करने को कहते हैं, तो यह शक्ति की मौलिक कल्पना का आवाहन है। यह वह समय है जहां अन्याय जिधर है उधर शक्ति। इस कविता में निराला का आशावादी स्वर बहुत प्रबल है, जो तमाम झंझावातों के बावजूद अटल है और निरंतर संघर्षरत। डॉ. शांति स्वरूप द्विवेदी के मत में युग के प्रति जागरूक तथा युग धर्म को पहचानने वाले निराला ने एक ओर राम के चरित्र को मानवीय धरातल पर उतार कर उसे अधिक मनोविज्ञान सफल एवं विश्वसनीय बनाने की चेष्टा की है और दूसरी ओर इस कविता द्वारा देशवासियों को युग धर्म पहचान कर उसके अनुरूप काम करने का संदेश दिया है। निराला की एक अन्यतम रचना तुलसीदास में वेदना का सामाजिक स्वरूप राष्ट्रीय हो गया है। इसमें देश की तत्कालीन औपनिवेशिक दासता की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन है और उसके बाद अदम्य ओज की सृष्टि। सरोज स्मृति न केवल हिंदी अपितु विश्व की किसी भी भाषा का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कहा जा सकता है। यह शोक गीत निराला ने अपनी पुत्री सरोज के असमय निधन के बाद लिखी थी। इसमें कवि की निर्वैयक्तिकता अपने चरम पर है। सरोज की मृत्यु से आहत कवि आत्मग्लान से क्षुब्ध, बेहद दुखी और निराश नजर आता है। सरोज स्मृति में करुणा की पृष्ठभूमि पर श्रृंगार, हास्य, व्यंग्य आदि अनेक भावों का काव्यात्मक संगुम्फन किया गया है। नाटकीय गुणों से ओतप्रोत होने के कारण वह और भी प्रभावपूर्ण हो उठी है। काव्य में कर्ता के जिस निर्लेप व्यक्तित्व का महत्व टी.एस. इलियट ने स्थापित किया है, वह इस कविता में चरम ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है। निराला की सन 1940 के बाद लिखी गई कविताओं में उनका बादल राग वाला स्वर प्रमुखता पाता हुआ दिख पड़ता है। हालांकि उनकी आध्यात्मिक चेतना भी विनय आदि के गीतों में मुखरित होती रहती है, लेकिन आज़ादी और नए भारत के स्वरूप को लेकर उनका चिंतन और आशंकाएं एक ठोस राजनीतिक जमीन को प्राप्त करती दिखाई पड़ती हैं, जिसके प्रतिनिधि के रूप में हम 1946 में छपी उनकी कविता महंगू महंगा रहा को देख सकते हैं। उनकी सहानुभूति हमेशा दलित, शोषित और अकिंचन जन के प्रति रही है। विधवा, भिक्षुक और वह तोड़ती पत्थर कविता में उनकी करुणा को शब्द मिला है, तो अर्चना, आराधना और गीत गुंज में उनकी आध्यात्मिकता देखी जा सकती है। निराला की मौलिकता, प्रबल भावोद्वेग लोकमानस के हृदय पटल

0: पर छा जाने वाली जीवंत व प्रभावी शैली, अद्भुत वाक्य विन्यास और उसमें अंतर्निहित गूढ़ अर्थ उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करते हैं। छायावादी कवियों ने मुख्यतः प्रगीतों की रचना की है। ये प्रगीत गेय तो होते हैं पर पारंपरिक शास्त्रीय तरीके से नहीं गाए जा सकते। निराला ने नए स्वरताल से युक्त गीतों की सृष्टि की। अंग्रेजी स्वर मैत्री का प्रभाव बंगला के गीतों पर पड़ चुका था। उसके रंग ढंग पर बंगला गीतों की स्वरलिपियाँ भी तैयार की गईं। हिंदी के कवियों में निराला इस दिशा में भी अग्रसर हुए। उन्हें हिंदी संगीत की शब्दावली और गाने के ढंग दोनों खटकते थे। इसके फलस्वरूप गीतिका की रचना हुई। निराला भारतीय संस्कृति के दृष्टा कवि हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में संस्कृति का जमकर उद्घोष किया है। अपने अतीत के उज्ज्वल पक्ष से वह गौरव का भाव लेते हैं और राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हो काव्य रचना करते हैं। जागो फिर एक बार, महाराज शिवाजी का पत्र, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा आदि में वह बार बार भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम और उज्ज्वल अतीत को महिमामंडित करते हैं। वे गलित रूढ़ियों के विरोधी तथा संस्कृत के युगानुरूप पक्षों के उद्घाटक और पोषक रहे हैं। इस क्रम में उनकी अधिकांश कविताएं उनकी मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रतिरूप हैं। निराला ने बिल्लेसुर बकरिया और चतुरी चमार सरीखे उपन्यास भी लिखे हैं जो साहित्यिक जगत में खूब समादृत हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएँ उच्च काव्यात्मक प्रतिभा का निदर्शन कराती हैं। महाप्राण की उपाधि से विभूषित सरस्वती के इस वरद पुत्र ने 15 अक्टूबर 1961 को अंतिम सांस ली। परवर्ती कवियों के लिए निराला प्रेरणा स्रोत हैं। उनको प्रेरणा स्रोत जानकर कवियों ने जितनी कविताएं लिखी हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है। शमशेर बहादुर सिंह की इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करना उचित समझता हूँ। भूल कर जब राह, जब जब राह भटका मैं, तुम्ही झलके हे महाकवि, सघन तम की आँख बन मेरे लिए, अकल क्रोधित प्रकृति का विश्वास बन मेरे लिए, जगत के उन्माद का परिचय लिए और आगत प्राण का संचय लिए, झलके प्रमन तुम हेक महाकवि, सहजतम लघु एक जीवन में अखिल का परिणय लिए।
1: हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रमाकांत राय की वार्ता आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रदूत निराला जी। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं भजन श्रीकांत वैश्य के स्वर में।

श्रीकांत वैश्य के स्वर में अभी आपने सुना गीत। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए साहित्यपति महाप्राण निराला पर आधारित विशेषांक संगम की रेत पर शब्द कोलाज। आज आप इसका 10वां भाग सुनेंगे।
1: संगम की रेत पर
2: शब्द कोलाज।
3: पल्लव पल्लव पर हरियाली फूटी, लहरी डाली डाली, बोली कोयल कलिकी प्याली, मधु भरकर तरु पर उफनाई। झोंके पुरवाई के लगते, बादल के दल नभ पर भगते, कितने मन सो सोकर जगते, नैनों में भावुकता छाई। लहरें सरसी पर उठ उठकर गिरती हैं, सुंदर से सुंदर हिलते हैं सुख से इंदीवर, घाटों पर बड़ आई काई। घर के जन हुए प्रसन्न वदन, अतिशय सुख से

0: छलके लोचन, प्रिय की वाणी का आमंत्रण लेकर जैसे ध्वनि सरसाई, पल्लव पल्लव पर हरियाली फूटी, लहरी डाली डाली, बोली कोयल कलिकी प्याली, मधु भरकर तरु पर उफनाई, मधु भरकर तरु पर उफनाई।
1: शब्दों की सरसता जो मन को मंत्र मुग्ध कर रही है, उसकी रचना शब्दों के उस निराले जादू करने की है जिसे सारा संसार निराला के नाम से जानता है।
0: छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी।

0: शब्दों के उस निराले जादूगर ने की है जिसे सारा संसार निराला के नाम से जानता है।
1: छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कृतित्व और व्यक्तित्व के अद्भुत रंगों से आप सभी श्रोताओं के अंतस को रंगने को आतुर व्याकुल, हम आ गए हैं एक बार पुनः संगम की रेत पर शब्द कोलाज के एक और सृजनशील अंक के साथ। तो स्वीकार कीजिए आशुतोष सुंदरम
0: और वंदना राठौर का नमस्कार। आशुतोष जी,
1: जी
0: कितना सुखद संयोग है ना,
1: क्या
0: कि आज तीर्थराज प्रयाग की धरती को अपनी रचना धर्मिता के खाद पानी से सींचते, उसे समृद्ध करते, साहित्य के तीर्थराज कहे जाने वाले निराला जी के जीवन के सुने अनसुने पन्नों को परत दर परत खोलने के लिए निराला जी की सृजन में समाई आध्यात्मिक छायावादी क्रांतिकारी और सामाजिक सरोकारों की भेद भरी अनगूंज हमारे दिलों में उतारने के लिए उपस्थित हैं स्वयं निराला जी के अंश प्रतीक उनके प्रपौत्र डॉक्टर विवेक निराला जी।
1: जी तो वंदना जी, स्वागत अभिनंदन करते हैं हम विवेक निराला जी का अपने इस कार्यक्रम संगम की रेत पर शब्द कोलाज के इस खास अंक में। और साथ ही श्रोताओं, हम आपको ये भी बताते चलें कि इस कार्यक्रम के बीच में हम उन कुछ खास साहित्यकारों की वाणी को भी आपको सुनवाएंगे जो हमारे आर्काइव में हैं और जो निराला जी से संबंधित हैं। उन खास साहित्यकारों ने निराला जी के प्रति उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जो कुछ कहा वो रिकॉर्डिंग भी हम आपको इस कार्यक्रम में सुनवाएंगे। तो विवेक जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। ये तो जाहिर सी बात है विवेक जी कि आपका जन्म निराला जी के निधन के पश्चात हुआ, लेकिन जिस परिवार में निराला जी रहे उसके आप वंशज हैं। घर घर की बातों में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उनके व्यक्तित्व से हम रूबरू होते हैं। कैसे आप निराला जी को, इलाहाबाद के साहित्य जगत को और उनके व्यक्तित्व को देखते हैं?
2: प्रयागराज एक तरह से सांस्कृतिक नगरी है, मुक्ति का केंद्र है। प्रयागराज के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक और विश्वविद्यालय है जो शिक्षा के माध्यम से हमारी मुक्ति की राह खोलता है। इलाहाबाद में पहले से हाई कोर्ट है, तो हम वैधानिक रूप से अपनी मुक्ति की राह खोजते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा जो केंद्र बनता है वह है धार्मिक नगरी के रूप में गंगे तव दर्शनाथ मुक्ति। निराला इलाहाबाद आए, तत्कालीन इलाहाबाद जो प्रयागराज है, प्रयागराज में रहते हुए और इससे पहले भी निराला की मुक्ति में प्रचंड आस्था है। निराला जब मुक्त छंद का प्रवर्तन करते हैं, हिंदी कविता में मुक्त छंद लेकर के आते हैं, तो अपने कविता संग्रह परिमल में वह कविता की मुक्ति की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह मनुष्य की मुक्ति होती है उस तरह कविता की मुक्ति। तो इस तरह निराला अपने पूरे चिंतन में जिस मनुष्य की मुक्ति के लिए जीवन भर सन्नद्ध रहे, तो मुक्ति के केंद्र या मुक्ति की नगरी प्रयागराज में उनका होना वह निश्चित रूप से एक अलग वैशिष्ट्य प्रदान करता है। और निराला के होने से इस नगरी का भी गौरव बढ़ा, तो दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध रहा। निराला ने प्रयागराज से बहुत कुछ लिया और प्रयागराज ने निराला के रूप में बहुत कुछ पाया।
0: बचपन में आपने अपने आसपास के लोगों से, अपने स्वजनों से उनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा और एक छवि निर्मित की होगी। बाद के दिनों में जब आपने खुद निराला जी को पढ़ा, उस रूप में भी आपने कहीं ना कहीं कोई एक चित्र उकेरा होगा अंतस में। तो वो जो दोनों, एक बचपन का जो चित्र था जो स्वजनों से सुना आपने और जो बाद का खुद का जो अर्जित किया हुआ ज्ञान था, उस रूप में आपने निराला जी को देखा, तो समानता उसमें कितनी पाते हैं आप?
2: देखिए, ढेर सारी समानताएं हैं। प्रयागराज में रहते हुए ही निराला अपने जीवन में ही किंवदंती बन चुके थे, मिथक बन चुके थे। निराला को लेकर के तमाम तरह की घटनाएं, तमाम तरह के संस्मरण

0: वह लगातार जो है साहित्य जगत में और सामान्य जीवन में चलते रहे।
1: जी
0: उन संस्मरणों में निराला एक महामानव की छवि लेकर के आते हैं। अपने पारिवारिक परंपरा से जो मैंने संस्मरण पाए उनमें भी लगभग वही चित्र निकल करके आता है कि जो प्रायः उनके साथियों ने, उनके समकालीनों ने निराला का जो चित्र खींचा है। निराला एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा दूसरों के लिए जिए। निश्चित रूप से उनकी इस दुनिया में उनका परिवार भर सम्मिलित नहीं था, एक विराट परिवार भी था जिसमें वे सारे लोग जो निराला को प्यार करते थे, वे सारे लोग जो निराला को जानते थे, वह सब जुड़े हुए थे। निराला तो मनुष्य मात्र अगर कहीं किसी संकट में है, अभावग्रस्त है, तो निराला हमेशा उसकी सहायता के लिए तैयार रहते थे। बहुत सारे संस्मरण हैं उनकी दानशीलता के। वह अपना सब कुछ दान कराते थे, रॉयल्टी लेकर के लौट रहे हैं तो किसी भिखारी ने कह दिया कि बेटा कुछ दे दे। अद्भुत है कि निराला वहीं बैठ गए और जेब से एक मुट्ठी में रुपए लेकर के आते हैं, अगर इतना दे दूं तो कितने दिन भीख नहीं मांगेगी। उसने कहा कि 30 दिन। और निकाले कितना दे दूं, तो उसने कहा कि एक आध वर्ष। सारी जेब उलट दी और कहा कि अगर यह सब दे दूं, तो उसने कहा कभी नहीं कभी नहीं। निराला पूरी जेब उलट करके अपना सारा कुछ सौंप करके लौटते हैं, मन में यह संतोष लिए कि निराला की माँ होकर भीख मांगती है। सरोज स्मृति जो कविता है, जो उनकी पुत्री के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखी गई है, उसमें अपने संघर्षों को याद करते हैं और उसमें वो लिख भी देते हैं कि जाना तो अर्थागमों पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। और कारण कि क्षीण का न छीना कभी अन्न, मैं लख न सका वे दृग विपन्न। वे उन आँखों को देख ही नहीं सकते थे कि जो आँखें अभावग्रस्त हों। तो इस तरह निराला को जो विराट व्यक्तित्व तो बनता है संवेदनशील मनुष्य का, वह एक ऐसे मनुष्य का चित्र बनता है कि जो मनुष्यता से आकंठ भरा हुआ हो, जिसके भीतर से मनुष्यता, करुणा, दया, ममता, यह सारे जो मानवीय गुण हैं वह सब बार-बार छलक पड़ते हो।
1: निराला जी के व्यक्तित्व में समाई करुणा के बारे में अपने संस्मरण साझा करती महीयसी महादेवी वर्मा जी।
2: एक बार मैंने कहा कि आप कोट बनवा लीजिए, कहने लगे नहीं हमारा चमड़ा बड़ा मोटा है, इस सर्दी वर्दी नहीं लगती। हम बहुत पीछे पड़े तो कहा अच्छा चलो बनवाओ। कोट बना एक बड़ा वो कोट, उसको पहना, घूम घूम के हमको दिखाया बच्चे की तरह, देखो अच्छा लगता है। पर हम जानते थे कि अब क्या हाल होगा, बन तो गया कोट। अब वो ही हुआ 3-4 दिन के बाद गायब। जब कई बार हमने कहा कोट कहाँ गया, इतने मन से बनवाया था आपने, तो कहने लगे देखो मैंने रिक्शे वाले को दे दिया। मैंने कहा कि आपने पुराना क्यों नहीं दे दिया, तो जो उन्होंने बात कही वो देखिए कि मेरा बड़ा कोट आता तो नहीं उसके, और पुराना होता तो क्या बेचता और क्या काट के अपने लिए बनाता। तो मैंने नया दे दिया कि तुम अपने नाप का कटवा के बनवा लो इसको, और अगर बेचना चाहो बेचो। तो एक आदमी इतनी बड़ी बात सोचता है कि देने के वक्त जो हमारा अच्छा है वो हमें देना चाहिए। तो सोचिए आप किसका मन ऐसा होता है।
3: संवेदना का ये जो घनीभूत स्तर है, यही उन्हें महामानव की श्रेणी में ले जाता है।
1: शोक गीत के रूप में सरोज स्मृति को याद करते, और हम सब जानते कि हिंदी जगत में इससे उत्कृष्ट कोई संग्रह नहीं है, शोक गीत के रूप में जिसे हम स्थापित करते हैं। तो जब हम शोक की बात करते हैं तो निराला का पूरा जीवन अगर हम देखें, जब हम पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं गहराई से, तो कहीं पर भी ऐसा कोई पुट उनका नहीं मिलता है जहां पर उनके जीवन में एक विवाह को छोड़ के या बच्चों का जब आगमन हुआ होगा, जो एक सरसता

0: होती है, वो भी क्षणिक थी, वो दोबारा उनको नहीं मिलता है। एक तरह का दुख, एक तरह की उदासी उनके पूरे जीवन काल में पसरी हुई दिखती है हम सबको। उस रूप में जब उनका पूरा का पूरा कुनबा एक महामारी में चला जाता है, यहाँ तक कि उनकी जो प्रिया थी, उनकी जीवन संगिनी चली जाती हैं, कुछ समय के पश्चात उनकी बेटी भी चली जाती है, उस दौर में निराला जूही की कली रचते हैं। वो एक ऐसी कविता है जिसमें वो प्रणय निवेदन की बातें कर रहे हैं, यानी कि एक मृत्यु से एक संगीत की तरफ, सृजन की तरफ जाना, ये निराला के अंदर क्या उस कठोरता से आया, जैसे कि एक पहाड़ को जब हम देखते हैं उसके अंदर जब झरना बहता है, वो एक जो सरस रूप है वो उनका हृदय वैसा कोमल था, या उस कठोरता ने सच में उन्हें उस तरफ उन्मुख कर दिया जहां सरसता बहती हुई दिखाई पड़ती है। तो इस चीज को किस रूप में आप देखते हैं?
1: दरअसल मैं इसे उनकी जीवनी शक्ति समझता हूँ। एक और इतने सारे पारिवारिक संकट जिनसे निकल करके निराला साहित्य रचना में प्रवृत्त होते हैं, और इसके तमाम छायाएं आप उनकी रचनाओं में देख सकती हैं। लेकिन बार बार वो ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ उदासी वह दिखती नहीं है, कई बार दिखती है, अलग अलग तरहों से दिखती है। एक ही समय में यह भाव जगत परिवर्तित होता रहता है। एक और वो लिखते हैं, और लगभग एक ही समय की रचनाएं हैं, कि सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन नवोत्कर्ष छाया। ठीक वैसे ही दूसरी ओर लिखते हैं, सुमन भर न लिए सखी वसंत गया।
0: वाह,
1: इसी तरह ठूंठ पर वो लिखते हैं कि ठूंठ है या आज, गई इसकी सकल कला, गया सकल साज। या फिर आगे देखिए तो आगे कविताओं में आता है कि स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। लेकिन फिर तुरंत वे इस हताशा से, इस क्रंदन से जैसे मुक्ति पा लेते हैं, और फिर वह अपनी उसी जिजीविषा, उसी नई जीवनी शक्ति से वह फिर वैसी कविताएं लेकर के हमारे सम्मुख आ खड़े होते हैं, जिनसे लगता है कि हमें फिर से नए उत्साह और जीवन के प्रति फिर से वही ममत्व हमें दिखाई पड़ने लगता है। यह जो जूही की कली, तो हालांकि पहले की रचना भी अपनी स्वीकार करते हैं, लेकिन मनोहरा की मृत्यु के उपरांत फिर वह नए सिरे से जब जीवन और साहित्य रचना में प्रवृत्त होते हैं, तो आप देखिए कि मनोहरा जी की मृत्यु तक तो उनका कुछ भी प्रकाशित नहीं था। एक तरह से 1920 से उनकी छुटपुट कविताएं मिलनी शुरू होती हैं, और पहला कविता संग्रह भी क्या कहें उसको, पुस्तिका, नौ कविताओं की महज एक पुस्तिका 40 पृष्ठों की वह कलकत्ते से शंकर घोष लेन से प्रकाशित होती है, और जिसका नाम वो रखते हैं अनामिका। लेकिन आप आत्मविश्वास देखिए कि 1921 के आसपास उन्होंने अपनी प्रिया को खोया है, लेकिन जब अपनी 9 कविताओं के साथ और 40 पृष्ठों की उस पुस्तिका के साथ वह आते हैं, तो अपने को कालिदास से जोड़ते हैं। अनामिका की पहली ही या दूसरे तीसरे पृष्ठ पर आता है अनामिका सार्थवती बभू, क्योंकि कनिष्ठिका में तो कालिदास बैठे हुए हैं,
0: जी
1: तो उसके बाद अनामिका में। तो यह जो आत्मविश्वास है, यह भी देखिए कि उसी दौर में उभर करके उनका सामने आता है।
0: निराला जी के व्यक्तिगत जीवन पर अपने संस्मरण साझा करते निराला जी के सुपुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी जी।
2: मेरे पिता महाकवि निराला जी बंगाल में जन्मे, महिसागर स्टेट में, मेदिनीपुर जिले में। मेरा उनके साथ बचपन में रहने का ज़्यादा समय ऐसा नहीं रहा। 22 साल की उम्र में मेरे पिता विधुर हो गए। मेरी माता मनोहरा देवी का निधन दलमऊ रायबरेली निराला जी के ससुराल मेरे ननिहाल में हुआ। उस समय मैं 4 साल के लगभग था।

0: मेरी बहन सरोज 7 सवा साल की थी। मेरा दादाजी की उम्र उस समय 22 साल की थी। फिर उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया।
1: मुझे लगता है कि निराला जी जीवन की जो सत्यता है, जो शाश्वत मूल्य है, उसको बखूबी समझते थे। इसीलिए वो इतने निर्भीक थे, उनमें इतना साहस था। लेकिन साथ साथ ये जो हमारा जगत है, आम आदमी इसमें कैसे रहता है, उन्हें किन भावों की ज़रूरत है, किन मूल्यों की ज़रूरत है, ये आवश्यकताएं भी वो समझते थे। इसलिए तुरंत वो इधर स्विचओवर भी करते थे। दोनों का एक सामंजस्य बना के उन्होंने साहित्य सर्जना की है। इसीलिए निराला अमूल्य हैं और उनका व्यक्तित्व हम लोगों को प्रेरित करता रहता है।
2: बिल्कुल, निराला अपने व्यक्तित्व और कृतित्व में इतना अभेद रखते हैं कि निराला अपने जीवन और रचना कर्म में कहीं कोई फाँक नहीं आने देते। और इसीलिए जीवन और कर्म का यह जो अभेद है, यही निराला को बाकी और साहित्यकारों से, बाकी और कवियों से अलग भी करता है। और निश्चित रूप से इसीलिए अपने समय में उन्हें महाप्राण की संज्ञा दी गई, क्योंकि सामान्य जो जगत है, जो सामान्य जीवन है, उसमें हम सब अपने अपने स्वार्थों के, अपनी अपनी आवश्यकताओं के दायरे में रहकर शायद अल्पप्राण रह जाते हैं। इनसे ऊपर जो उठ पाता है, जो इस समूचे विश्व को सचमुच अपना कुटुंब स्वीकार कर पाता है, लगता है कि सचमुच वही महाप्राण है।
3: महाप्राण निराला के सृजन के अप्रतिम रंगों की व्याख्या करते आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार डॉक्टर केदारनाथ सिंह।
4: निराला 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े कवियों में से एक है मेरे लिए। और जब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो मेरी दृष्टि में केवल हिंदी नहीं है, पूरा भारतीय साहित्य है और एक हद तक कहूँ तो विश्व साहित्य भी है। निराला सच्चे अर्थों में विश्व कवि हैं।
3: जब हम निराला जी को पढ़ते हैं तब एक चीज़ समझ में आती है कि जब उनके जीवन पर परिस्थितियों ने कोई आक्रमण किया, इतने सारे दुख दिए, उससे वो बहुत सहजता के साथ अपनी रचना धर्मिता को लेते हुए उभर आते हैं। लेकिन जब उनके साहित्य पर, यानी जब उनकी रचना धर्मिता को की उपेक्षा की गई, तब वो सह नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उनका जो मानसिक संतुलन है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। जिस हिंदी की उन्होंने जीवन भर सेवा की, जिसके लिए वो गांधी जी से लड़े, नेहरू जी से लड़े, उसके बाद वो एक समय ऐसा आता है कि वो उस हिंदी को छोड़ देते हैं और वो अंग्रेजी भाषा में लोगों से बातचीत करने लगते हैं। तो ये कहाँ कुछ टूटन उनके अंदर दिखाई पड़ती और क्यों इस तरह से वो टूटे?
2: दरअसल अपने आरंभ से ही उन्होंने तमाम सारे आक्रमण झेले, आलोचनाएं सही। यह भी एक ऐतिहासिक तत्व है कि छायावाद पर जितने आक्रमण हुए वह ज़्यादातर निराला को केंद्र में रख कर किए गए। छायावाद के दौर में ही एक तो छंद को लेकर के उनके जो प्रयोग थे उस पर सर्वाधिक आक्रमण हुए
3: जी।
2: और अपने समय के जो सबसे बड़े आलोचक थे उन्होंने उसकी पैरोडी की और तमाम सारी चीज़ें लिखी, बहुत उपहास किया गया। यह भी कहा गया कि चले कवि जी कविता लिखने कलम तोड़ दी, कहीं इंच भर कहीं डेढ़ फुट सतर जोड़ दी। तो इस तरह तमाम सारे व्यंग किए गए, तमाम सारे आक्रमण किए गए। यह भी एक तरह का ये रहा कि बहुत क्लिष्ट और दुरूह लिखते हैं। राम की शक्ति पूजा को लेकर के हमारे एक सुनाम धन्य कवि ने कहा कि यह कविता है या बिच्छू झाड़ने का मंत्र। तो इतने सारे आरोपों को लगातार झेलते हुए, उन सब का सामना करते हुए, और अपने परिवार को खोया हो और जिसने अपनी साहित्यिक सेवा के लिए जो है इतना सारा कष्ट उठाया हो, उसको अगर उपेक्षा का दंश लगातार मिलता रहे तो उसका विचलन वो तो थोड़ा स्वाभाविक ही है। लेकिन जिस तरह निजी जीवन के दुखों से, उसके कष्टों से तो वो उबर आते हैं, लेकिन यह जो आक्रमण हो रहा था इससे बाहर निकलने में उन्हें समय लगता है। उसका एक कारण तो यह है कि वह पूरे छायावाद को खुद मान करके चलते थे। दूसरी बात यह है कि वह समय भी ऐसा था कि उनको लगने लगा था कि

0: विश्व भारती क्वार्टरली में तो बाकायदा अगे ने लिख ही दिया था कि एट ए लिटरेरी फोर्स ज्वाला इज ऑलरेडी डेड।
1: जी
0: और तो एक आदमी को लगता है कि जो मैंने इतना सब किया है, मतलब निराला के ही शब्दों में कहें कि तो वह जिस आत्मविश्वास से कह रहे थे कि दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया। तो एक व्यक्ति को यह तो लगेगा कि जिसके लिए मैंने अपना सारा जीवन न्योछावर किया, जिसके लिए मैंने सब कुछ जो है बलिदान किया, उसमें भी फिर भी उसको नहीं रखा जा रहा, और ये कष्ट होता है। त्रिलोचन ने भी अपने समय में कहा था कि प्रगतिशील कवियों की एक नई लिस्ट निकली है, उसमें त्रिलोचन का नाम नहीं है। तो ये कवि का मतलब एक स्वाभाविक है कि जब काव्य के हेतु में है कि काव्यम यश्य अर्थ कृते व्यवहार विदेश वेतर क्षताए, तो प्रथमतः इसमें है यश से कीर्ति कामना तो अंततः साहित्य रचना में रहती ही है, और उसमें भी यदि किसी को श्रेय न मिले तो दुख तो होगा ही। और वह निराला जैसे व्यक्तित्व के लिए कि जो साहित्य को जीता था, तो उसमें उनका वह विचरण स्वाभाविक था, और अपने उस विचरण के दिनों में अंग्रेजी बोलने लगे थे, लेकिन कविताओं में देखिए कि वह विचलन नहीं आने पाता। अंतिम कविता तो तक देखिए कि जिस तरह से उसका संगठन है, जिस तरह से उन्होंने उस कविता को बांधा है छंद में, उसे लगता है कि अपनी रचनाशीलता में इसके कोई निशान वो कहीं छोड़ते नहीं हैं।
2: देखिए विवेक जी वंदना, मुझे ये लगता है कि जो आपने बात उठाई कि जो उनके ऊपर आक्षेप लगे तो इस तरीके से वो करने लगे, ये एक विद्रोही व्यक्तित्व की निशानी है, और यही व्यक्तित्व बाद की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा कि कैसे वो जुड़ सकते हैं, किस तरीके से समस्याओं का सामना कर सकते हैं और कैसे अपने को स्थापित कर सकते हैं तमाम विरोध के बावजूद।
1: निराला जी की वैष्णव भक्ति के भाव को प्रकट करते डॉक्टर जगदीश गुप्त,
3: जिस मकान में रहते थे वो बेनी माधव मंदिर के सामने एक पंडे का मकान था, और मैशन गुप्त वहीं उनसे मिलने गए थे, और उन्होंने कहा कि आप बिना जल पिए नहीं जाएंगे, और चले गए गंगा तक। करीब घंटे भर तक उन्होंने मांझ करके कलश और गंगा से भर करके लाए, वैष्णव गुप्त बैठे बैठे प्रतीक्षा करते रहे। जब आए तो उन्होंने कहा कि आप वैष्णव हैं, मैं शुद्ध जल त्रिवेणी से लेकर आया हूँ, आप उसे पियेंगे। सामान्य जल मेरे पास था मगर मैं आपको दे नहीं सकता। उनकी वैष्णव भक्ति और नारद जी की शक्ति भक्ति दोनों ही असाधारण थी।
1: और इसी बीच में एक स्नेह का बंधन भी बंधता है महादेवी वर्मा जी के साथ में, वो संबंध भी अपने आप में बिल्कुल एक अलग आयाम पर जाकर खड़ा दिखाई पड़ता है, जहाँ पर एक स्नेह वाली चीज है, एक दूसरे के प्रति जो कृतज्ञता का जो भाव होता है वो भी उसमें समाहित दिखता है, परवाह की जो हम बात करते हैं वो भी उसमें दिखाई पड़ता है। तो ये एक जो साहित्यकार को साहित्यकार जिस रूप में समझता है वो लगता है कि इन दोनों रिश्तों में ज़्यादा बेहतर ढंग से उभर कर आया है।
0: महादेवी जी के साथ उनके जो संबंध थे वह भाई बहन वाले संबंध थे, और बहुत दोनों के प्रति बड़ा स्नेहपूर्ण संबंध था, लेकिन जैसा कि जिस तरह से बताया जाता है कि या कहा जाता है कि पंत को लेकर के जो एक तरह की स्पर्धा का भाव, या जिस तरह देखिए इसमें स्पर्धा तो हो सकती है क्योंकि हम सब एक ही अगर पीढ़ी के हैं तो बहुत स्वाभाविक है हमें स्पर्धा होना,
1: रचनात्मक भी है,
0: लेकिन शत्रुता नहीं है। झूठी खबर मिल जाती है कि पंत की मृत्यु की तो निराला सारी रात पार्क में बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं, तो यह निराला के अपने समकालीनों से जो संबंध हैं वो बहुत मधुर संबंध हैं। आप देखिए कि नई पीढ़ी के साथ उनके संबंध बेहद मधुर हैं, रामविलास शर्मा जो जिन्होंने बाद में निराला की साहित्य साधना लिखी वो हों, या उनके साथ के लोग कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह हों या रामचंद्र भट्ट।

0: नागर हों या रामेश्वर शुक्ल अंचल हों, इस तरह की नई पीढ़ी के जुड़े, या प्रदीप जो
1: जी
0: बड़े कवि हुए फिल्मी दुनिया
1: गीतकार
0: के,
1: जी
0: तो उन पर भी उन्होंने एक लेख लिखा है और बड़ा लेख है। तो अपने समकालीनों, अपनी नई पीढ़ी के साथ उनके संबंध बेहद आत्मीय और बहुत मधुर रहते हैं।
2: और संबंधों के अलग अलग स्तर हैं,
0: बिल्कुल
2: सबको एक उस पे उन्होंने एक स्तर पे नहीं रखा, कोई कहाँ खड़ा है, कोई कहाँ खड़ा है, कोई कहाँ खड़ा है, उसी तरीके से संबंधों के स्तर उन्होंने बना रखे। विवेक जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराल जी के ऊपर केंद्रित था ये अंक हमारा, और आपने बहुत सारे ऐसे पहलुओं पर बात की, उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया, हमारे श्रोताओं को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो वंदना जी, ये जो विवेक निराला जी के साथ हम लोगों की बातचीत हुई, मुझे तो इस बातचीत के बाद बहुत अच्छा लगा, और जो बातें निराला जी के बारे में विवेक जी ने बताई, निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आई होंगी। आपको कैसा लगा
1: आशुतोष जी?
2: जी
1: सच कहूँ तो एक जो एक शब्द होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, क्योंकि हम किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे थे, अभी तक बातचीत कर रहे थे, जिसका संबंध उस महान व्यक्तित्व से है जिससे पहचान हमारे इलाहाबाद, हमारे प्रयागराज की है, हमारे साहित्य की है। तो आनंद की लहरें उमड़ घुमड़ रही थी ये बातचीत करते समय, और बहुत ही सुखद अनुभूति हुई बात करने के दौरान। और वही जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा लगा, तो सच में बहुत ही अच्छा लगा।
2: तो ये जो सुखद लहरें उमड़ घुमड़ रही हैं और जो सुखद अनुभूति हो रही है, इसको जरा थाम के रखिए अगले अंक तक के लिए, क्योंकि समय सीमा है और घड़ी इशारा करती है कि अब हमें ये अंक यहीं पे संपन्न कर लेना चाहिए। तो श्रोता मित्रों, अगले अंक में हम फिर एक नामचीन छायावादी साहित्यकार को आपके समक्ष, उसके कृतित्व और व्यक्तित्व को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी आशुतोष सुंदरम को
1: और वन्ना राठौर को दीजिए विदा।
2: नमस्कार।
3: संगम की रेत पर
4: शब्द कोलाज।
5: अभी आप सुन रहे थे साहित्यपति महाप्राण निराला पर आधारित विशेषांक संगम की रेत पर शब्द कोलाज। आज आपने इसका 10वां भाग सुना। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन।

अनूप जलोटा के स्वर में अभी आपने सुना भजन। लीजिए अब सुनिए आबिदा परवीन के स्वर में सूफी सॉन्ग।

आबिदा परवीन की आवाज में अभी आपने सुना सूफी सॉन्ग। इसी के साथ सबरस कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। सेंसेक्स 2% से अधिक बढ़कर 74,316 पर बंद हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। कहा, देश वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख

0: का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को सीखने के अवसर और दूसरे शहरों में निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। G7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित ये उपग्रह भारतीय वायुसेना की सुरक्षित और निर्बाध संचार क्षमता मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4G और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2G और 3G तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर CNAP सेवा शुरू करने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम

0: आए जाने और अनियमितताओं के आरोपों के लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। ये सुनवाई SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बीच हुई है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को अपनी याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से भी SIR से कथित नाम हटाने पर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब $51 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में ये निर्यात $45 अरब 73 करोड़ था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
1: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन मजबूत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र को वरिष्ठ नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, नियामक मंजूरियों, आवेदनों के निपटारे और अन्य कामकाज की एकीकृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि गिव इट अप अभियान जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया जा रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गिव इट अप अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत लोगों से स्वेच्छा से LPG गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। इस अभियान के तहत 1,13,00,000 से अधिक LPG उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी। इससे हुई बचत से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ, जो पहले खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करती थी। सरकार ने देश भर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अब तक 10,56,00,000 से अधिक मुफ्त LPG कनेक्शन दिए हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गिव इट अप अभियान ने लोगों को एकजुट होकर गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया।
3: इंट्रोड्यूस द गिव इट अप कैंपेन seeking the cooperation of the public in voluntarily giving up cooking gas subsidies. We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazards of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
2: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने बताया कि गैस चूल्हे से खाना बनाना काफी आसान हो गया है और उन्हें अब खाना बनाते समय धुएं का सामना भी नहीं करना पड़ता।
4: पहले जब चूल्हा पे खाना बनाया करती थी मैं, तो मेरे धुएं से चेहरे पे एलर्जी हो जाती। अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
2: गिव इट अप अभियान ने लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है। साथ ही हर परिवार तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती दी है। दीपेंद्र कुमार।

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
2: हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम, आपने तो गोल्ड लाकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है और जहां पंच वहां परमेश्वर। शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, 1982 के बाद मैराथन में भारत को मिली सफलता, ये वाकई बहुत सुखद है।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक उछलकर 74316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक की तेजी के साथ 22997 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 पर बंद हुआ।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और निचले तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है।
4: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा हुई है। रोहतांग दर्रे से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक अब यातायात सुबह 6 बजे से साय 5 बजे तक ही चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रे पर जाने से पहले ताज़ा आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi unveils development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh, says Union Territories development remains a key priority for centre. Supreme Court issues notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and others on protest march to Apex Court if alleged SIR irregularities. Also seeks poll panel's reply if alleged voter deletions. Defence Ministry signs contracts worth over 4,000 crore rupees for GSAT-7C communication satellite for Indian Air Force and Varunastra heavyweight torpedoes for Indian Navy. Government mandates caller name display for telecom users from 1st of next month. Sensex climbs over 2% to close at 74,316. And Prime Minister Modi interacts with India's Asian Games contingent in New Delhi, says country is poised to emerge as a global sporting powerhouse. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects.

0: and indices. Meanwhile, in the forex market, the rupee appreciated by 10 paise to close at 95 rupees and 5 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Reshma Tiwari for Akashwani News.
1: Prime Minister Narendra Modi today expressed confidence that India is poised to emerge as a global sporting powerhouse. Mr. Modi made the remarks while interacting in New Delhi with members of the Indian contingent that participated in the 2026 Asian Games, concluded in Japan earlier this month. He described the recent Asian Games as memorable for India, highlighting the outstanding performances of Indian athletes across several sporting disciplines.
2: Saathiyo, is baar Asian Games kai maino mein हमारे लिए यादगार रहे हैं। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
1: India finished fourth in the medal tally at the 2026 Asian Games in Naichi, Nagoya, Japan, winning 85 medals, including 21 gold. The 12th session of India-Japan Joint Working Group on Roads and Road Transportation Sector was held today in New Delhi. The Ministry of Road Transport and Highways said that the meeting provided an important platform for strengthening bilateral cooperation in the road transportation sector between the two nations. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi unveils development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh, says Union Territories development remains a key priority for centre. Supreme Court issues notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and others on protest march to Apex Court over alleged SIR irregularities. Also seeks poll panel's reply over alleged voter deletions. Defence Ministry signs contracts worth over 4,000 crore rupees for GSAT-7C communications satellite and Varunastra heavyweight torpedoes. Government mandates caller name display for telecom users from 1st of next month. Sensex climbs over 2% to close at 74,316. And Prime Minister Modi interacts with India's Asian Games contingent in New Delhi, says country is poised to emerge as a global sporting powerhouse. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्कियाती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की तरक्की मरकजी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्त की खसूसी जामे नज़र-ए-सानी SIR में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए एहतजाजी मार्च के मामले में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव और दीगर अफराद को नोटिस जारी किया है। अदालत आलिया ने वोटर फहरिस्त से मुबैना तौर पर वोटरों के नाम हज़्फ किए जाने के मामले में इंतखाबी कमीशन से भी जवाब तलब किया है। वजारत दिफा ने भारतीय फजाइया के लिए GSAT-7C मुवासलाती सैटेलाइट और भारतीय बहरिया के लिए वरुणास्त्र नामी भारी टोरपीडोज की फराहमी के लिए 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। हुकूमत ने अगले महीने की पहली तारीख से टेली मुवासलात सारिफीन के लिए फोन करने वाले शख्स का नाम जाहिर करना लाजिमी करार दिया है। सेंसेक्स में 2% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया और ये 74,316 पर बंद हुआ। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय दस्ते से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत आलमी सतह पर खेलों की एक बड़ी ताकत बनकर उभरने के लिए तैयार है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज लद्दाख में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 5 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया और मुल्क के नाम वक्फ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि लद्दाख की तरक्की मरकज के लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, توانائی سے متعلق بنیادی ڈھانچہ مستحکم ہوگا، پانی کی دستیابی میں اضافہ ہوگا اور خطے کے مالا مال ثقافتی ورثے کے تحفظ

0: तहफ्फुज में मदद मिलेगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: जनाब मोदी ने इन प्रोजेक्टों के आगाज को लद्दाख के तरक्याती सफर में संगे मील से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका बनने के बाद से इसकी तरक्याती ज़रूरियात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीरे आज़म ने लद्दाख के सियाहत के शोबे में बढ़ते हुए इम्कान को भी उजागर किया और कहा कि रोज़गार के मौके पैदा करने और मकामी मईशत को बढ़ावा देने के लिए मौसम सरमा और मुहिमजोई से मुतालिक सियाहत को फ़रोग दिया जा रहा है।
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के दीगर रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च निकालने से मुतालिक अर्जी पर नोटिस जारी किया है। ये अर्जी उनके एहतजाजी मार्च पर तशवीश जाहिर करते हुए दायर की गई है। ये अर्जी अदालत की रजिस्ट्री में 12 अक्टूबर को दाखिल की गई थी। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा, केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी और दीगर फरीकों को नोटिस जारी किए। ये अर्जी चार वकीलों की जानिब से 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एहतजाजी मार्च के खिलाफ दायर की गई थी। अर्जी गुजारों ने अदालत के इहाते में सियासी मुजाहिरों पर पाबंदियां आयद करने की दरखास्त की थी। इंतखाबी कमीशन ने 17 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को वोटर फहरिस्त की खुसूसी मुख्तसर नज़रसानी करने की हिदायत दी है। इसके लिए अगले साल 1 जनवरी अहलियत की तारीख मुकर्रर की गई है। इन रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में अंडमान और निकोबार जज़ायर, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी बंगाल शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने कहा कि इन रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में खुसूसी मुख्तसर नज़रसानी के अमल की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। जहां वोटर फहरिस्तों की खुसूसी जाम नज़रसानी का अमल अभी जारी है या हाल ही में मुकम्मल हुआ है। इंतखाबी कमीशन ने अपने खत में कहा है कि उसने 29 सितम्बर को हिदायत जारी की थी जिनके तहत वोटर फहरिस्त में उन अफराद के नाम दर्ज करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जानी थी जिनके नाम अब तक शामिल नहीं किए गए हैं। इस मुहिम का मकसद नौजवानों और पहली मर्तबा वोट देने के अहल अफराद को भी वोटर फहरिस्त में शामिल करना है। वजारत दिफा ने आज 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। इन मुआहिदों का मकसद भारतीय फजाइया के लिए मखसूस मुवासलाती सैटेलाइट GSAT-7C और भारतीय बहरिया के लिए वरुणास्त्र नामी भारतीय टोरपीडो हासिल करना है। GSAT-7C की खरीदारी के लिए 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआहिदा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु के साथ किया गया है। इसके अलावा वरुणास्त्र की खरीदारी के लिए हैदराबाद की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का मुआहिदा किया गया है। वरुणास्त्र एक मकामी तौर पर तैयार करदा और जहाज से दागे जाने वाला आबदोश शिकन टोरपीडो है जिसे नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरीज ने तैयार किया है। जदीद समत बदलने की सलाहियत से लैस ये टोरपीडो दूरी से दुश्मन की आबदोजों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस तरह ये भारतीय बहरिया की जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत बनाता है। हुकूमत ने आइंदा माह की पहली तारीख से टेलीफोन सारिफीन के लिए कॉल करने वाले के नाम को जाहिर करने की सर्विस लाजिमी करार दी है। टेलीमुवासलात के महकमे ने तमाम टेलीमुवासलात सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों को हिदायत दी है कि वो 1 नवंबर से सर्विस के

0: दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
1: एशियन गेम्स में तारीखी संग मील को याद करते हुए वजीर आजम ने मर्दों और खवातीन की हॉकी टीमों की जानिब से सोने का तमगा जीतने का जश्न मनाया। खवातीन हॉकी टीम की जीत से 44 साल का इंतजार खत्म हुआ है। नौजवानों की उमूर और खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया, नौजवानों की उमूर और खेलों की वजीर मुमलिकत रक्षा खटसे के अलावा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की सदर पीटी उषा भी इस मौके पर मौजूद थीं। जापान के आईची नागोया में मुनाकिद होने वाले एशियन गेम्स में भारत सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगों समेत कुल 85 तमगे जीतकर चौथे मकाम पर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिंदू मजहब से इस्लाम या किसी दूसरे गैर हिंदू मजाहिब में तब्दील होने वाले अफराद खुदकार तौर पर पसमानदा तबकात के जुमरे में रिजर्वेशन के फवायद का दावा नहीं कर सकते। अदालत आलिया ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु हुकूमत की अर्जी खारिज करते हुए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि किसी शख्स को उसकी साबिका जात की बुनियाद पर हासिल समाजी पसमानदगी का फायदा मजहब तब्दील करने के बाद बरकरार नहीं रह सकता। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्कियाती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके की तरक्की मरकजी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्त की खसूसी जामे नजर सानी में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए एहतजाजी मार्च के मामले में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव और दीगर अफराद को नोटिस जारी किया है। अदालत आलिया ने वोटर फहरिस्त से मुबैना तौर पर वोटरों के नाम हज़्फ़ किए जाने के मामले में इंतखाबी कमीशन से भी जवाब तलब किया है। वजारत दिफा ने भारतीय फजाइया के लिए GSAT-7C मुवासलाती सैटेलाइट और भारतीय बहरिया के लिए वरुणास्त्र नामी भारी टोरपीडोज की फराहमी के लिए 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय दस्ते से मुलाकात की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। दोस्तों, कहते हैं हर सितारे की अपनी चमक होती है और हर दिल की अपनी कहानी। किसी कहानी में मोहब्बत की रोशनी है तो कहीं जुदाई की उदासी, कहीं यादों की दस्तक है तो कहीं खामोशी में छिपे अनकहे सवाल। गजल दरअसल दिल की वही जुबान है जो कम लफ्जों में बहुत कुछ कह जाती है। दिल की बात जुबां तक आए तो गजल होती है, दिल की बात जुबां तक आए तो गजल होती है, दर्द जब सुरों में ढल जाए तो गजल होती है।

दोस्तों, आइए आज के इस महफिल में कुछ ऐसे एहसासों से रूबरू हों जो कभी हमारे अपने रहे हैं और कभी हमारी तन्हाइयों के हमसफर। मिताली सिंह की आवाज़ में सुनिए ये खूबसूरत गज़ल।

खामोश लबों पर भी फसाने बहुत हैं, इस दिल में छुपे दर्द पुराने बहुत हैं। आइए सुनते हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल।

दोस्तों, कुछ यादें दिल से कभी जाती नहीं, कुछ यादें दिल से कभी जाती नहीं, कुछ बातें वक्त भी भुला पाती नहीं। लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

अल्फाज जहां थक कर ठहर जाते हैं, अल्फाज जहां थक कर ठहर जाते हैं, वहीं से गज़लों के मायने शुरू हो जाते हैं।

चंदन दास की आवाज में ये गजल आपने सुनी। दोस्तों, कहकशा कार्यक्रम की आखिरी गजल। महफिल में भी तन्हा थे, तन्हाई में भी तन्हा, एक तेरा ना होना हर जगह महसूस हुआ।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गज़ल आपने सुनी। इसी के साथ कहकशा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज में जख्म फिल्म से। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत दिया है MM करीम ने।

श्रोताओं, अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं MS धोनी फिल्म से पलक मुच्छल की आवाज में। संगीत है अमाल मलिक का, शब्द रचना मनोज मुंतशिर की।

अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं राहत फतेह अली खां की आवाज में दबंग फिल्म से, फैज अनवर के बोल, साजिद वाजिद का संगीत।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में अभिनेत्री फिल्म का ये गाना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, शब्द रचना मजरूह की।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज में जुबैदा फिल्म से। संगीत है ए आर रहमान का, शब्द रचना जावेद अख्तर की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए हरि प्रसाद चौरसिया का राग मालकौंस में बांसुरी वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हरि प्रसाद चौरसिया का राग मालकौस में बांसुरी वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। G-SAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है, उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव

और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर करने का निर्देश दिया है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में कल प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए शांति और कानून

0: असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में कल प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू की हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित प्रेस वार्ता में डीसीपी नेहा यादव ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की कि वे ऐसे किसी भी भीड़ में शामिल न हो जो धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क अगले 2 दिनों तक बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre.
2: Ladakh ki pragati aur vikas mein ek aur adhyay jud raha hai. आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: The Prime Minister said a center of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence today signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varun Astra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract for Varun Astra heavyweight torpedoes worth over 1,500 crore rupees was signed with Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. The ministry said the two contracts signed in New Delhi mark a significant step towards strengthening domestic defence manufacturing and promoting self-reliance in critical technologies. The Supreme Court has issued notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and other India bloc leaders on a petition raising concerns over their march to the Apex Court in the national capital over alleged irregularities in the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls. Mr. Gandhi and other opposition leaders held a march to the Supreme Court and entered the court registry on 12th of this month to file the petition amid protests demanding the resignation of the Chief Election Commissioner over alleged SIR irregularities. It also issued notices to Congress leader Mallikarjun Kharge, Samajwadi Party, TMC MP Mahua Moitra, the Kerala Pradesh Congress Committee. The top court observed that nobody can browbeat the judiciary. During the hearing of another case, the Supreme Court today ruled that individuals converting from Hinduism to Islam or other non-Hindu religions cannot automatically claim reservation benefits under the backward class category, dismissing the Tamil Nadu government's plea against a Madras High Court verdict. The top court held that social backwardness suffered in an antecedent caste cannot be carried forward after conversion. The Election Commission has directed 17 states and union territories to conduct a special summary revision SSR of electoral rolls with 1st January next year as the qualifying date. These states and union territories